मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 5 अक्टूबर सन 2026 प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड्स हुए हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त अनुराग शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं हिंदी में समाचार आपसे कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पान गांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर

0: सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 16.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन EIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 और 15 सेकंड्स हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए समूह स्वर में देशगान।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला भक्ति गीत सुनिए, शंकर शंभू के स्वर में।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, समय है कार्यक्रम चिंतन का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं महात्मा गांधी एक यात्रा, भाग 4, आलेख व वाचन सुमित गौतम का है।

0: गांधी भारत की आत्मा की आवाज, आवाज जो गूंजती रहेगी सदियों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में।
1: विख्यात साहित्यकार अमृतलाल वेगड़ लिखते हैं, महात्मा गांधी एक विभूति थे जो काम साधारण आदमी को असंभव जान पड़ता है उसे प्रतिभाशाली संभव बनाता है। प्रतिभाशाली को भी जो काम असंभव जान पड़े उसे जो कर दिखाए वह है विभूति। ऐसी ही विभूति थे महात्मा गांधी। वे प्रेम और करुणा के सागर थे, लेकिन बुराई के विरुद्ध लड़ने में अत्यंत कठोर। बापू को कला और कलाकारों की भी बहुत कद्र थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी बहुत सम्मान करते थे। ये हालत भी तब थी जब गुरुदेव और बापू के बीच काफी वैचारिक विरोध था। उनकी मैत्री का धागा काफी मजबूत था। यह आश्चर्य की बात है कि गुरुदेव सत्याग्रह और चरखा दोनों के खिलाफ थे। गुरुदेव ने अपने नाटक मुक्तधारा में जिस धनंजय बैरागी नामक पात्र का सृजन किया है वह महात्मा गांधी की प्रतिकृति है। उसने अपनी समस्त संपत्ति का त्याग कर दिया है और वहाँ का राजा जिस क्रूरता के साथ जनता से कर वसूलता है उसके खिलाफ सत्य और अहिंसा आधारित लड़ाई छेड़ देता है। गुरुदेव ने अपने नाटक में जिस सत्याग्रह का समर्थन किया था वास्तविक जीवन में उसी सत्याग्रह का उन्होंने विरोध किया। इसके बावजूद दोनों के बीच मैत्री संबंध अटूट रहे। शांति निकेतन कला भवन के अध्यक्ष महान कलाकार आचार्य नंदलाल बसु थे। वे बापू के परम भक्त थे, जानते थे कि गुरुदेव सत्याग्रह और चरखा दोनों के खिलाफ हैं, फिर भी खादी पहनते और चरखा चलाते। गुरुदेव ने इसे देखा लेकिन कोई टीका टिप्पणी नहीं की। वे अपने सहयोगियों पर मत लादने में विश्वास नहीं रखते थे। बापू की दांडी यात्रा से भला नंदलाल कैसे अछूते रह सकते थे। हाथ में लाठी लिए सुदृढ़ कदमों से दांडी की ओर बढ़ते बापू का उन्होंने एक अविस्मरणीय लीनोकट बनाया जो सारे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। कई देशों ने इसे अपनी डाक टिकट पर छापा। निरंतर आगे बढ़ रहे बापू इसमें कितने विराट लगते हैं। एक दुबला पतला आदमी जैसे वामन समस्त पृथ्वी को अपने दो पैरों से नाप रहा है। इसमें बापू की देश से कहीं अधिक उनकी तेजो दीप्तात्मा का चित्रण हुआ है। इतना ही नहीं, यही लीनोकट नंदन कला भवन का म्यूजियम के सामने की दीवार पर बहुत बड़े आकार में उकेरा गया है। वैसे तो बापू और नंदलाल एक दूसरे से परिचित थे, लेकिन निकट संपर्क में 1936 में लखनऊ कांग्रेस के समय आए। बापू ने कांग्रेस की साज सज्जा का भार नंदलाल को सौंपा था। नंदलाल ने यह काम इतने सुंदर ढंग से किया कि अपने भाषण में बापू ने कहा कि नंदलाल बसु ने मेरी कल्पना को साकार कर दिखाया है। वे सृजनात्मक कलाकार हैं, मैं नहीं हूँ। भगवान ने मुझे कला का विवेक तो दिया है लेकिन उसे मूर्त रूप देने का कौशल नहीं दिया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद फैजपुर और हरिपुरा कांग्रेस की साज सज्जा भी नंदलाल को ही सौंपी गई। उनके चित्र हरिपुरा पोस्टर्स नाम से विख्यात हुए। जबलपुर के शहीद स्मारक को स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख घटनाओं को दर्शाते म्यूरलों से सजाने का काम शांति निकेतन को सौंपा गया था। उनके हिस्से दांडी के समुद्र तट से नमक उठाते बापू का म्यूरल बनाने का काम आया। नंदलाल नेपाली ने कागज पर इसका सुंदर चित्रण किया। इस रंगीन स्केच में हालांकि बापू एक छोर पर हैं, फिर भी बापू के पीछे की लहरों के कारण चित्र का केंद्रीय आकर्षण बापू ही हैं। शांति निकेतन के कला भवन में एक और अध्यापक थे विनायक मसोजी। उनसे रहा न गया तो वह दांडी पहुंच गए। वे वहां दिन भर रहे और बापू के लिए बनाई झोपड़ी के सामने हुई सायं प्रार्थना में भी शामिल हुए। रात के समय चल दिए। सुबह ट्रेन में लोग कानाफूसी कर रहे थे कि आधी रात को बापू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बापू घास फूस से बनी कोठी से बाहर खाट पर सो रहे थे। नीचे जमीन पर सत्याग्रही सो रहे थे। पेड़ से लालटेन टंगी थी तभी आधी रात को पुलिस आई। गोरे अफसरों के आदेश पर टॉर्च की तेज रोशनी फेंक कर सभी को जगाया और बापू को गिरफ्तार करके ले गए। मसोजी इस पूरे दृश्य की आसानी से कल्पना कर सकते थे क्योंकि एक दिन पहले ही तो वह वहाँ थे। बाद में उन्होंने इस दृश्य को चित्रित किया। कांग्रेस अधिवेशन की कला प्रदर्शनी में द मिडनाइट अरेस्ट नामक चित्र प्रदर्शित हुआ तो किसी ने बापू से पूछा, क्या यह कलाकार की कल्पना है या वास्तव में ऐसा ही हुआ था? बापू ने कहा, हाँ वो बिल्कुल इसी तरह आए थे।
2: अभी आपने चिंतन में सुना महात्मा गांधी एक यात्रा भाग 4। आलेख व वाचन सुमित गौतम का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस अवसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलकारी है, तथापि उचित तो ये था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण, शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत, विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल से भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को चले जाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। आइए अब आपको सुनवाते हैं जैविक खाद कैसे बनाए विषय पर सोहन सिंह से सामयिक चर्चा।
1: किसान भाइयों, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं होती हैं वहां पर हमारी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन लिया जाए। फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भी अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जिस अनुपात में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुरूप हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही है। हमारी फसलों की पैदावार एक निश्चित पैदावार पर रुक जाती है। रासायनिक खादों की कीमत भी अधिक होती है, जिससे फसल उत्पादन का लागत व्यय अधिक बढ़ जाता है। खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए और लागत व्यय कम करने के लिए अपने फार्म पर जैविक खादें बनाएं। जैविक खाद बनाने के लिए पौधों की सूखी पत्तियां, धान का पैरा, पौधों की जड़ें और फसलों के अवशेष प्रयोग में लाए जाते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए टांका तैयार करते हैं। टांका धरातल के ऊपर बनाएं। टांकों का आकार 12 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा बनाते हैं। टांका की लंबाई और ऊंचाई आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं, लेकिन टांका की चौड़ाई 5 फुट से अधिक न रखें, क्योंकि टांका की चौड़ाई 5 फुट से अधिक रखने पर वायु का संचरण ठीक का नहीं हो पाता है। टांका बना लेने के बाद पहले टांके के धरातल पर कूड़े करकट, पत्तियों, सड़े गले कचरे की 9 इंच मोटी परत लगा देते हैं और इसमें जैविक क्रियाएं कार्य करने के लिए इस परत को पानी से नम कर देते हैं। उसके बाद गोबर का पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद राख फास्फेट का बुरकाव करते हैं। राख फास्फेट का बुरकाव कर देने के बाद खेत की मिट्टी की हल्की परत लगा देते हैं, क्योंकि खेत की मिट्टी में लाखों की संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं जो टांका के अंदर जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। इसी तरह टांका भरते जाते हैं और टांके में 10 परत लगा देते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि यह टांका भरने का कार्य 1-2 दिन में पूरा हो जाए। टांका भरने के बाद जैविक क्रियाएं कम हो जाती हैं और टांके का तापमान भी कम होने लगता है। उस समय पीएसवी कल्चर और H2 वेक्टर का घोल बनाकर खाद से भरे टांकों में सब बल से गड्ढे करके उनमें भर देना चाहिए। पीएसवी कल्चर और एजोटो वेक्टर के घोल से टांका में जो राख फास्फेट डाला जाता है वह घुलनशील अवस्था में हो जाता है। इस तरह यह खाद 90 दिन में बनकर तैयार हो जाती है और इस खाद को फसल में प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खादें रासायनिक खादों की अपेक्षा सस्ती भी होती हैं और इनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होती हैं। अपने फार्म पर आसानी से जैविक खाद बना सकते हैं। रासायनिक खादों के लगातार प्रयोग करने से खेतों में कड़ापन आ जाता है, जिससे मिट्टी की यौगिक संरचना बिगड़ जाती है। जैविक खादों से मिट्टी की यौगिक संरचना बनती है और अधिक समय तक पानी धारण करने की क्षमता विकसित होती है। मिट्टी में भुरुरापन आ जाता है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास अधिक होता है। पौधे अधिक गहराई से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और दाने सिडोल और चमकदार बनते हैं। जैविक खादों का प्रयोग करने से रासायनिक खादों पर किए जाने वाले खर्च में कमी की जा सकती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है। खेतों, पशुशाला और घरों के निरर्थक जीवांश अवशेषों का समुचित उपयोग हो जाता है।
0: कृषि चर्चा में अभी आपने सुना जैविक खाद कैसे बनाए विषय पर सोहन सिंह से सामयिक चर्चा। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। समय है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण का।
2: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय, खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
0: सूचना परक कार्यक्रम दर्पण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार और उसके ठीक बाद प्रातः 7:00 हिंदी में समाचार अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया संस्कृत में समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: अधिकरणानां च वरिष्ठ प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति, येन ते देशे राजमार्गस्य मूलसौकर्याणां विकासस्य वितरणस्य च विषये प्रमुखविषयेषु चर्चां करिष्यन्ति। कार्मिक लोक अभियोग निवृत्ति वेतन मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह अद्य नवदिल्ल्यां सप्तदशतमे निवृत्ति वेतन न्यायालयस्य अध्यक्षता करिष्यति। कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन मंत्रालयः सूचितवान् यत् अतिवरिष्ठ निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां परिवार निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां च दीर्घकालं यावत् विलंबितानां सप्तनवत्यधिक 800 यावत् परिवादानां निवारणं भविष्यति। फुटबॉल क्रीडायां गत विजेता मोहन बागान सुपर जायंट्स दलेन पंजाब एफसी इत्येतं दलं पेनाल्टी द्वारा 43 अंकैः पराजित्य अंतिमस्पर्धायां स्वस्थानं रक्षितम्।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामुला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पामुला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पामुला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पामुला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह को समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।

0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिन मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले प्रातः 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। उसके बाद प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे काव्य पाठ वसुंधरा व्यास से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रातः 7:30 से सुना जा सकेगा। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम जिसमें हम आपकी फरमाइश पर गीत सुनवाते हैं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, सुनिए प्रातः 10:05 से।

प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और उसके ठीक बाद प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रतिभा वर्मा से उनके गाए कुछ गीत प्रातः 8:30 पर। सूचना समाचारों और जानकारी पर केंद्रित आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रातः 9 बजे से सुना जा सकेगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी योगिनी तांबे। योगिनी तांबे से आज आप सुनेंगे ध्रुपद गायन राग अहीर भैरव में। आपके साथ पखावज पर संगत करेंगे जयंत गायकवाड़। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिए प्रातः 9:30 पर।

जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण प्रातः 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। श्रोताओं, प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। प्रातः 10:58 पर आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। प्रातः 11:58 पर दोपहर बाद 2:58 पर आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा भी पुनः आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी। सायं 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। यह कार्यक्रम आज आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। सायं 5:58 पर इस घंटे की खास खबरें और सायं 6:00 आप सुनेंगे NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। सायं 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन सुना जा सकेगा। सायं 7:20 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल हमारे केंद्र से। कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे फसल चक्र की उपयोगिता, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। साथ ही साथ चर्चा होगी विश्व शिक्षक दिवस और विश्व आवास दिवस पर। इसके साथ आप सुन सकेंगे बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी हमारे केंद्र से।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम और रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज का कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। खंडवा जिले के हरसूद में आज रानी दुर्गावती जयंती का राज्य स्तरीय कार्यक्रम, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। भोपाल में कल होगी सीएम यूथ कॉन्क्लेव, 20,000 से ज्यादा युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने खेल मंत्री विश्वास सारंग से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन 3 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं और उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, तकनीकी, नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क समेत कई क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी शाम को मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल मंडला में तेंदुपत्ता संग्राहकों और वन समितियों के सदस्यों को बोनस और लाभांश की राशि वितरित की। प्रदेश के 8 वन मंडलों के करीब 9,00,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में करीब 36 करोड़ रुपए का बोनस ट्रांसफर किया गया। मंडला की 84 वन समितियों के करीब 40,000 सदस्यों को भी करीब 26 करोड़ रुपए की काष्ट लाभांश राशि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा
2: कि लघु वन उपज के लिए यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहिए, एमएसएमई की एक इंडस्ट्री की यूनिट, जिसके माध्यम से कोदो, कुटकी या अन्य प्रकार की प्रोसेसिंग के लिए यहाँ हम फैक्ट्री लगवाएंगे। साथ ही साथ टाइगर देखने जब लोग आते हैं, हमारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब यहाँ मंडला में टाइगर सफारी जू भी बनाया जाएगा। अपने मंडला के लिए यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा।
1: खंडवा के हरसूद में आज रानी दुर्गावती जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और गोंड राजवंश से जुड़े 52 गढ़ों के राजवंशजों का सम्मान किया जाएगा। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। भोपाल के लाल परेड मैदान में कल सीएम यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 20,000 से ज्यादा युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता, नवाचार और नई तकनीकी जैसे विषयों पर युवाओं को जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में 17 विभागों और विभिन्न संस्थाओं के 80 से ज्यादा प्रदर्शनी कक्ष भी लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में सेवा सेतु कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज ग्वालियर के मेला मैदान और कल भोपाल के शाहपुरा में कैंप आयोजित किया जाएगा। यहां पर लोगों को रूफटॉप सोलर लगाने की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और योजना के फायदों

0: जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला कैंपों में नागरिकों और अधिकारियों से संवाद भी करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में कल प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सेवा संकल्प ज्योति यात्रा की तैयारियों को लेकर नरेला विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर 7 अक्टूबर को देशभर में एक साथ ये यात्रा निकाली जाएगी। नरेला विधानसभा के सभी बूथों से कार्यकर्ता और लाभार्थी बाइक से यात्रा शुरू कर मंडल और विधानसभा मुख्यालय होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कल सतना और मैहर जिलों का दौरा किया। मैहर में उन्होंने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और मां शारदा देवी के दर्शन किए। सतना में उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों को सामग्री बांटी और पौधरोपण किया। वहीं प्रदेश भर में संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्वालियर में कल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान किया। झाबुआ में वरिष्ठ नागरिक सम्मान व अंतर पीढ़ीगत जुड़ाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सहभागिता की। वहीं हरदा के मगरधा में आयोजित जनविश्वास एवं सेवा सेतु शिविर में जनजाति कार्य विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शामिल हुए। इसके अतिरिक्त इंदौर के शासकीय PG सेठी अस्पताल में सेवा मेरा योगदान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। डिंडौरी और बैतूल जिलों में भी विभिन्न आयोजन किए गए। आगरमालवा जिले में 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। वहीं मंदसौर में सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार के तहत जिले के 11 नगरीय निकायों में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया गया। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। केंद्र सरकार ने पर्यावरण को हमारी जीवन शैली के साथ जोड़ने के लिए मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को हमारी जीवन शैली से हो रहे दुष्प्रभाव के प्रति जागृत करना है। इंदौर जिले में अभियान के क्रियान्वयन पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली का उद्देश्य धरतीवासियों को पर्यावरण के अनुकूल दैनिक आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 को ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इस अभियान पर अपने विचार व्यक्त किए थे। पर्यावरण को समर्पित इस अभियान के इंदौर जिले में क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए वन मंडल अधिकारी लाल सुधाकर सिंह ने बताया,
3: मिशन लाइफ भारत सरकार की एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की एक पहल है। इसी के अंतर्गत वन मंडल इंदौर में भी हमने मिशन लाइफ के अंतर्गत वृक्षारोपण का अपने परिक्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाया और जुलाई माह में हमने लगभग 3 लाख पौधों का रोपण किया।
2: पर्यावरण संरक्षण को अपना जीवन समर्पित करने वाली पद्मश्री डॉक्टर श्रीमती जनक पल्टा मगिलीगन ने पर्यावरण को जीवन शैली में आत्मसात करने की बात कही।
4: मैं अपना जीवन पिछले 42 साल से इसी काम में ऐसा जी रही हूँ। आधा एकड़ जमीन आधा एकड़ आसमान है उसके साथ मेरा, जिसमें मैं चारों तरफ जैविक बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के साथ जीती हूँ। मेरा जीवन मेरा घर केमिकल मुक्त है, प्लास्टिक मुक्त है और पूरी तरह जीरो वेस्ट है और पूरी तरह जैविक है।
2: पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के भारत सरकार के इस अभियान मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की गतिविधियों की जानकारी के साथ मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
0: भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने करीब 2000 महिलाओं को 3 महीने के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए। उन्होंने कहा कि सैनिटरी पैड के सुरक्षित इस्तेमाल, सही तरीके के निस्तारण और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और इसके लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उज्जैन में शाही मस्जिद के आसपास बंद प्रमुख रास्तों को कल आम लोगों के लिए खोल दिया गया। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत कंठाल चौराहा से छतरी चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 26 सितंबर से यहां सुरक्षा के चलते रास्ते बंद किए गए थे। हालांकि मस्जिद के ठीक आसपास सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात हैं। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रदेश की क्रिकेटर क्रांति गौड़ कल भोपाल पहुंची। उन्होंने खेल मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात कर जीत के अनुभव साझा किए। मंत्री सारंग ने कहा कि क्रांति ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है और उनकी उपलब्धि प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकादमियां संचालित हैं, जहां खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जा रही हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। इस बार मानसून 24 जून को प्रदेश में दाखिल हुआ था।

3 अक्टूबर को विदा हो गया। करीब 100 दिन सक्रिय रहे मानसून में प्रदेश में करीब 908 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो कि सामान्य से 4% कम है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल प्रदेश में बारिश के आसार नहीं है और दिन में धूप के कारण गर्मी, जबकि रात में तापमान गिरने के कारण हल्की ठंड महसूस होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के NSCB मेडिकल कॉलेज में इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट MP चैप्टर का 3 दिवसीय चौथा राज्य स्तरीय सम्मेलन कल आयोजित किया गया। शिवपुरी में पुरानी अनाज मंडी प्रांगण में साप्ताहिक जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार का आयोजन किया गया। दमोह के ग्राम पिपरौधा में आनंद विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल ने शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय के नए भवन का लोकार्पण किया। बैतूल में माय भारत के नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत कल जिले में नशा मुक्ति जागरूकता पदयात्रा निकाली गई और मुरैना जिले के विभिन्न विकास खंडों में सेवा संकल्प अभियान के तहत आज फिट इंडिया खेल सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए वसुंधरा व्यास से काव्य पाठ।
1: नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ, देखिए जिसका मतलब है,

अब चार लाइनें आप लोगों के लिए समर्पित हैं, उसके बाद एक गीत सुनाती हूँ। तुम ही को ढूंढती रहती हूँ आजकल खुद मैं, तुम ही को ढूंढती रहती हूँ आजकल खुद मैं, तुम ही बता दो कहाँ छुप गए हो तुम मुझ में। मेरी हंसी भी तुम्हारी हंसी में शामिल है, तुम्हारे दर्द भी बावस्ता हैं कहीं मुझ में, तुम्हारे दर्द भी बावस्ता हैं कहीं मुझ में। एक गीत आप सबकी नज़र। ओ पथिक रुक तो तनिक,

कितनी सदियों में सुमन मन के खिले हैं, कितनी सदियों में सुमन मन के खिले हैं। ओ पथिक रुक तो तनिक, ओ पथिक

सुन तो तनिक ओ पथिक, सुन तो तनिक अब साथ मेरा मांग ले, प्रेम की सकरी गली।

0: पथिक रुक तो तनिक। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना वसुंधरा व्यास से काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में आज हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ों में फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है जतिन ललित का।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आपने सुना फिल्म खलनायक से इस गीत को। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गायक कलाकार थी अलका याग्निक।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
2: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो
1: बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
2: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
1: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से फिल्म संगीत कार्यक्रम में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। समीर का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड से ये गीत। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था विशाल शेखर का, गायक थे सुनिधि चौहान और शेखर रवजियानी। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पप्पू कांट डांसशाला से। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है मल्हार का, गायक है श्रेया घोषाल।

0: पर मॉर्निंग न्यूज़, दोनों ही न्यूज़ बुलेटिन आपसे कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी। कृपया समाचार प्रभात की प्रतीक्षा करें।
1: भोपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था, ये आकाशवाणी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
3: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
4: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10

0: नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
2: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
3: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
2: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजैक जोरम सांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कोरियरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
4: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजराइल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजराइल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
5: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक

0: दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से आईईडी विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
2: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिंदुस्तान ने लिखा है इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है। भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है। गुजरात के मेहसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi today. Union Minister Sarbanand Sonowal to flag off first international cargo voyage from Dibrugarh in Assam this morning. IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement in Ottawa today. Fly Dubai flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 2026 in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Parmelin will be on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Prime Minister Modi and President Parmelin will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Parmelin will meet President Draupadi Murmu this evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will also call on President Parmelin. More from our correspondent.
6: Earlier in February this year, the Swiss president visited India to participate in the AI Impact Summit in New Delhi. The visit assumes added significance in view of his participation in the second India EFTA Prosperity Summit on 7th of this month to mark the first anniversary of the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement coming into force. Among EFTA countries, Switzerland is the largest trade and investment partner of India. India and Switzerland share long-standing friendly relations. This visit will further strengthen bilateral relations, building upon the regular high-level exchanges and deepen cooperation in new areas of mutual interest. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
5: In Assam, Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal will flag off the maiden international cargo voyage from the newly constructed Bogibeel Terminal in Dibrugarh today. Chief Minister Himanta Biswa Sarma will also join the flag-off ceremony. A report.
7: With the flagging off of the cargo voyage today, Dibrugarh is set to restore its pre-independence legacy as a major inland waterway trade hub. For the first time in more than 8 decades, an international cargo consignment will sail directly from Assam to a foreign port. Union Minister Sarbanand Sonowal will flag off the cargo voyage at 11 a.m. today. The inaugural shipment consists of 1,080 tons of methanol produced by Assam Petrochemical Limited at Namrup. Two renovated cargo vessels will transport the consignment to Pangong Port in Dhaka, Bangladesh. With Jadav Gogoi from Dibrugarh, Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
5: Four airports are set to come up in West Bengal as the state government moves to speed up regional air connectivity. A tripartite MOU between the centre and the state for the four airports will be signed today under the Udaan scheme. Here is a report from our correspondent.
8: West Bengal is set to take a major step towards strengthening air connectivity with the state government signing the agreement with the centre today for the construction of four new airports in the state. The agreement will be signed at Kolkata in the presence of Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu, Chief Minister Shubhendu Adhikari and representatives of the Airports Authority of India. Chief Secretary Manoj Agarwal and Transport Minister Arjun Singh are also expected to attend the ceremony. Under the centre's regional connectivity scheme, the proposed airports will come up at Chhorra in Purulia, Kolaikunda in Poshchim Medinipur, Balurghat in South Dinajpur, and Hashimara in Alipurduar. The projects are expected to give a boost to regional economic activity, investment and tourism.

0: weekend, India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 2026 in Japan. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:30:20 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रतिभा वर्मा से उनके गाए कुछ गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रतिभा वर्मा से उनके गाए कुछ गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है सुगम संगीत का कार्यक्रम, और कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रतिभा वर्मा से उनके गाए कुछ गीत।

श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज कलाकार थी प्रतिभा वर्मा।

कृपया ध्यान दें, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। पात्र लाभार्थियों और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आज ही आयुष्मान ऐप से अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं या डायल करें 14555। सड़क पर गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें। यदि सिग्नल पर टाइमर 90 सेकंड रुकने का निर्देश दे तो इंजन बंद कर दें। बेवजह ईंधन की खपत ना करें।

प्रदूषण भी न बढ़ाएं। हरी बत्ती मिलने पर हॉर्न बजाते हुए आगे जाने की जल्दबाजी न करें। ये दुर्घटना को बढ़ावा तो देगा ही, ध्वनि प्रदूषण से चालकों का तनाव भी बढ़ाएगा। सड़क पर चलने का हक सबको है, इसलिए सबका ध्यान रखें।

श्रोताओं, कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपका दोस्त अनुराग शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिन विशेष से। आज है विश्व शिक्षक दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अक्टूबर के तत्वाधान में इस दिवस को मनाना शुरू किया है। इस दिन अध्यापकों को सामान्य रूप से और कतिपय कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संयुक्त पहल पर संयुक्त बैठक के बाद इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें अध्यापकों की स्थिति पर चर्चा हुई और उनके सुझावों को भी शामिल किया गया। इसे 1994 के बाद से प्रति वर्ष लगभग 100 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है और इस प्रकार वर्ष 2022 में यह 28वां विश्व शिक्षक दिवस था और 2026 में ये 32वां शिक्षक दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। इस अवसर को एजुकेशन इंटरनेशनल नामक संस्था गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए एकजुट हो, ये इनका मोटो है, के नारे के साथ मनाने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का जो ये मोटो है, भविष्य में निवेश करें, शिक्षकों में निवेश करें, इस मोटो के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शिक्षक दिवस को आज यानी 5 अक्टूबर के दिन मनाता है। श्रोताओं, शिक्षक एक हमारे जीवन की वो कड़ी हैं जिसने हमें लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, फिरना भी सिखाया, या यूं कह सकते हैं कि ये कच्चे मिट्टी को एक पक्के घड़े का रूप दिया है, वो शिक्षक ने दिया है। श्रोताओं, आज एक और दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज है विश्व पर्यावास दिवस। ये होता क्या है? ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अभी क्या होता है, पर्यावास का मतलब है कि सभी के लिए पर्याप्त आवास, यानी विश्व के जितने भी नागरिक पूरे समूचे विश्व में रह रहे हैं, हर प्रत्येक नागरिक के लिए समूचा और सुनिश्चित आवास की व्यवस्था करना इस दिवस का उद्देश्य है। मुख्य विषय तुम जैसे आपको बताया सभी के लिए पर्याप्त आवास ही है। इसकी जो थीम भी है वो भी यही है, एडिक्वेट हाउसिंग फॉर ऑल। इसका उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों के लिए सुरक्षित, किफ़ायती और समावेशी आवास तक पहुंच सुनिश्चित करना, जिसे एक बुनियादी मानवाधिकार माना जाता है। ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन एक मानवाधिकार, बुनियादी मानवाधिकार है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो एक बुनियादी मानवाधिकार इसको कहा जा सकता है। आज एक और दिवस है, भगवती चरण वर्मा जी की आज पुण्यतिथि है। आप हिंदी के साहित्यकार थे, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आपका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा। इस उपन्यास में आपने पाप और पुण्य का पता लगाने आदि कहानियों का जो वर्णन किया है। आपका जन्म 30 अगस्त 1903 को शफीपुर संयुक्त प्रांत ब्रितानी भारत में हुआ था, यानी ब्रिटिश इंडिया का जो प्रांत था उसमें हुआ था। आप लेखक थे, भारतीयता आपकी राष्ट्रीयता थी। BLLB आपने डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हासिल की है। उपन्यास कहानीकार और नाटककार आप जाने जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से आप सम्मानित किए जा चुके हैं। हिंदी साहित्य में आपका योगदान अतुलनीय है। आपने भारत के इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रवाहित आधुनिक काल में हिंदी साहित्य को परिभाषित किया है। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव आपके साहित्य में देखने को मिलता है। भारत में औद्योगिकीकरण का प्रारंभ होने लगा था, आवागमन के साधनों का भी विकास हुआ, अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव जब बढ़ा और जीवन में बदलाव आया, ईश्वर के साथ आपने मानव को, सम्मान को, महत्व को समझा और अपने विचारों को लेखन की शैली में उतारा। पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास आपने किया है और छापे खाने के आने के

बाद से आपकी जो रचनाएं हैं उनको एक नई क्रांति मिली। प्रमुख रचनाओं में आपके चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये दो रचनाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1948 में इसका वृहद प्रकाशन किया गया, इसमें मार्क्सवाद की आलोचना आपने की और इसके जवाब में रांगीय राघव ने सीधा साधा रास्ता भी लिखी। आप हिंदी साहित्य के एक अतुलनीय स्तंभ हैं।

श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। कार्यक्रम में अब हम आपको कुछ बेहद ही पॉजिटिव इनोवेशंस और पहल के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जिस खबर ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो है कि इंदौर के एक इंजीनियरिंग के एक्स स्टूडेंट हैं, उन्होंने 502 ग्राम के कैमरे में पूरे टेलीस्कोप को समेट दिया है। आपने ठीक सुना, 502 ग्राम का कैमरा जिसके अंदर पूरा का पूरा टेलीस्कोप समेट दिया। स्पेस एक्स ने पूरा किया इसरो का अधूरा सपना। आप जानते हैं यह खबर पूरी है क्या? उज्जैन के इंजीनियर पुनीत वदेका का बनाया 502 ग्राम का कैमरा मीरा, इन्होंने इस कैमरे का नाम दिया है मीरा, स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 18 मिशन के साथ अंतरिक्ष पहुंचा। भारतीय समय अनुसार 2 अक्टूबर को ये पहुंचा था और कैलिफोर्निया स्थित वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फॉल्कन 9 रॉकेट को भेजा गया। और पुनीत बताते हैं कि विशेष अंतरिक्ष कैमरों से 8 से 10 गुना हल्का है और मीरा को जनवरी में इसरो के PSLV-C62 रॉकेट से अंतरिक्ष में भी भेजा जाना था। तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये हो नहीं पाया, लेकिन अब इसको हरी झंडी मिल चुकी है और इसने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। तो इससे टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो भी काफ़ी मात्रा में बचेगा और देश की तरक्की के नए द्वार भी खुलेंगे। एक और खबर है, पेंशन के पैसों से दंपत्ति ने रेगिस्तान में तैयार किया है एक जंगल। 75 वर्षीय दिनेश भाई और देवेंद्रा बेन ने पक्षियों के लिए जंगल बनाया है। आप गुजरात के मेहसाणा ज़िले के रहने वाले हैं और मेहसाणा ज़िले से 15 किलोमीटर दूर धनोरा गांव में आपने अपने पेंशन के पैसों से जंगल तैयार किया। 75 वर्षीय दिनेश ठाकर रिटायर्ड शिक्षक हैं और उनकी पत्नी देवेंद्रा बेन ने सूखे में पशु पक्षियों को मरते देखा। 15 साल पहले उन्होंने जंगल तैयार करना शुरू किया था। वर्तमान में इन्होंने 5 बीघा में 5,000 से ज़्यादा पेड़ों के इस जंगल में 5,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और इस जंगल में 300 से ज़्यादा मोर और दूसरे परिंदे निवास करते हैं। आपने इसे नाम दिया है निसर्ग निकेतन। ये एक बेहद ही पॉजिटिव खबर है कि हम भी आसपास अपने आसपास पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। कई संस्थाएं इसकी व्यवस्था करती हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी ऐसी चीज़ों को सराहें और अपने आसपास पशु पक्षियों के लिए दाना डालने की व्यवस्था कर सकते हैं। पशुओं से एक मुझे छोटी सी चीज़ और याद आ रही है श्रोताओं, कि आप देख रहे हैं कि गाय में लंपी वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसमें होता क्या है, छोटे छोटे गोल धब्बे गाय के शरीर पर बनने लगते हैं और वो धब्बे जो होते हैं वो घाव का रूप ले लेते हैं। उसमें एक्सट्रीम लेवल पर ब्लीडिंग होने लगती है, कई जगह बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। यदि ऐसा कोई भी पशु आपको अपने आसपास नज़र आए तो नगर निगम की हेल्पलाइन 1962 1962 पर कॉल कर दीजिए। एम्बुलेंस नगर निगम की तरफ से भेजी जाएगी। अत्यधिक बीमार गाय के बीमार होने की स्थिति में वो एम्बुलेंस गाय को आइसोलेशन सेंटर में लेकर चली जाएगी, या फिर यदि उस गाय का इलाज वहीं समय पर कर पाना संभव होगा यथा स्थान पर, तो वहाँ भी उस गाय का इलाज कर दिया जाएगा। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि यदि आपके आसपास गायों का आना जाना है और आप अपने इलाके में या मोहल्ले में गलियों में कोई एक गाय ऐसी आपको लगती है कि इसको लंपी वायरस है, आपने उसे चिन्हित किया है, तो जगह जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो लंपी वायरस की एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। आप उसको ला सकते हैं और उसकी 10 से 15 ड्रॉप्स रोटी में, ब्रेड में, या कोई भी चीज़ जो आप गाय को खाने के लिए देते हैं उसमें दिन में 3 बार डाल के दे सकते हैं, तो हम एक पशु का जीवन इस प्रकार से बचा सकते हैं। यदि आपको ये आयुर्वेदिक दवाई चाहिए गाय के लिए तो मनसापुर हनुमान जी का जो मंदिर है पड़ाव पुल के नीचे, वहाँ ये उपलब्ध है। इसके अलावा नगर निगम की तरफ से और भी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इसे उपलब्ध करवाया गया है। आप जाकर वहाँ से ही फ्री ऑफ कॉस्ट
ले सकते हैं। एक अगली खबर है आर्ट थेरेपी की। हमने सुना है कि कला हमारे दर्द को भूलने में मदद करती है और ऐसा साक्षात उदाहरण देखने को मिला कोलकाता में, जब एक 7 साल की बच्ची ने 2 चित्र बनाए, एक डॉक्टर और एक सैनिक, और दोनों ही महिलाएं। बताया कि मेरी बिल्ली बिना इलाज के मर गई, इसलिए मैं जानवरों की डॉक्टर बनूंगी या फिर सेना में जाऊंगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चल रहे आर्ट थेरेपी क्लिनिक में बच्चे ये सीख रहे हैं और ये अपने दर्द को कम कर रहे हैं। क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसी घटना यदि हमारे साथ घटित हो जाती है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और उसी को दूर करने के लिए आर्ट थेरेपी का सहारा डॉक्टर्स आजकल ले रहे हैं और ये काफ़ी प्रभावी भी

ta, ta dum ta dum ta ta dum ta.

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं सूचना समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। श्रोताओं, कल जापान के शहर आइची नागोआ में एशियाई खेलों का रंगारंग समापन हो चुका है, और अब जो अगला 2030 में एशियाई खेल होंगे वो कतर की राजधानी दोहा में खेले जाएंगे। भारत ने इन एशियाई खेलों में जो जापान में संपन्न हुए हैं उसमें कुल 85 पदक जीते हैं, जिसमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी इसमें से 10 पदक अपने नाम किए हैं। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों में से नीरू भारतीय दल की ध्वजवाहक रही हैं। आपने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक इन एशियाई खेलों में जीता है। इस समापन समारोह में करीब 30 भारतीय खिलाड़ी और अधिकारी भारतीय परिधान में तिरंगा थामे एथलीट परेड में शामिल हुए। समापन समारोह और उद्घाटन समारोह में एक एथलीट परेड होती है, यदि आपने गौर किया हो तो। उद्घाटन समारोह में औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सभी एथलीट्स और उनके जो मैनेजर्स होते हैं, कोचेज होते हैं, वो एक परेड के रूप में स्टेडियम में शामिल होते हैं। और ठीक इसी प्रकार से खेल समारोह समाप्त होने के बाद भी ऐसा ही किया जाता है। भारत इन एशियाई खेलों में चौथे स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ है, द्वितीय स्थान जापान, तृतीय स्थान कोरिया, और भारत ने चौथे स्थान पर ये अपना जो एशियाई खेलों का सफ़र है उसे समाप्त किया है। ये भारत का दूसरा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना गया है। इससे जो हमारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है एशियाई खेलों में वो 2022 के चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में है। आशा करते हैं कि 2030 में भारत पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा।

श्रोताओं, अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि आपके साथ कार्यक्रम को आगे जारी रखा जाए। कार्यक्रम में आपके साथ मैं था आपका दोस्त अनुराग शर्मा। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचना समाचारों और जानकारी पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9

9:30 और 30 सेकंड्स हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं योगिनी तांबे से ध्रुपद गायन राग अहीर भैरव में। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे हैं जसवंत गायकवाड़।

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज आपने शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुना योगिनी तांबे से ध्रुपद गायन राग अहीर भैरव में। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे जसवंत गायकवाड़। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है। डीजे प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

के सदस्यों ने स्वागत किया। बुरहानपुर जिले में बीते दिनों विश्वकर्मा जयंती भी उत्साह के साथ मनाई गई। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में विद्यार्थियों ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने तकनीकी शिक्षा और हुनर के महत्व को भी समझा। दिव्यांगजनों के लिए भी जिले में सेवा का अवसर है। एल्मको उज्जैन की ओर से 8 अक्टूबर को सेवा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें नगर निगम और जनपद पंचायत क्षेत्र के चिन्हित 49 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। शाहपुर की दुर्गा ताड़े ने आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़कर दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल कायम की है। आजीविका अंबिका स्व सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने खुद को आगे बढ़ाया है और दूसरी महिलाओं को भी समूह की गतिविधियों से जोड़ा है। बुरहानपुर जिले में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नेपानगर में युवा संगम कार्यक्रम के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में हुए इस मेले में युवाओं को कंपनियों से सीधे जुड़ने और स्वरोजगार के अवसर तलाशने का अवसर मिला। सड़क हादसों को रोकने के लिए बुरहानपुर पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 28 सितंबर से 10 दिन का यातायात जागरूकता और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने के साथ साथ नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बीते दिनों कृषि विज्ञान केंद्र सांडस कला में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पढ़ाई का एक अलग ही अनुभव मिला। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परेठा के 81 विद्यार्थी किताबों से निकलकर खेत की पाठशाला में पहुंचे। कृषि वैज्ञानिकों ने उन्हें आधुनिक खेती, फसल प्रबंधन और कृषि के जरिए रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर को बुरहानपुर में सेवा संकल्प दिवस मनाया गया। इस दौरान अलग अलग जगह पर पौधरोपण, मरीजों को फल वितरण और रक्तदान शिविर जैसे सेवा कार्य किए गए। लोगों ने सेवा कार्यों के जरिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भी खास बनाया। सेवा संकल्प अभियान के तहत शाहपुर के सांदीपनी विद्यालय में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए जनसेवा और सामाजिक भागीदारी का संदेश दिया। इस नाटक के माध्यम से लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया गया। विश्व रैबीज दिवस पर बुरहानपुर के वेटरनरी हॉस्पिटल में बीते दिनों निःशुल्क एंटी रैबीज टीकाकरण शिविर लगाया गया। एनिमल केयर फाउंडेशन, नगर निगम और वेटरनरी हॉस्पिटल के संयुक्त आयोजन में बड़ी संख्या में पशुओं का टीकाकरण किया गया और लोगों को रेबीज से बचाव तथा पालतू पशुओं के समय पर टीकाकरण के प्रति भी जागरूक किया गया। जिले में पितृपक्ष श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। लोग अपने पूर्वजों को याद करते हुए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। धार्मिक आस्था के साथ परिवारों में पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव भी देखने को मिल रहा है। वहीं बुरहानपुर में गणेश उत्सव भी पूरे भक्तिभाव और धूमधाम से मनाया गया। घर घर गणपति बप्पा विराजे तो शहर और गांव में भी भव्य पंडाल सजाए गए। जिले भर में 2000 से ज्यादा पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी। खकनार ब्लॉक के दहिंदा गांव में गणेश उत्सव इस बार सामाजिक सेवा का संदेश लेकर भी आया। युवाओं ने 11 दिनों तक गणपति आराधना के साथ जरूरतमंद लोगों की मदद की। धार्मिक आयोजन के साथ सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का ये प्रयास लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। वहीं अब नवरात्रि को लेकर भी बुरहानपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों में रंगरोगन और सजावट का काम चल रहा है। वहीं मूर्तिकार माता रानी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक श्रद्धालुओं में नवरात्रि को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सागर।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन EIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:05 और 20 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। फिर से सुनिए 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की पहली फरमाइश है आप सभी की। आप हैं ग्राम संदलपुर आतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव, MLB रोड ग्वालियर से सुरेश, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरफ खुराना, SK पप्पी। इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास संदेश आया है। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे।

सुनीता शिंदे, यशराज ऋषि और कृष्णा घुटके। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म इश्क ज़ादे से ये गीत। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने, संगीत है अमित त्रिवेदी का, गायक हैं जावेद अली और श्रेया घोषाल।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना फिल्म भाग मिल्खा भाग से इस गीत को। इस गीत को संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने, गायक थे जावेद बशीर। फरमाइश करता थे आप सभी, आप हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी चित्ररेखा वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, उमेश धनेश्वरी वर्मा। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया। ग्रामनगर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन मंगला और राजेंद्र शाह। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सभी की, आप हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान। श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्हार, अविका जीविका, सानू कुम्हार, अर्चना कुम्हार। कोयते बस्ती पुनावले से संजय सोनवने, कनिष्मा सोनवने, अविका सईशा, दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद्र, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश कौहर और सुनील पाठक। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर शफाकत अमानत अली को, शंकर एहसान लॉय का संगीत, जावेद अख्तर का लिखा फिल्म माय नेम इज खान से ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से इस गीत को। इस गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत था प्रीतम का, गायक थे आतिफ असलम। पसंद करता थे आप सभी आप हैं। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब आसमा कुरेशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरेशी। जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार, कल्लू मल्लू कालिया बेलदार। छटिया पोखर डुमराव से फातिमा अली बेलदार, डब्बू वली, आसमा वली, सोनम वली। बिहार भवन दिल्ली से अकरम कुटरिया, उल्लाह कुटरिया। जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर। सरगुजा मेन पार्ट से रूबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, रेशमा थापा। झांसी से फकरुद्दीन अंसारी, बद्रू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी और फर्जू वली अंसारी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
0: कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सभी की आप हैं। चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, बल्लू वली जाटव, सोनम वली जाटव। कुम्हार गली कोलगांव से पांडू चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुम्हार। जिला झारखंड बड़ा बाम्बो, सुपाई साईगांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती और प्रकाश तांती। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना। असम से हितेंद्र दास। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म दबंग का ये गीत। इस गीत को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने, गायक हैं राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल, लिखा है फैज अनवर ने।

अभी आपने सुना फिल्म टू स्टेट से ये गीत। इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत था शंकर एहसान लॉय का, गायक थे अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा। फरमाइश करता थे आप सभी, आप हैं आदर्श नगर मलौट से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। पटेल नगर मलौट से राजेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी राजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, बेबी आरजू जाजौरिया। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण और इस समय प्रसारित हो रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। फिर से सुनिए 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सभी की। आप हैं छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी,

शमीम बानू, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ यूपी से शकीला बानो, शहबाज खान और इस्लामुन्निशा, इसके साथ ही हमें संदेश आया है मालवा रेडियो श्रोता संघ बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश, ऋषि वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिमा अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, शशि रक्षित, चितरंजन कमल, उमेश, सरोज आरती, रेखा रॉबिन, रिचा स्वीटी, सागर रिया, जीतु और ऋषभ राजावत। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर रांझना का ये गीत। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है यार रहमान का, गायक हैं जावेद अली और कीर्ति सागिया।

श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश की आज की अंतिम फरमाइश है। आप सभी की आप हैं। दिल्ली से शिवा रानी शर्मा, प्रतुल, आभा, प्रनीमा, अर्निश, पीयूषा, डॉक्टर सीमा शर्मा, निकिता, डॉक्टर ब्रजेश शर्मा, अनिमेश, ईशान, सुनील, पिंकी, बलजीत, सुमिता, गणेश और भाविका, आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म महल का ये गीत। इस गीत को लिखा है शाकत अली देहलवी ने, संगीत है खेमचंद प्रकाश का, गायक है लता मंगेशकर।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगी। श्रोताओं, 11 बजे से सभा की समाप्ति तक आप सुनेंगे मध्य प्रदेश आकाशवाणी से प्रसारण।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति पारमेलिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में सेवा सेतु कैंप लगाए जा रहे हैं। आज ग्वालियर के मेला मैदान और कल भोपाल के शाहपुरा में कैंप का आयोजन किया जाएगा। खंडवा के हरसूद में आज रानी दुर्गावती जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और गोंड राजवंश से जुड़े 52 गढ़ों के राजवंशजों का सम्मान करेंगे। भोपाल के लाल परेड मैदान में कल सीएम यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 20,000 से ज़्यादा युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। यहां पर युवाओं को करियर और रोजगार की नई संभावनाओं से रूबरू भी कराया जाएगा। भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने करीब 2,000 महिलाओं को 3 महीने के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए। प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे कारंजा गांव में बाला साहेब देवरस नेत्रालय शुरू होने जा रहा है। इसका फायदा बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के साथ साथ आसपास के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा। और मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल प्रदेश में बारिश के आसार नहीं हैं और दिन में धूप के चलते गर्मी, जबकि रात में तापमान गिरने से हल्की ठंड महसूस होगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज आपके साथ हूँ मैं, आपके हम सफर छाया पाठक। ये कार्यक्रम आपकी पसंद के गीतों के साथ और आपके साथ जुड़ने का कार्यक्रम है। गीतों के साथ ही साथ आपकी यादों और आपकी बातों के रंग के साथ भी हम जुड़ते हैं। श्रोताओं, कहते हैं ना, संगीत केवल कानों तक नहीं पहुंचता, बल्कि वो सीधे दिल को छूता है। तो आज एक बार फिर तैयार हो जाइए अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए। आप हमें फोन कीजिए, बताइए अपना नाम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। हो सकता है आपकी पसंद का गीत किसी और श्रोता की भी कोई खूबसूरत याद ताज़ा कर दे। तो फोन कीजिए और अपनी फरमाइश हमारे साथ साझा कीजिए। आइए गीतों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं इस फोन

0: आज तो छुट्टी है इसलिए आपने फोन भी लगा लिया। रोज कब जाते हैं आप?
1: मैम रेगुलर नहीं जाते, मैं कभी कभी जाता हूँ क्लास जब रहती है मेरी, क्योंकि यहाँ क्लास अब रेगुलर पूरे हफ्ते में, हफ्ते के 3 दिन ही रहती है।
0: अच्छा चलिए तो बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे।
1: मैम फिल्म का नाम है दिलवाले,
0: दिलवाले
1: जी शाहरुख खान की है वो, उसका गाना है जन्म जन्म।
0: जन्म जन्म। कुछ खास वजह इस गीत को सुनने की?
1: नहीं मैम
0: नहीं। चलिए सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: श्रोतो, एक गीत खत्म हुआ लेकिन उसकी धुन अभी भी हमारे मन में गूंज रही है। तो अपनी फरमाइश के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो
0: जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या बात है, बड़े जोश में बोल रहे हैं, किससे बात हो रही है?
1: नीरज उपाध्याय से बात हो रही है, मैं अनूपपुर जिले से बोल रहा हूँ।
0: जी, आपसे तो पहले भी कई बार बात हुई है।
1: काफी इस पे

0: मैं एक हफ्ते बाद ही लगाया फोन।
1: बिल्कुल, ये ध्यान आप लोग रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी का धन्यवाद इसके लिए। बताएं नीरज जी, अनूपपुर में आप क्या करते हैं?
0: अनूपपुर जिले में हमारा कोल माइंस के क्षेत्र है, कोयला का खदान है, यहीं पास देख रेख का काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के हम।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आप कार्यक्रम प्रतिदिन सुनते हैं?
0: बिल्कुल मैडम, सुबह से हमारी आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल ऑन रहती है, मोबाइल के माध्यम से सुनते रहते हैं।
1: मध्य प्रदेश भोपाल ही पसंद आता है या और भी कोई से सुनते हैं?
0: मैडम लोकल भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, अपना शहडोल पड़ता है, शहडोल।
1: शहडोल, जी
0: जी
1: शहडोल
0: जी
1: से कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
0: मैम शहडोल में तो लोकल कार्यक्रम नहीं चलते, वही प्रसारित विविध भारती के वगैरह चलते रहते हैं। जी
1: अच्छा,
0: आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
0: जी मैम,
1: बताएं आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आज?
0: मेरे को आप सुना दीजिए, आप कुमार सानू जी की आवाज है और गाने के बोल है, चांद मुझे आया है नजर, ए रात जरा थमके, बोला ए रात जरा करके एक गाना है, मैम वही सुनना है मुझे।
1: तो फिल्म का नाम आप बताएंगे क्या?
0: फिल्म का नाम तो याद नहीं है मैम, लेकिन गाने बोले है कि वही ए रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर।
1: पर देखिए नीरज जी, आप भरे दिन में एकदम सूरज जब सर पर है तब आप चांद वाली फरमाइश कर रहे हैं।
0: बिल्कुल मैम, मौसम खुली हुई है, रात में चांदनी दिखती है, अच्छा लगते हैं।
1: नहीं, रात में दिखती है ना, अभी तो दिन है, दिन में तारे नजर आते हैं।

0: आपकी फरमाइशों में छिपी हैं आपकी पसंद, आपकी यादें और आपकी भावनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और सुनते हैं हमारे अगले श्रोता को। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। मैं हूं आज आपके साथ छाया पाठक। नमस्कार। हेलो।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर
0: जी। हसीना जी, आपसे तो अक्सर बात होती है हमारी, है ना
1: जी, पर अभी बहुत दिनों से बात नहीं हुई।
0: जितने श्रोताओं से मैं बात करती हूँ सभी का यही कहना है कि बहुत दिनों से बात नहीं की।
1: वो क्या है मैडम कि मैं तो जॉब करती हूँ इसलिए मेरे को संडे को ही टाइम मिलता है, बाकी बीच में टाइम नहीं मिलता है।
0: अच्छा, तो आप इतवार को ही लगाती हैं, तो क्या करती हैं आप?
1: ये गनी बैग का जूट का काम करते हैं मैडम।
0: जूट का काम करती है?
1: हाँ, जूट ये गनी बैग आता ना जूट।
0: हाँ हाँ, तो आप ये इसका मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से लाती हैं?
1: ये तो फैक्ट्री में जाते हैं मैडम, वहीं पर करते कारखाने में।
0: अच्छा, आपको खुद का नहीं, आप काम करती हैं वहाँ पर?
1: हाँ हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, जॉब करती हूँ
0: जी। अच्छा जी, तो कितना
1: आप कैसे हो?
0: बस हम बढ़िया हैं। तो एक दिन में कितना कर लेती हैं आप?
1: ये ठेके से करते हैं मैडम, जितना भी हो जाए अपने ऊपर है ये।
0: अच्छा, तो ये सैलरी देते हैं या आप जितना काम करती हैं उसके हिसाब से पेमेंट करते हैं?
1: नहीं, अपने को जितना भी करना हो।
0: जितना करना हो?
1: हाँ।
0: तो कितने घंटे काम करती हैं आप?
1: 8 घंटे।
0: 8 घंटे काम करती हैं, बहुत अच्छा। और क्या क्या बनाती हैं वहाँ?
1: ये रफू होता है मैडम, हाथ से सिलाई होती है इस वजह से।
0: अच्छा,
1: रिपेयरिंग होते हैं?
0: रिपेयरिंग होती है
1: जी।
0: आपने बताया कि जूट का काम करती हैं, तो जूट से तो चीजें बनती है ना?
1: जूट से वो चीजें अलग बनती है, मगर हमारा जो वारदान का काम होता है।
0: अच्छा, वारदान वाला काम होता है?
1: हाँ,
0: ठीक है, ठीक है।
1: जूट में आता है ना
0: जी? हाँ, वो भी जूट में आता है, तो उसकी रिपेयरिंग करती हैं आप?
1: हाँ, उनकी रिपेयरिंग करते
0: हैं। बताएं, आज आपकी फरमाइश क्या है?
1: फिल्म का नाम है आपका गोला, और फिल्म का नाम है और गाने के बोल है तौबा रे तौबा, हाय मेरे रब्बा, ये क्या गजब किया, जिसको बनाना थी लड़की उसे लड़का बना दिया।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: बताएं कौन बोल रहे हैं?
1: पंडित शिव नारायण तिवारी बोल रहा हूँ, सागर से।
0: तिवारी जी,
1: आप
0: सागर
1: कौन बोल
0: में
1: रहे जी?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: नमस्ते मैम।
0: जी, सागर में आपका कारोबार क्या है?
1: हम पंडिताई करते हैं मैम।
0: पंडिताई करते हैं, तिवारी जी हैं तो पंडिताई करते हैं। तो आजकल तो
1: बिल्कुल
0: आप मतलब ये कह सकते हैं कि आपका सीजन चल रहा है।
1: जी, बिल्कुल। पृथ्वी पक्ष चल रहा है।
0: तो आप सब तरह की पूजा करवाते हैं?
1: बिल्कुल, सभी प्रकार की पंडिताई करते हैं, देवी हवन करते हैं, यज्ञ वगैरह में
0: तो
1: सभी
0: ये
1: में
0: आपका
1: जाते हैं।
0: पैतृक
1: कल
0: काम था
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: आपने खुद से ये सीखा है?
1: हाँ पहले से हमारे चाचा जी करते थे, पिताजी
0: चाचा जी करते थे,
1: नहीं करते थे,
0: पिताजी नहीं
1: पिताजी
0: करते
1: नहीं
0: थे।
1: करते
0: अच्छा, चाचा जी से आप में आ गया।
1: थे। सागर में ही पढ़े हैं हम, धर्मश्री है हमारी विद्यालय वहाँ पर।
0: तो ये सागर क्षेत्र तक ही सीमित है या आसपास भी जाते हैं?
1: बाहर भी चले जाते हैं, जैसे भोपाल भी जाते हैं कभी कभार, इंदौर, भोपाल, सभी जगह।
0: इतनी दूर तक आपके जजमान हैं?
1: हाँ जी, दूर दूर जाते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप इस बहाने भाई पूजा पाठ भी आपकी साथ में हो जाती है और
1: जी
0: आपका
1: वो
0: आमदनी
1: हमारी
0: भी साथ में
1: मिलता
0: हो जाए। जी,
1: जी
0: तो अभी इस समय तो आप बहुत व्यस्त होंगे, उसमें से भी आपने समय निकाल लिया।
1: जी वो पूजे है, पृथ्वी पक्ष चल रहे तो कहीं
0: श्राद्ध
1: पूजा
0: में
1: काम
0: लोग
1: निकल जाए।
0: करवाते होंगे जिनके जब
1: बिल्कुल
0: तिथि
1: बिल्कुल
0: होती होंगी,
1: बिल्कुल
0: तो आप
1: जी।
0: ये
1: कल महालक्ष्मी, कल महालक्ष्मी थी,
0: कल महालक्ष्मी थी जी, उसका
1: गुरुदेव
0: पूजन
1: हाथ रहे,
0: करवाए
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: पूजा व्यस्त रहे। और मंदिर की भी पूजा करते हैं गांव में।
0: तो आप यही करवाते हैं या आप गया वगैरह भी गए हैं जजमानों के साथ,
1: हाँ
0: वहां भी जाते हैं?
1: हाँ वहाँ नहीं ले जाते लोग, लेकिन हाँ जो लोग जाते हैं वहां से लौट के आते तो उनकी पूजा करना पड़ती है। बिल्कुल
0: तो आजकल यजमानों से आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: ना, और क्या, यजमान लोग बड़े श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा करें, और जो चले जाते उनके लिए भी पिंडदान करें, और सभी अच्छे से अपने माता पिता की सेवा
0: नहीं,
1: करते
0: बाकी जो
1: रहें।
0: पूजन सामान्य पूजन करवाते हैं तो आपको कुछ शिकायत या कुछ और कहना चाहेंगे यजमानों से, तो इसके
1: यही
0: माध्यम
1: कहना
0: से कह
1: चाहते हैं कि
0: सकते
1: अच्छे
0: हैं
1: माता
0: आप?
1: माता पिता की सेवा अच्छे से करें, और बाद में भी जो होता है पितृदान, पितृपक्ष में जो कुछ भी, तो अति श्रद्धा से करें।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब बताएं आप क्या सुनेंगे आज?
1: आज सुनेंगे शेष नांग फिर
0: शेष नाग, कौन सा गाना?
1: मिलन के गीत रे में तो।
0: जी, बिल्कुल सुनवाएंगे।
1: ठीक है मैम,
0: चलिए, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: जसराम जाटा बोल रहे मैडम, जोराई से।
0: ये कहाँ पड़ता है जोराई, बताएंगे कुछ?
1: सीपरी जिले में पड़ता है मैडम।
0: सीपरी जिले में पड़ता है।
1: हाँ हाँ
0: अच्छा, इसकी कुछ खास बात आपके गांव की?
1: हमारे गांव में मैडम बहुत बढ़िया है। हमारे गांव के पास में एक गांव है, देखने लायक वो है।
0: क्या देखने लायक है?
1: जैसे सर्प काट लेता है ना तो यहाँ पर सही हो जाते हैं।
0: अच्छा, तो आपने प्रत्यक्ष देखा है ऐसा किसी को ठीक होते आपके
1: हाँ
0: गांव का ही
1: हाँ
0: कोई?
1: मैंने तो पहले देखा है। जैसे सर्प काट लेता है तो यहाँ से सही हो जाते हैं।
0: तो वही झाड़ फूंक करवाते हैं वहां पर,
1: हाँ हाँ मैडम।
0: तो आज भी लोग इस पर विश्वास करते हैं कि झाड़ फूंक करने से सर्पदंश जो है उसका असर खत्म हो जाता है। आप भी मानते हैं
1: हाँ
0: सर?
1: हाँ मैडम। हाँ हाँ विश्वास है हमको तो मैडम, हमने तो आंखों से देखा है ना। हाँ मैडम।
0: अच्छा चलिए, हालांकि ऐसा नहीं है, लोग इसी चक्कर में अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, इसके प्रति हमें जागरूक होना होगा। ये गांव में अक्सर होता है कि लोग झाड़ फूंक के चक्कर में उलझ जाते हैं और जब तक अस्पताल पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है।
1: हाँ वो तो ऐसा तो हो जाता है तो क्या मैडम, ऐसे तो मृत्यु भी हो जाती है,
0: नहीं
1: ऐसा
0: तो
1: तो हो जाता है।
0: इसीलिए जैसे ही अपने को इस बात का आभास हो कि हमें किसने काटा है, जहरीली जीव जंतु ने कभी भी काटा हो, तो तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए मरीज को।
1: हाँ मैडम जी,
0: चलिए बताएं आज क्या आप सुनेंगे?
1: हमको मैडम सुनना है गाना कयामत का, सुना दिए। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, ये गाने के बोले मैडम।
0: चलिए सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, कभी कोई गीत हमें हंसा देता है तो कभी पुरानी यादों में ले जाता है और कभी मन को सुकून दे जाता है। संगीत के साथ समय कब बीत जाता है इसका पता ही नहीं चलता, और जब साथ हो आप जैसे श्रोता तो ये सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, आप सुन रहे हैं, हमारी बात किससे हो रही है?
1: इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, जी अक्सर आपसे बात होती रहती है हमारी।
1: जी मैडम
0: जी, आज आप क्या फरमाइश लेकर आए हैं?
1: आज मैं फरमाइश लेकर आया हूँ मैडम, फिल्म का नाम है खट्टा मीठा और उसमें गाना है ये जी ना है अंगूर का दाना, खट्टा मीठा गाय किशोर कुमार उषा मंगेशकर, ये गीत है मैडम। और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, आकाशवाणी भोपाल में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को
0: जी ये बताएं, आप अक्सर ये गाना सबको समर्पित क्यों कर देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है?
1: क्या है ना कि कुछ लोग कुछ उद्घोषक बोलते हैं कि किसको डेडिकेट कर रहे थे, उनको याद रहता है तो भाई सबको डेडिकेट।
0: नहीं ऐसे देखिए, हम संगीत सुनते हैं अपने लिए, क्योंकि पसंद आप अपनी बताते हैं इसका मतलब आप अपनी पसंद सुनना चाह रहे हैं, हम कभी भी दूसरों की पसंद नहीं बताते।
1: हाँ वो खाए, वो डेडिकेट करने
0: जी,
1: के लिए सभी
0: नहीं
1: लोग
0: वो
1: है,
0: वो
1: तो वही समय कोई आदत हो जाता है तो
0: नहीं नहीं वो छोड़िए, क्योंकि पसंद हमारी होती है हमेशा, इसलिए ये सिर्फ हमारे लिए है, हम सुनना चाह रहे हैं।
1: जी मैडम जी,
0: खट्टा मीठा फिल्म का शीर्षक गीत आप सुनना चाहेंगे, सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत।

0: आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ब्लैकमेल का गाना, किशोर कुमार की आवाज़ है। राजेंद्र कृष्ण ने गाने को लिखा है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल जयवेद और डॉक्टर अमीनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने इस गाने को पसंद किया है। और साथ ही साथ ये फरमाइश है मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और जुबैर अंसारी।
1: साथ ही साथ ये फरमाइश हम तक आई है दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी और हेमलता कुलकर्णी और साथ ही साथ सियार कुलकर्णी। सुनिए आप सबकी पसंद का ये नगमा।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिए मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति।

0: कॉलेज में रिजल्ट आने पर छात्र शोरगुल कर रहे हैं।
1: अरे भाई वो आज रिजल्ट आने वाला है भाई। हाँ चलो यार, चलिए देखते हैं यार मेरा क्या होता है क्या नहीं होता।
2: अरे यार मेरा देखना, मेरा रोल नंबर।
1: आपका रोल नंबर जो है ये रहा।
3: राजमोहन को तो टॉपिंग करना है भाई। छोड़ो यार राजमोहन का, देखो यार राजमोहन का देखो।
2: अरे राजमोहन का रोल नंबर
3: ये रहा। हाँ हाँ फर्स्ट नंबर पे।
4: क्या टॉप किया यार,
3: फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है राजमोहन अपना। चलो भाई इस साल तो जैसे तैसे अपनी नैया पार हो गई। नाम के पीछे एमए की डिग्री तो लग गई।
1: हाँ भले ही थर्ड डिवीजन हो पर क्या फर्क पड़ता है।
3: तो यहाँ किसे कलेक्टर बनने का शौक है, पास हुए और इज्जत बची काफी है।
1: क्या मतलब?
4: तुम्हें नहीं मालूम इनकी शादी जिन देवी जी से तय हुई है वो बीए पास है।
1: अरे भाई जानते हो यूनिवर्सिटी में टॉप किसने किया है?
3: किसने?
1: अपने राजमोहन ने।
2: अरे राजमोहन,
1: राजमोहन फर्स्ट क्लास फर्स्ट।
4: तो पूरा विश्वास था भाई कि राजमोहन ही टॉप करेगा।
3: तो चलो यार उन्हें पकड़ते हैं, दावत लिए बिना नहीं छोड़ेंगे।
1: हाँ दावत लिए बिना नहीं चलेंगे। चलो आज की शाम राजमोहन के नाम।
0: सब मित्रों ने राजमोहन से दावत ली। रात के 12 बज गए। बिस्तर पर लेटे लेटे वो सोच रहा था।
5: मैंने सोचा भी न था यूं अचानक दोस्तों के बीच धर लिया जाऊंगा। यूं खुश तो मैं भी हूं, बेहद खुश। जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू की एमए हो जाऊं पूरी हो गई है, वो भी इस कदर शानदार ढंग से। सभी कुछ तो है मेरे पास, नौजवान हूं, रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं है। मगर अफसोस इस बात का है कि मेरी शादी एक ऊंचे घर में कर दी गई है, कुमोदिनी। हाँ यही नाम है उसका। हालांकि मैंने

0: कागज की सूरत भी नहीं देखी है, मगर मुझे पूरा यकीन है उसकी संगत में मुझे वो आनंद नहीं मिल सकता जो मिस लीलावती की संगत में संभव है। मिस लीलावती जितनी सुंदर और जहीन है उतना ही सुंदर गला है उनका। मेरे साथ बीए किया है, पोएट्री से उसे खास लगाव है। कहां मिस लीला और कहां कुमुदिनी, शादी हुए 2 साल हो चुके हैं मगर उसने मुझे एक भी खत नहीं लिखा है। मैंने 2-3 बार खत लिखे भी मगर किसी का जवाब न मिला। इससे मुझे शक हो गया है कि उसकी तालीम भी बस यूं ही सी है। क्या मैं इस लड़की के साथ जिंदगी बसर करने पर मजबूर होऊंगा? नामुमकिन। मैं उसे छोड़ दूंगा, मिस लीला को अपनाऊंगा, चाहे जो भी हो। मिस लीला वेल बिहेव्ड हैं, ग्रेजुएट हैं, कितने तपाक से पेश आती हैं।
1: बीते रोज की घटना आज भी राजमोहन के जहन में ताजा है।

0: कठिन
1: बावरी। कितना सुंदर गाती हैं आप। जी चाहता है सुनते रहें, सुनते रहें। ओह कैसा दर्द, कैसी तड़प।
0: हाँ शायद इसीलिए मुझे भी बहुत पसंद है ये गीत। विरह की वेदना, अजीब सी छटपटाहट।
1: दर्दीले गीतों में कुछ अजीब कशिश होती है ना, जाने क्यों। शैली ने कहा है ना,
0: क्या
1: अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट।
0: हिंदी में भी एक कविता है।
1: अच्छा
0: सुनिए।
1: हाँ।
0: विरही होगा पहला कवि, विरही होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।
1: वाह। विरही होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है।
0: पोएम नहीं राजमोहन जी, कविता, कविता। आप तो पूरे अंग्रेज हैं।
1: लीला जी ऐसी बात नहीं, मैं अंग्रेज नहीं हूँ, मैं पूरा भारतीय हूँ, लेकिन अंग्रेजी मेरा प्रिय विषय है लीला जी।
0: तो अंग्रेजी में तो आप टॉप करेंगे।
1: क्या कुमुदनी की वजह से ही मैं मिस लीला से हाथ धो लूंगा? नामुमकिन, मैं इन्हें जरूर अपनाऊंगा, जरूर अपनाऊंगा।
2: इन्हीं ख्यालों के असर में राजमोहन ने अपनी डायरी लिखी और उसे मेज पर खुली छोड़कर बिस्तर पर लेट गया। सोचते सोचते जाने कब आंख लग गई, सपने में भी मिस लीला के स्वर गूंज रहे थे।
0: विरही होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पिया मिलने कठिन बावरी।
2: इन्हीं हसीन लम्हों की याद में खोया हुआ राजमोहन बेखबर सोता रहा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो देखा सामने कुर्सी पर बैठे हुए बाबू निरंजन दास उसकी डायरी पढ़ रहे थे। वे राजमोहन की पत्नी कुमुदिनी के सगे भाई हैं, बड़े हंसमुख और सुंदर स्वभाव के नौजवान। कुछ ही दिनों पहले यहाँ तबादला होकर आए थे। राजमोहन की उनसे गाढ़ी दोस्ती हो गई। राजमोहन ने उनसे पूछा,
1: अरे निरंजन बाबू तुम, अरे क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ ली?
3: हाँ पढ़ तो ली,
1: मगर कुमुदनी से कुछ मत कहिएगा प्लीज।
3: बहुत अच्छा, नहीं कहूँगा।
1: इस वक्त किसी सोच में हो?
3: हाँ घर से खत आया है, पिताजी बीमार हैं।
1: ओह,
3: दो तीन दिन में जाने वाला हूँ।
2: बाबू निरंजन दास ये कहकर चले गए।
4: कौन है?
5: मैं हूँ राजमोहन।

0: नौकर राजमोहन की आवाज पहचान कर दरवाजा खोल देता है।
1: राम राम बाबू साहब।
2: राम राम। घर में कोई है?
1: कोई नहीं है घर में।
2: प्रोफेसर साहब?
1: वो तो कॉलेज गए हैं।
2: अच्छा, और लीलावती जी?
1: बीबी जी?
2: हाँ?
1: बीबी जी, उनकी तो तबीयत दो तीन दिन से खराब थी।
2: अरे,
1: सो वो हवा पानी बदलने नैनीताल गई हैं।
2: नैनीताल? अच्छा, चलता हूँ।
1: अच्छा, राम राम बाबू साहेब।
3: राम राम भाई।
2: लीला नैनीताल चली गई, खबर भी नहीं की मुझे। क्या नाराज थी मुझसे? आखिर इस तरह अचानक?
0: इसी तरह का विचार करता हुआ राजमोहन घर पहुंचता है।
4: बाबूजी।
2: हाँ हाँ, बोलो भाई।
4: प्रोफेसर साहिब के घर से एक चिट्ठी दे गया था कोई।
2: अच्छा, कब दे गया था वो?
4: इधर आप घर से निकले, उधर से वो आया, आकर हमसे पूछा कि आप हैं घर में। मना करने पर ये चिट्ठी दे गया।
2: ठीक है, लाओ मुझे तो ये चिट्ठी
4: दीजिए।
2: ओह, ये तो लीला का खत है।
5: मैं बीमार हूँ, जीने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टर कहते हैं प्लेग है, मगर जब तक तुम आओगे शायद मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा। आखिर वक्त तुमसे न मिलने का सख्त सदमा है। मेरी याद दिल में कायम रखना। मुझे सख्त अफसोस है कि तुमसे मिलकर नहीं आई। मेरा कसूर माफ करना और अपनी इस अभागिन लीला को भुला मत देना।

0: खत राजमोहन के हाथ से छूटकर गिर पड़ता है। वो फौरन नैनीताल चलने के लिए तैयार हो जाता है। घर से निकला ही था कि प्रोफेसर बोस से मुलाकात हो गई।
1: कहाँ जा रहे हो राजमोहन?
2: जी नैनीताल।
1: ये तार पढ़ो, वहीं से आया है।
2: तार? तार कहाँ से आया है? क्या खबर है?
1: लो, तुम खुद ही देख लो।
0: प्रोफेसर साहब ने वो तार राजमोहन को दे दिया। उसका कलेजा धक से हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तार कैसे पढ़ता, फिर हिम्मत जुटाकर पढ़ता है। लीला की मृत्यु हो गई थी।
2: हाय लीला, तू इतनी जल्दी मुझसे जुदा हो गई। मुझे रोता तड़पता इस गम में छोड़कर लीला लीला

आखिर एक दिन दोस्तों की सलाह पर शहर छोड़कर चल पड़ा। 2 महीने तक विंध्याचल, पारसनाथ और कई पहाड़ियों में आवारा फिरता रहा। अब वो आबू में था। उस वक्त उसके नाम प्रिंसिपल का तार पहुंचा। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर उसे चुना गया था। दोबारा उस शहर में जाने का दिल नहीं था, मगर प्रिंसिपल के खत ने उसे मजबूर कर दिया था। लाचार लौटा और अपने काम में लग गया। तन्हा, उदास, रंजोगम से भरी जिंदगी जीता हुआ। एक रोज शाम के वक्त जब वो अपने कमरे में लेटा हुआ था, अचानक सामने वाले मकान से गाने की आवाज आई।

0: राजमोहन से जब्त न हो सका। एक उन्माद की सी हालत में उठा और उसने सामने वाले मकान का दरवाजा खटखटाया। भीतर पहुंचने पर देखा कमरे में एक सफेद फर्श बिछा हुआ था। गांव तक ये भी रखे हुए थे। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें लटक रही थीं। एक 16-17 साल का सुंदर सा नौजवान जिसकी मसें अभी भीग रही थीं, मसनत पर बैठा हारमोनियम के सुर छेड़ रहा है। उसने ऐसा सुंदर नौजवान पहले कभी नहीं देखा था। चाल ढाल से सिख मालूम होता था। मुझे देखते ही चौंक पड़ा और हारमोनियम छोड़कर खड़ा हो गया। शर्मा रहा था, कुछ घबराया हुआ भी लग रहा था।
1: माफ कीजिएगा, आपको बड़ी तकलीफ दी। आप इस फन के उस्ताद मालूम होते हैं, खासकर जो अभी आप गा रहे थे, मुझे पसंद है। आप यहाँ कब से हैं?
2: जी, करीब 3 महीने से।
1: अच्छा, आपका शुभ नाम?
2: मुझे महर, महर सिंह कहते हैं जी मुझे।
1: महर सिंह? हाँ,
2: पंजाब का हूँ जी, यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ।
1: अच्छा भैया, आप गाते वाकई खूब हैं। छेड़िए, फिर वही गीत छेड़िए।
2: जी, वैसे तो मैं अभी अनाड़ी हूँ जी।
1: नहीं, कैसी बात कर रहे हैं।
2: फिर भी आप कहते हैं तो गाता हूँ।
1: ठीक है,

0: वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। कैसी सुरीली तान, कैसी मीठी आवाज, कैसा बेचैन कर देने वाला भाव। ये गीत मुझ पर सपने जैसा असर करता है। गाते गाते इसकी आंखों में भी आंसू भर आए। एक बहुत मीठा, नाजुक, दर्दनाक असर मेरे दिल पर हो रहा है। लीला, प्यारी लीला जैसे दूर बैठी हुई हसद भरी आंखों से ताक रही है। अच्छा मैसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ।
1: जी कभी कभी तशरीफ लाया कीजिएगा।
0: जरूर, क्यों नहीं।
1: जी
2: राजमोहन को बातचीत से मालूम हुआ कि मेहर सिंह पंजाब का रहने वाला है और यहाँ पढ़ने आया है। शायद उसे डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि पंजाब की आबो हवा उसके लिए ठीक नहीं है। धीरे धीरे उसकी हालत ये हो गई कि जब तक मेहर सिंह के यहाँ जाकर दो चार गाने ना सुन लेता, उसके जी को चैन नहीं आता था। शाम होते ही वो उसके घर पहुंच जाता था, कुछ देर मंत्रमुग्ध हो गाने सुनता, फिर उसे पढ़ाता था। ऐसे जहीन और समझदार लड़के को पढ़ाने में उसे खास मजा आता था। राजमोहन को मालूम होता था कि उसकी एक एक बात मेहर सिंह के दिल पर नक्श हो रही है। जब तक वो पढ़ाता, मेहर सिंह जी जान से कान लगाए बैठा रहता। जब उसे देखता, पढ़ने लिखने में ही डूबा हुआ पाता। साल भर में ही उसने अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली, मामूली चिट्ठियां लिखने लगा और दूसरा साल गुजरते गुजरते वो अपने स्कूल के दूसरे छात्रों से बाजी मार ले गया। सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वो जितना पढ़ने में तेज था, उतना ही व्यवहार में नेक और सीधा था। लेकिन सिख होने के बावजूद उसकी खेलकूद में रुचि नहीं थी। राजमोहन उससे इतना हिल मिल गया था कि बजाय शिष्य के उसको अपना दोस्त समझने लगा था। उम्र के लिहाज से उसकी समझ आश्चर्यजनक थी। देखने में 16-17 साल से ज्यादा मालूम नहीं होता था, मगर जब कभी रवानी में राजमोहन दुर्बोध कवि कल्पनाओं और कोमल भावों की उसके सामने व्याख्या करता, तो उसकी भंगिमा से राजमोहन को लगता वो एक एक बारीकी को समझ रहा है। एक दिन राजमोहन ने उससे पूछा,
0: अच्छा दोस्त एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई?
1: अभी नहीं।
0: वैसे तुम्हें कैसी औरत पसंद है?
1: मैं शादी नहीं करूंगा जी।
0: अरे क्यों?
1: मुझ सरीके जाहिल गुआर के साथ भला कोई औरत शादी करना पसंद करेगी क्या?
0: नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है।

0: बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जो तुमसे ज्यादा लायक हों या तुमसे ज्यादा समझ रखते हों।
1: जी आप तो दिल लगी करते हैं।
0: दिल लगी नहीं भाई, सच कहता हूँ। मुझे खुद ताज्जुब होता है कि इतने दिनों में तुमने इतनी काबिलियत कैसे हासिल कर ली। अभी तुम्हें अंग्रेजी शुरू किए 3 बरस से ज्यादा नहीं हुए हैं।
1: क्या मैं किसी पढ़ी लिखी लेडी को खुश कर सकूंगा?
0: बेशक।
2: गर्मी का मौसम था, राजमोहन हवा खाने शिमला गया हुआ था, मेहर सिंह भी उसके साथ था। तभी अचानक,
1: अरे उफ, आपको तो बहुत तेज बुखार है जी, जिस्म तप रहा है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ।
0: डॉक्टर कहाँ ढूंढोगे मेहर? छोड़ो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो?
1: परेशानी की क्या बात है जी, मैं किसी से पूछ लूंगा, होगा आसपास में कोई डॉक्टर होगा, आप फिक्र ना करें जी, मैं अभी आया। आइए डॉक्टर साहब, इन्हें देखिए प्लीज।
3: इन्हें तो चेचक निकल आई है।
1: हे भगवान, डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएंगे?
3: ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन बहुत देखभाल की जरूरत है
1: जी। मैं हूं ना, करूंगा इनकी देखभाल।
3: आप इनके साथ नहीं रह सकते इस कमरे में, ये छूत की बीमारी है, ये आपको भी हो सकती है।
1: जो भी हो डॉक्टर साहब, लेकिन मैं इन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता।
3: देखिए, इन्हें दवाएं वक्त पर देनी होंगी
1: जी। आप फिक्र ना कीजिए डॉक्टर साहब, बस आप दवाएं लिख दीजिए।
0: हाँ
1: जी, कैसी तबीयत है आपकी, कुछ चाहिए?
0: चाहिए, टाइम क्या हो रहा है?
1: सुबह के 4 बजे हैं।
0: ओह, अरे तुम सोए नहीं? इस तरह रात रात जाकर मेरी सेवा कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, वो भी एक चेचक के मरीज की, जान जोखिम में डालकर।
1: जी कुछ नहीं, ये तो मेरा फर्ज है।
0: नहीं भाई, इतना तो कोई सगा भी नहीं कर सकता
1: जी। ये आप कैसे कह सकते हैं?
0: आखिर तुम मेरे कौन हो? इस तरह
1: आराम कीजिए, आपको डॉक्टर ने आराम बताया है। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं इनसे मेरा क्या नाता है? डॉक्टर साहब आ रहे हैं।
3: अब कैसा लग रहा है आपको
0: जी?
3: आप मेरे साथ आइए
1: जी। जी डॉक्टर साहब,
3: देखिए हमसे जो पन पड़ रहा है कर रहे हैं, आप हिम्मत रखिए। वैसे भी दिन रात एक कर दिया है आपने इनकी सेवा में, मैंने चेचक के मरीज की इतनी सेवा करते कभी किसी को नहीं देखा। आपका इनसे
1: रिश्ता है डॉक्टर साहब, रिश्ता है।
3: ठीक है ठीक है, देखिए आप ये दवाएं फौरन मंगवा लें।
1: जी बहुत अच्छा।
0: मेहर सिंह
1: जी,
0: एक बात मानोगे
1: क्या?
0: मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, कहीं चेचक ने तुम्हें भी जकड़ लिया तो।
1: कैसी बातें करते हैं आप?
0: वैसे भी अब बचूंगा नहीं।
1: भगवान के लिए ऐसा ना कहिए।
0: मैंने एक डॉक्टर की बात सुन ली है।
1: जाने क्या सुन लिया है आपने, डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे।
0: मेहर
1: जी,
0: तुम रोते हो?
1: मैं नहीं जी, मैं क्यों रोऊं?
0: नहीं नहीं, तुम्हारे सिसकने की आवाज आई,
1: वो तो कोई दूसरी बात थी जी, बस यूं ही जरा घर की याद आ गई थी।
0: सच बोलो, सच बोलो प्लीज।
1: तो आप खुद देख लीजिएगा, आप इस आईने में खुद देख लीजिएगा।
0: मैं ये मेरा चेहरा, हाय, इतना स्याह बदनुमा दागों से भरा। मेहर
1: संभालिए, संभालिए।
0: ये क्या हुआ मेहर?
1: संभालिए आप अपने आप को,
0: ये क्या हो गया?

0: बहरहाल मेहर सिंह अपनी सेवा के बल पर राजमोहन को मौत के मुंह से वापस खींच लाया। ठीक हो जाने के बाद उसने शिमले से वापस आने का इरादा किया।
1: आप कब तक वापस जाएंगे?
2: चार पांच दिनों में। क्यों?
1: सोचता हूँ मैं भी कुछ दिन के लिए घर आऊँ।
2: अरे हाँ जरूर।
1: अपना ख्याल रखिएगा आप। वैसे मैं बहुत जल्द ही लौट आऊंगा।
2: भाई मेहर सिंह
1: जी,
2: तुमने जो कुछ किया उसका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं।
1: ऐसी कोई बात नहीं है जी।
2: नहीं नहीं,
1: आपकी जगह अगर मैं बीमार हो जाता तो क्या आप मेरी सेवा नहीं करते? आप तो शायद इससे भी ज्यादा ख्याल रखते।
2: मेहर, मेरे प्यारे दोस्त।
1: अच्छा जी, अब इजाजत दीजिए, मैं चलूं।
2: ठीक है मेहर, अपना ध्यान रखना। हाँ
1: जी जी, बहुत
2: अपना ध्यान रखना।
3: इस टांगे वाले, रुको रुको, राज बाबू, राज बाबू।
2: हरी, आप
3: ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे पहचाना नहीं? मैं लीलावती।
2: हाँ, लेकिन आप तो
3: परलोक सिधार गई थी।
2: हो,
3: यही
2: हो।
3: ना हाजी, मैं तो अपने मामा के घर नैनीताल चली गई थी।
2: माय गॉड, तो वो चिट्ठी मुझे किसने लिखी थी?
3: मैंने।
2: और वो तार?
3: वो भी मैंने ही भेजा था।
2: मगर क्यों क्यों भाई? तुम अंदाजा नहीं कर सकती लीला, अंदाजा नहीं कर सकती। तुम्हारे दुख में, तुम्हारे शोक में मैंने कितनी पीड़ा सही है।
3: उसमें एक गुर था।
2: गुर? कैसा गुर?
3: कम ऑन, अब ये सारी बातें तो होती रहेगी।
2: नहीं मगर
3: नहीं, इस वक्त मैं तुम्हें अपनी एक फ्रेंड से मिलवाऊं।
2: अच्छा,
3: ये भी तुमसे मिलने की बहुत इच्छुक है।
2: मुझसे मिलने की? तो तांगे में क्यों बैठा रखा है? चलो
3: आओ भाई, लीजिए, ये है मिस्टर राजमोहन। हाय, हाउ डू यू डू सर?
2: आई एम फाइन। लीला, मुझे अफसोस है, पहले इन्हें कभी देखा नहीं।
3: अच्छा?
2: और अगर देखा भी हो तो पहचानूंगा कैसे? ये तो घूंघट किए हुए हैं ना।
3: अरे हाँ। तो लीजिए, ये प्रॉब्लम भी मैं दूर कर देती हूँ। ये हटाया घूंघट। अब तो पहचाना इन्हें, मिस्टर राजमोहन, ये आपकी धर्म पत्नी है, मिसेस कुमुदिनी।
2: अरे लगता है ये चेहरा कहीं देखा है मैंने। उसके नाक पर भी तो ऐसा ही तिल था और उंगली में भी वही अंगूठी। मिस लीला, मेरे अकेले कुछ काम नहीं कर रही है। यही हूबहू यही हुलिया तो मेरे दोस्त मेहर सिंह का है।
3: वाह वाह, तुम तो हमेशा निगाह के तेज बनते थे, इतना भी नहीं पहचान सके। अरे ये मेहर सिंह ही कुमुदिनी थी।
2: ओहो।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति पामला की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में सेवा सेतु कैंप लगाए जा रहे हैं। आज ग्वालियर के मेला मैदान और कल भोपाल के शाहपुरा में कैंप आयोजित होगा। भोपाल के लाल परेड मैदान में कल सीएम यूथ कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 20,000 से ज्यादा युवाओं से सीधा संवाद करेंगे, जहां युवाओं को करियर और रोजगार की नई संभावनाओं से रूबरू कराया जाएगा। उज्जैन में शाही मस्जिद के आसपास बंद प्रमुख रास्तों को कल आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बैरिकेडिंग हटने के बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों को राहत मिली है। हालांकि मस्जिद के ठीक आसपास सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात है। प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। इस बार मानसून 24 जून को प्रदेश में दाखिल हुआ था और 3 अक्टूबर को विदा हो गया। करीब 100 दिन सक्रिय रहे मानसून में प्रदेश में करीब 908 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 4% कम है। और शैफाली वर्मा ने एशियन गेम्स में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। 49 गेंदों में नाबाद 100 रन की तूफानी पारी ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का आज के स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं अर्चना सक्सेना और आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी स्वस्थ रहकर खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं और इसके लिए हम अपने खान पान, दिनचर्या और जीवन शैली का ध्यान रखते भी हैं। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अर्थ केवल बीमारियों से बचना ही नहीं है। स्वस्थ रहना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ज़रूरी बातें जानना जो ज़रूरत के समय हमारे या किसी दूसरे के काम आ सके। क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं श्रोताओं, जब डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही किसी व्यक्ति को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। श्रोताओं, मान लीजिए हमारे सामने कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाए और सामान्य रूप से सांस न ले पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति उसके लिए गंभीर हो सकती है। ऐसे समय में हमारी CPR की जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम पीड़ित व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो सकता है। श्रोताओं, CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छाती के बीच वाले हिस्से पर लगातार दबाव दिया जाता है ताकि शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बना रह सके, जब तक कि चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध न हो जाए। श्रोताओं, ऐसी स्थिति में हर पल महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए घबराने के बजाय स्थिति को पहचानना और उचित तरीके से मदद के लिए आगे आना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से CPR की बुनियादी जानकारी हम सभी के लिए उपयोगी है। हमें इसे केवल मेडिकल प्रक्रिया के रूप में नहीं बल्कि एक लाइफ स्किल्स जो होती है सेविंग स्किल के रूप में भी समझना चाहिए। और इसीलिए हम सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के साथ साथ ऐसी जानकारी भी हासिल करना चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पर किसी के काम आ सके।

0: श्रोताओं, आजकल मौसम बदल रहा है और मौसम में बदलाव का असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। आजकल वायरल फीवर एक आम समस्या है, लेकिन इसके बदलते लक्षणों को समझना और समय पर उचित उपचार लेना भी बेहद ज़रूरी है। चलिए तो आज इसी विषय पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अतुल गुप्ता से बातचीत की है मनीष गजबिये ने।
1: तो नमस्कार। मौसम में बदलाव के साथ इन दिनों बुखार, सर्दी, खांसी और बदन दर्द जैसी शिकायतें आम देखने को मिल रही है। कई बार सामान्य वायरल फीवर और डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड जैसे बुखार से शुरुआती लक्षण एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि बुखार होने पर किन लक्षणों को गंभीरता से ले, कब जांच की आवश्यकता होती है, घर पर किस तरह की देखभाल करें और किन गलतियों से बचें। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर अतुल गुप्ता जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, आपने भी ओपीडी में महसूस किया होगा कि इस समय वायरल फीवर बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो हम सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि वायरल फीवर होता क्या है और यह किस तरह फैलता है।
2: सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी पेशेंट को फीवर आता है
1: जी,
2: तो वो कुछ भी हो सकता है, वायरल हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड या डेंगू या कोई और फीवर भी हो सकता है, और फैलने के हर इन्फेक्शन के अपने अपने कारण होते हैं। वायरल फीवर यूजुअली हवा से फैलता है, कई बार दूसरे खाने के पदार्थों से भी आ सकता है, तो उसके लिए जरूरी यह है कि पेशेंट को विशेष ध्यान रखना चाहिए
1: जी। और अभी सर जो मौसम बदल रहा है उससे भी वायरल फीवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
2: बदलते मौसम में खान पान का बहुत योगदान रहता है। कई बार पेशेंट इस बदलते मौसम में कभी ठंडी है कभी गर्मी है, तो उस हिसाब से ठंडी चीजों का भी सेवन ज्यादा होता है, मार्केट में ज्यादा घूमना होता है, तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है
1: जी। अब जैसा हम बात करें डॉक्टर साहब, तो आजकल का जो वायरल फीवर है उसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, और फीवर के लक्षणों में समय के साथ कोई बदलाव या नया पैटर्न देखने को मिल रहा है।
2: पहले जो फीवर आता था वो उतना तेज नहीं आता था पहले दिन से, अनलेस कि कोई विशेष इन्फेक्शन ना हो। अभी आजकल जो पैटर्न अपन देख रहे हैं वो कोई भी फीवर हो, बहुत तेज फीवर के साथ पेशेंट को तकलीफ होती है, उसके साथ पूरे बदन में दर्द, सिर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, कई बार सिर दर्द इतना होता है कि जैसे पेशेंट का सिर फटा जा रहा हो, उसके अलावा पीठ और टांगों में दर्द भी इतना होता है कि असहनीय पीड़ा होती है, तो ये बहुत कष्टदायक है। ये एक नया पैटर्न आया है जो हालांकि पहले भी था पर अभी पेन वाला पार्ट को ज्यादा आया है
1: जी।
2: उसके साथ उल्टी की फीलिंग आना या उल्टी हो जाना, या किसी किसी पेशेंट्स में लूज मोशन भी देखने को मिले हैं, ये एक पैटर्न देखने को मिलता है
1: जी। और इससे बचा कैसे जा सकता है?
2: सबसे इम्पोर्टेंट कि अपन पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं या भीड़भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क अगर पहन लें तो बहुत अच्छा होगा
1: जी।
2: किसी के पास मास्क नहीं है, रूमाल है, तो अपने चेहरे पे मतलब नाक और मुंह अपना रूमाल से ढक सकते हैं।

0: हैं, महिलाओं के पास दुपट्टा होता है या कुछ और है, गांव वाले गमछे लेके चलते ही हैं, तो वो अपना गमछे से चेहरे को अपना छुपा सकते हैं। अगर बगल वाले लोगों को कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन से अपन बच पाए।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और बच्चे जो स्कूल जाते हैं, बच्चों को कैसे समझाइश दी जाए कि वह अपने आप को स्वयं इस फीवर से प्रोटेक्ट कर सके?
0: उसमें अगर बच्चे बस में जा रहे हैं या वैन में जा रहे हैं, तो किसी बच्चे को अगर खांसी है या बुखार है, पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके पेरेंट्स को भेजना ही नहीं चाहिए।
1: जी,
0: पर अगर एग्ज़ाम है, कई बार मजबूरी होती है पेरेंट्स की भी कि एग्ज़ाम छूट जाएगा इसलिए बच्चों को भेजना पड़ता है, तो ऐसे बच्चों को मास्क लगा के भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो पेशेंट है वो मास्क लगाएगा तो वो बीमारी स्प्रेड करने में काफ़ी हद तक अपन उसको रोक सकते हैं। अगर अपन ने मास्क लगाया, उस पेशेंट ने मास्क नहीं लगाया है, तो वो तो खांस रहा है, तो वैन में जितने बच्चे हैं या बस में इतने बच्चे हैं, अपना वायरस तो फैला रहा है उस हवा में, उस हवा से कई बच्चे पीड़ित हो सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है जो पेशेंट है, जो बच्चा है, जो पीड़ित है, उसके घर वाले उसको मास्क लगा के दें, जिससे कि वो दूसरों को बीमारी ना फैला सके।
1: जी, निश्चित तौर पर कहते हैं सावधानी ही बचाव है, और आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के बताए गए उपायों का अवश्य रूप से पालन करें। अब डॉक्टर साहब, जैसे सामान्य वायरल फीवर और डेंगू मलेरिया या टाइफाइड जैसे बुखार में शुरुआती स्तर पर क्या अंतर होता है?
0: शुरुआत में सबसे पहले तो जो फीवर आता है उसमें, अभी जो वायरल फीवर में अपन देख रहे हैं कि पूरी बॉडी दुखती है, अगर यही अगर मलेरिया टाइप का फीवर होगा तो नॉर्मली ऑल्टरनेट डे पैटर्न रहता है कि एक दिन पेशेंट नॉर्मल रहेगा, एक दिन फीवर आएगा, पर जिस दिन फीवर आएगा उस दिन उसको अच्छी तेज ठंड लगती है, पूरा बदन कपकपा जाता है आधा पौन घंटे के लिए, उस शिवरिंग के बाद फिर फीवर 103-104 तक चला जाता है
1: जी।
0: उस समय उसको सिर दर्द, कमर दर्द, टांगों में दर्द या पिंडलियों में दर्द हो सकता है
1: जी।
0: तो ये है मलेरिया का पैटर्न, हालांकि आजकल वो ट्रेंड भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। और डेंगू फीवर की बात करें तो कंटिन्यूस फीवर, हाई ग्रेड, उल्टी की फीलिंग के साथ और पूरा बदन दुखना, सिर दुखना, वो ऑलमोस्ट वायरल पैटर्न जैसा ही दिखता है। पर दोनों में अपने को डिफरेंस ये है कि वायरल फीवर में कोई रैशेस नहीं आएंगे अनलेस की स्पेसिफिक वायरस ना हो। डेंगू में नॉर्मली थर्ड या फोर्थ डे रैशेस मिलने लगते हैं, किसी किसी पेशेंट में अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो सेकेंड डे भी रैशेस आ जाते हैं
1: जी जी।
0: तो ये एक क्लू मिल जाता है कि ये डेंगू हो सकता है
1: जी। निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी जानकारी। और अब डॉक्टर साहब, क्या केवल लक्षणों के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि बुखार वायरल है या इसके लिए कोई जांच जरूरी होती है?
0: शुरुआती दौर में अपन बात करें, पहले 2-3 दिन तक अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। अगर वायरल फीवर फिजिशियन को लगता है तो उसमें एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, सिंपल पैरासीटामोल दे दें, बहुत ज़्यादा पेन है तो पेन केयर ऐड कर सकते हैं माइल्ड डोज में। अगर 2 दिन से ज़्यादा का फीवर हो रहा है तो उस सिचुएशन में पेशेंट का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, जो कि सबसे पहले CBC और मलेरिया टेस्ट हो जाना चाहिए पहले 3 दिन के अंदर अगर अपन टेस्ट कर रहे हैं तो। अगर पेशेंट को साथ में उल्टी की फीलिंग बहुत ज़्यादा या उल्टियाँ हो रही हैं तो लिवर एंजाइम जो होते हैं जैसे SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेस है, वो भी साथ में करवा लेना चाहिए, कई बार वो भी बढ़ने लगते हैं। तो ये मरीज के सिम्टम पर डिपेंड करता है कि अपने को क्या कराना है।
1: जी जी, हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो अपने डॉक्टर से अवश्य रूप से संपर्क करें। अब जैसे बुखार कितने दिन तक रहने पर व्यक्ति को डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी होता है?
0: नॉर्मली पेशेंट्स को 24 घंटे तो अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं पैरासीटामोल खा के। अगर ऐसा लग रहा है कि पैरासीटामोल 3 बार भी अपन खा रहे हैं, बड़े व्यक्ति की बात करें 650 mg व्यक्ति खा रहा है, फिर भी फीवर बहुत ज्यादा नहीं उतर रहा है, थोड़ा कम होकर रह रहा है, तो 24 घंटे के बाद तो उनको अपने जो भी उनके ट्रीटिंग फिजिशियन है या फैमिली फिजिशियन है उनसे संपर्क करके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। फिर जैसा आपके फिजिशियन गाइड करते हैं टेस्ट कब कराना है उस हिसाब से करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट कि वो खुद ही टेस्ट करा के आ जाते हैं पहले दिन के फीवर में ही, जो कि वो तरीका उनका गलत है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि कौन सी टेस्ट की आवश्यकता कब है। उन्होंने तो अपने हिसाब से मतलब करा लिया, फीवर है नहीं उतर रहा है करवा लो, पर ये तो फिजिशियन डिसाइड करेगा कि किस टाइप का पैटर्न हो सकता है तो कौन कौन से टेस्ट होना चाहिए। इसलिए पेशेंट कोशिश करे कि अपनी मर्जी से ना करें।
1: डॉक्टर साहब, वायरल फीवर में घर पर मरीज को किस तरह की देखभाल और आराम देना चाहिए?
0: सबसे पहले अगर पेशेंट को फीवर है तो पहला प्रयास ये होना चाहिए कि फीवर उतारने के लिए प्रयास किए जाएं, जिसमें कि तेज फीवर है तो पैरासिटामोल दे दिया अपन ने
1: जी।
0: उसके साथ साथ उसका हाइड्रेशन और डाइट बहुत जरूरी है। तेज फीवर में पेशेंट बहुत ज्यादा खा नहीं पाता है, उल्टी की फीलिंग रहती है, सिरदर्द बदन दर्द होता ही है, तो मेडिसिन तो अपनी जगह अपना काम करेंगी
1: जी।
0: पर साथ में डाइट की बात करें तो हल्का खाना लिक्विड सेमी सॉलिड अपन दें तो ज्यादा बेटर होगा, जैसे कि पतली दाल हो गई, दलिया है, खिचड़ी है, चाय से, दूध से, ब्रेड बिस्किट टोस्ट उसमें घोल के दिए जा सकते हैं, इडली मैश करके आप दे सकते हो। उसके अलावा उनको भरपेट खाने के लिए कभी भी इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पेशेंट हर 3 से 4 घंटे में खा ले वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके अलावा कई बार पेशेंट की ज़्यादा खाने की या पीने की इच्छा नहीं होती, तो पेशेंट के हाइड्रेशन को प्रॉपर करने के लिए आप हर 10 मिनट में मरीज को बोलो कि 2-2, 3-3 घूंट करके पानी पिए, इकट्ठा पानी ना पिए। कोई भी एडल्ट व्यक्ति है उसको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए अगर फीवर तेज आ रहा है तो, क्योंकि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट लगभग बढ़ती है, इसलिए उसका हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, वायरल फीवर में ठंडे पानी की पट्टी स्पंजिंग करना भी कुछ हद तक उपयोगी है?
0: बहुत उपयोगी है। अगर फीवर तेज है तो गोली का असर आता है लगभग 3-3.5 घंटे में गोली खाने के बाद
1: जी।
0: तो अगर फीवर तेज है तो उसके एक तरीका तो ये कि गोली को पीस के आप 1 कप दूध में, मीठे दूध में घोल के पिला दीजिए तो गोली का असर थोड़ा जल्दी आ जाएगा, पर पीस के भी देंगे फिर भी 1.5 से 2 घंटा असर आने में लगता है
1: जी।
0: तो उस बीच में अपन चाहते हैं कि पेशेंट बेचैन ना हो, तो एक गीला रूमाल आप माथे पर रख दें पेशेंट को और दोनों हाथ और दोनों पैर में ठंडे पानी की पट्टी करें। बस पानी का ध्यान रखें, पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ठंडा पानी लेंगे ज़्यादा बेटर है। अगर नॉर्मल ठंडा पानी उतना ठंडा नहीं है तो आधा या 1 गिलास पानी फ्रिज का ठंडा पानी उसमें मिला के कि हल्का सा ठंडा रहे उसको अपन करें। और जब भी अपन ठंडे पानी की पट्टी करते हैं जिस कमरे में पेशेंट लेटा हुआ है उसमें हल्का फैन चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज फैन नहीं चलाना चाहिए नहीं तो पेशेंट को ठंड लगने लगेगी
1: जी जी।
0: तो शिवरिंग अगर होगी तो फीवर और बढ़ेगा बजाय कम होने के। अपने को ठंडे पानी का बेनिफिट अगर चाहिए तो 2 से 3 की स्पीड पे पंखा रखिए, नॉर्मल ठंडे पानी से पट्टी करिए आधा पौन घंटे तक, मैक्सिमम 1 घंटे तक आप कर सकते हैं जब तक गोली का असर आना शुरू हो जाएगा और पेशेंट का फीवर डाउन हो जाएगा। इस बीच में पेशेंट को हर 10 मिनट में 1-1, 2-2 घूंट करके पानी जरूर पिलाते रहें जिससे कि उसके बदन में पानी की कमी ना हो। इसके साथ अपन एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 1 पैकेट ORS जो गवर्नमेंट का आता है गवर्नमेंट पैरामीटर पे, वो 1 लीटर पानी में अपन 1 पैकेट ORS का डाल दें और वो पानी थोड़ा थोड़ा करके अपन पिलाएं पेशेंट को, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो लॉस होते हैं फीवर के साथ वो इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होने से बच जाते हैं। पर ORS के साथ पानी अपन देंगे तो कई बार टेस्ट अच्छा नहीं होता, थोड़ा नमकीला लगता है और पेशेंट का मुंह वैसे ही कड़वा होता है तो पेशेंट कभी भी उसको पीता नहीं है, बहुत कष्ट देता पीने में। उसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हैं, अगर 1 लीटर पानी आपने लिया तो लगभग 10 से 12 चम्मच शक्कर मिला लीजिए, पानी उतना मीठा हो जाए कि पेशेंट पी ले
1: जी।
0: और ये पानी पेशेंट पिएगा तो उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक हो जाएगा उसका, दूसरा आपने क्योंकि शक्कर ऐड की है तो शक्कर से उसको कैलोरी भी मतलब मिलेगी तो उसका एनर्जी लेवल ठीक रहेगा तो पेशेंट को कमजोरी फील नहीं होगी।
1: अब डॉक्टर साहब, किन लक्षणों को हम खतरे का संकेत माने जिनमें तुरंत अस्पताल हमें जाना चाहिए?
0: अगर फीवर 3-4 दिन से ज्यादा हो गया है, कंटिन्यूस पैरासिटामोल और बाकी मेडिसिन देने के बावजूद भी फीवर नहीं उतर रहा है और पेशेंट का ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बना हुआ है, बॉडी में रैशेस आ गए हैं, रैशेस नहीं भी आए हैं पर असहनीय पीड़ा हो रही है, पेशेंट नहीं के बराबर खा रहा है या उल्टियां ज्यादा हो रही हैं या ऐसा लगता है कि पेशेंट बिल्कुल ही ढीला पड़ गया, उसका शरीर ढीला ही हो गया, उसको टॉयलेट के लिए जाने में भी किसी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है या किसी को पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर वित्तीय वीक हो गए तो उनको एडमिट करा देना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके तब डायग्नोसिस बना के पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या देना चाहेंगे जिससे वो बुखार आने पर क्या करे और क्या ना करे?
0: सबसे पहले अगर फीवर आया है तेज है तो पैरासिटामोल सबसे सेफ टेबलेट है, आप उसको ले सकते हैं, पानी 2-2 घूंट करके जैसा मैंने बताया वैसा पिए, बच्चा हो चाहे बड़ा हो कोई भी हो, और खाने में थोड़ा थोड़ा करके हल्का खाना खाया जाए, और अगर तेज फीवर है तो ठंडे पानी की पट्टी की जा सकती है, भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए अपने को, और जहां तक संभव हो प्रॉपर डाइट लें और बाजार का खाना भी है तो प्रॉपर हाइजीनिक जगह पे खाएं, इससे कि कोई इन्फेक्शन की संभावना ना रहे।
1: डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो दी गई जानकारी है काफी ज्यादा उपयोगी है, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी हमने डॉक्टर अतुल गुप्ता से वायरल फीवर, बदलते लक्षण, उपचार और बचाव विषय पर जानकारी ली। बातचीत की थी मनीष गजबीय ने। ये जानकारी निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी रहेगी। श्रोताओं, सेहत के प्रति जागरूक रहकर छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रखकर

पल। श्रोताओं, हमारी जिंदगी और हमारा स्वास्थ्य आज सिर्फ दवाइयों और उपचार तक ही सीमित नहीं है। विज्ञान और तकनीक लगातार ऐसे नए रास्ते तलाश रहे हैं जो आने वाले समय में चिकित्सकों को और बेहतर बना सकते हैं या चिकित्सा की सुविधाओं को बेहतरीन रूप से हमारे सामने ला सकते हैं। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही आधुनिक तकनीक ऑर्गन ऑन अ चिप की। श्रोताओं, दरअसल यह एक बहुत छोटी सी चिप होती है जिसमें हमारे शरीर के किसी अंग के काम करने के तरीके को छोटे स्तर पर तैयार किया जाता है। जैसे लंग्स या कहें कि फेफड़े किस तरह काम करते हैं या किसी दवा का शरीर की कोशिकाओं पर क्या असर होता है, इसे समझने के लिए वैज्ञानिक ऐसी चिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नई दवाओं और इलाज के तरीकों को विकसित करने में वैज्ञानिकों को मदद मिल सकती है। यानी यदि आसान शब्दों में कहें तो ऑर्गन ऑन अ चिप शरीर के अंगों को समझने और उन पर दवाओं के असर का अध्ययन करने का एक आधुनिक तरीका है। हालांकि श्रोताओं, ये तकनीक अभी शोध के दौर में है, लेकिन स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में इससे भविष्य में कई नई संभावनाएं जुड़ी हैं।

श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के बाद चलते चलते आपसे यही कहेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जैसे दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, समय पर और संतुलित भोजन करें और पूरी नींद लें। ये छोटी छोटी बातें हमारी सेहत पर बड़ा असर डालती हैं और श्रोताओं, आप निश्चित रूप से इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। इस वादे के साथ आज अर्चना सक्सेना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है आरती तिवारी द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आरती तिवारी द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में चारुलता रथ द्वारा गाए भजन।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे चारुलता रथ द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शैतान से सुमन श्रीधर की आवाज़ में।

मिकी मैकलरी का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल सुमन श्रीधर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म शैतान से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है एक थी डायन से सुनिधि चौहान और क्लिंटन सरोजो की आवाज़ में।

0: विशाल भारद्वाज का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, सुनिधि चौहान और क्लिंटन सरेजो की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म एक थी डायन से। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पामेलिन आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान स्विस राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर है। साथ ही भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ भी इस यात्रा के दौरान मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पदोन्नत शासकीय सेवकों द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री ने विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए।
1: हम देखते हैं कि आपकी निष्ठा और समर्पण से देश फूड बास्केट बना और मध्यप्रदेश और आगे बढ़ा। मध्यप्रदेश के बलबूते पर जब 14.25 लाख किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन जब हम गेहूं का संकलन करते हैं तो देश में नंबर 1 पे पहुंचते, तो बड़ी भूमिका आप सबकी हो, आप सबके माध्यम से। सच में ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके माध्यम से होने वाले काम को मैं महसूस कर सकता हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज खंडवा जिले के हरसूद में रानी दुर्गावती जन्मोत्सव और सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 52 गढ़ों के राजवंशों के वंशजों का सम्मान करेंगे तथा 142 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत के 18 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में तेंदुपत्ता, बोनस, काष्ट, लाभांश और विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ वितरित किए जाएंगे। इसके तहत 26,206 तेंदुपत्ता कार्ड को 13 करोड़ रुपए से अधिक तथा 32,846 कार्ड धारियों को करीब 4 करोड़ 55 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि रानी दुर्गावती ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए बाज बहादुर की सेना को परास्त किया और मुगलों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। उन्होंने उनका श्रेय और पराक्रम सदैव देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। सागर में अग्निवीर भर्ती रैली के 5वें दिन 851 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 540 ने 1.6 किलोमीटर की दौड़ सफलतापूर्वक पूरी कर अगले चरण के लिए क्वालिफाई किया। भर्ती रैली 1 से 14 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित की जा रही है। सफल अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। अभ्यर्थियों की वापसी के लिए 3 विशेष आर्मी भर्ती ट्रेनें भी संचालित की जा रही है। भर्ती कार्यालय ने अभ्यर्थियों से दलालों से सावधान रहने और केवल अधिकृत माध्यमों पर भरोसा करने की अपील की है। प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद मौसम ने करवट ली है। रात के तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ने लगी है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण गर्मी और उमस बनी हुई है। पिछले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल मौसम साफ रहेगा, जबकि 7 और 8 अक्टूबर को छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा समेत 14 जिलों में गरज चमक और आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। मानसूनी सीजन में प्रदेश में सामान्य से 4% कम 908.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में नलखेड़ा

0: स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित दो दिवसीय प्रांतीय संस्कृति महोत्सव का कल समापन हो गया। शिवपुरी जिले के पोहरी में आयोजित सेवा सेतु अभियान के तहत मेगा शिविर में अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। जबलपुर में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के तत्वावधान में पश्चिम मध्य रेलवे खेलकूद संघ द्वारा 38वीं अखिल भारतीय रेलवे शतरंज प्रतियोगिता आज से शुरू हुई। गुना जिले में समय सीमा बैठक में लीड बैंक मैनेजर अजय सिंहपाल के अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
2: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
2: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने

0: वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: इससे पहले राष्ट्रपति पामलान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामलान के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामलान को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
4: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
5: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
4: There are rooms to operate from, both sides would do it.
1: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
5: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव

0: अब आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
1: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
2: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
1: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
3: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
1: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे X@AIRNewsHindi और Instagram पर AIRNews Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI के नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की, कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर, जहाँ हम आपके भेजे गए पत्रों को पढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के मीठे मीठे गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्री 420 के एक गीत से, जिसे गाया है मन्ना डे और लता मंगेशकर ने। और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है देवदी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, गन्नू लाल रचक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की तरफ से। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया शोएब खान, साइमा खान, पुत्रा मुस्तबा खान, पुत्री आफिया खान, राहुल भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग कोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की ओर से। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेतिक बिरक और मीका बिरक की ओर से। तो लीजिए, आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत।

शंकर जयकिशन का संगीत शैलेंद्र के लिखे बोल, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म श्री 420 से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मधुमति से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बीबी प्रियांशी मनवर की ओर से शाहूनगर यवतमाल से। अगला पत्र हमें मिला है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर मोहत से, मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक परवेज, रोजमीन तैमूर भैया, रीना मुशरफ तड़वी, रोजोबाई तड़वी, सनी परू और उनके पूरे तड़वी परिवार की ओर से। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने भी गीत लिखकर इस पत्र लिखकर इस गीत की फरमाइश की है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं के लिए यह अगला गीत।

सलिल चौधरी का संगीत शैलेंद्र के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में मधुमती फिल्म से गीत सुना आपने। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और अगली फरमाइश हमें मिली है वार्ड नंबर 1 पोफाली ज़िला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता की ओर से, और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म शारदा से लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसके अलावा पत्र मिला है हमें ग्राम सनौतिया ज़िला गुना से मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक, राजकुमार और हिमांशु का, कवाई बारू राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव का। आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म शारदा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ में फिल्म एतबार से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो की ओर से। इसके अलावा आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा और साथ ही सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा की ओर से। आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

बप्पी लाहिरी का संगीत हसन कमल के लिखे बोल आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म एतबार से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत फिल्म बागी से आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत की आवाज़ में और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी की ओर से। इसके अलावा एक और पत्र मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ टीडी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल और बिट्टा बजाज की ओर से। लीजिए सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

आनंद मिलिंद का संगीत समीर के लिखे बोल, अभिजीत की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बागी से। और इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपने पत्रों को इसी तरह हमें भेजते रहिए और हमारा पता नोट कीजिए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। पिन कोड है 462002। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान स्विस राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पदोन्नत शासकीय सेवकों द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री ने विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। सागर में अग्निवीर भर्ती रैली के 5वें दिन 851 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 540 ने 1.6 किलोमीटर की दौड़ सफलतापूर्वक पूरी कर अगले चरण के लिए क्वालिफाई किया। भर्ती रैली 1 से 14 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि रानी दुर्गावती ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए बाज बहादुर की सेना को परास्त किया और मुगलों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। और उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में कल से 12 अक्टूबर तक 7 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों के साथ चित्रकला, श्लोक पाठ, रंगोली और तत्कालिक भाषण प्रतियोगिताएं तथा विभिन्न लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुने युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा आज शाम 6:00। 6:40 पर सुने कार्यक्रम आजकल और प्रादेशिक समाचार दर्शन प्रसारित होगा शाम 6:45 पर। कार्यक्रम ग्राम सभा सुन सकेंगे रात 7:21 पर। कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा प्रसारित होगा रात 8:00। पब्लिक स्पीक सुनवाया जाएगा रात 9:30 पर। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज रात 10:30 पर सुने नीना श्रीवास्तव का उपशास्त्रीय गायन राग देश मिश्र पीलू मिश्र पहाड़ी। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है आरती तिवारी द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आरती तिवारी द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं चारुलता रथ द्वारा गाए भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं चारुलता रथ द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, ये आकाशवाणी भोपाल है।

प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म चालबाज से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म चालबाज से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म मिस्टर इंडिया से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल हवा हवा कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मिस्टर इंडिया से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म तेजाब से।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तेजाब से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म राजा से।

0: नदीम शर्मन का संगीत समीर के लिखे बोल, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म राजा से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवाकर जीएसटी सुधार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, राजस्व बढ़ाने और देशभर के उद्यमों के लिए अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पदोन्नत शासकीय सेवकों द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री ने विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी है। अभी तक 3,05,082 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता KJP-21 ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जिसमें 41 भारतीय धरती पर जन्मे चीते शामिल हैं। और एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को 85 पदक दिलाए और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम आईना।

बरूनी 973 जन्म और 1048 में इंतकाल हुआ था, पहला मुअर्रिख है जिसने इस मुल्क के समाजी, मजहबी, नफसियाती और अखलाकी हालात कलमबंद किए। अपनी मशहूर तसनीफ किताबुल हिंद में वो लिखता है कि हिंदू मुस्लिम के मामले में मुसलमानों से मुकम्मल इख्तलाफ रखते

0: का ख्याल है कि इस्लाम ने बतदरीज हिंदुस्तानी समाज पर अपने असरात डालने का काम किया। उनके मुताबिक जो मुसलमान हिंदुस्तान आए उन्होंने उसको अपना वतन बना लिया। उसके चारों तरफ हिंदू थे, इसलिए उनको इन लोगों से दायमी अदावत रखना मुमकिन ही नहीं था। चुनांचे बाहमी ताल्लुकात ने एक दूसरे को समझने में मदद की और बतौर हमसाया ज़िंदगी गुजारने लगे और दोनों तहजीबें आपस में ऐसी जम हुई कि इसको न खालिस हिंदू तहजीब कह सकते हैं न इस्लामी, और यही मुश्तरक तहजीब है। इस मेल मिलाप में सूफिया कराम ने जहाँ अहम किरदार निभाया वहीं भक्ति तहरीक ने जिला बख्शी और हिंदू मुस्लिम के दरमियान हम आहंगी का माहौल पैदा हुआ। हिंदुस्तान को त्योहारों का मुल्क भी कहा जाता है, यानी कि अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। एक ख़त्म होता है तो दूसरा आने वाला होता है। ये सारे त्यौहार मुल्क की वरासत को जाहिर करते हैं। धीरे धीरे गंगा जमुनी तहजीब ने रंग जमाना शुरू कर दिया और एक वक्त ये था कि ज़ाहिरी कोई तफरीक किसी को महसूस नहीं होती थी और इंसानियत सबके दिलों में जागुजी थी। मगर ये गंगा जमुनी तहजीब है क्या भला? ये एक इस्तलाह है जो शुमाली हिंदुस्तान और बिलखसूस गंगा और जमुना नदियों के दुआबा इलाके की तहजीब और सकाफत के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तहजीब की अहम तरीन अलामत फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और हिंदू मुस्लिम अनासर की यकजहती है। अवध इस तहजीब का मरकज़ समझा जाता है, मगर इसकी वसअत उत्तर प्रदेश में ही नहीं जनूबी हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल तक यानी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। अवध के नवाबों को गंगा जमुनी तहजीब का मेमार माना जाता है। बहरहाल अब तक बात मुश्तरका तहजीब त्योहारों के हवाले से पेश कर रहा था, आइए अब इसे कुछ दशहरा और दिवाली के पस मंजर में भी देखते हैं। दिवाली हिंदू अकीदे के मुताबिक उस दिन श्री राम चंद्र जी 14 बरस का वनवास और लंका फतह करने के बाद अपनी अहलिया सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में उन्हें खुश आमदीद करने के लिए अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर पूरे शहर को रोशन किया था। इस याद में हर साल ये त्यौहार मनाया जाता है। इस मौके पर दौलत की देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। आजकल मुबारकबाद देना बहुत आसान हो गया है। लोग फेसबुक और दिगर सोशल साइट पर एक दूसरे को उनके त्यौहारों पर मुबारकबाद देते रहते हैं और हमआहंगी का एहसास होता रहता है और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होने का ये सबूत देते रहते हैं। दिवाली पर याद है जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे अहबाब के हलके में कई हिंदू दोस्त भी थे। उनमें एक बहुत मालदार दोस्त अशोक शर्मा था। उसकी तालों की फैक्ट्री थी। नाम से बड़े त्यौहार में मुझे भी शामिल किया जाता था। दिवाली पर उसकी माँ अपने बेटे बेटों की तरह मेरे लिए भी नया लिबास लाती थी। सबको एक खास रकम भी बतौर त्यौहारी मिलती थी। मुहूर्त के वक्त सब पूजा पाठ करते थे और मेरे लिए ड्राइंग रूम में बैठने का इंतजाम कर दिया जाता था। जब वो लोग पूजा पाठ से फारिग होते थे तो पटाखों को छोड़ने का दिलचस्प मरहला आता था। उसके बाद बेहतरीन खाना खाया जाता था और फिर ताश की बाजी जमती थी। इसमें त्योहारी में मिले पैसे इस्तेमाल किए जाते थे। ये कोई जुआ नहीं था बल्कि घर के तमाम लोग शामिल होते थे, बड़े बूढ़े मर्द औरतें सब। ये सिर्फ तफरीह का जरिया था और मिल बैठकर एक साथ इंजॉय करने का एक मौका था। जब ये ताश का खेल खत्म होता था तो सबके अपने अपने पैसे वापस मिल जाते थे या कर दिए जाते थे। इस माहौल की याद आज भी मुझे जब भी दिवाली आती है आ जाती है। होली में जब मैं देवरी में अपनी नौकरी में की वजह से पोस्टेड था तो बहुत से दोस्त मिलजुल कर पिकनिक पर चले जाते थे और एक दोस्त था सुरेंद्र सिंह रघुवंशी, वो अपने घर जो गांव में था पर होली खेलने का इंतजाम रखते थे। क्या तफरी होती थी, क्या कहने, काश वो जमाने फिर वापस आ जाएं। उर्दू अदब में वैसे राम कहानी, रावण, सीता, बनवास के वाक़यात को बतौर तलमीहात खूब इस्तेमाल किया गया है। हर बड़े शायर ने कोई ना कोई तलमीह इस्तेमाल की है। हर अफसाने निगार ने इन वाक़यात के पस मंज़र में कुछ ना कुछ लिखा ज़रूर है। दशहरा भी हिंदुओं का अहम त्यौहार है। अकीदे के मुताबिक राम जी ने उस दिन रावण का कत्ल या वध किया था। बातिल पर हक की फतह हुई थी। इसकी पूरी कहानी का रामायण में बड़ी खूबसूरती से जिक्र मिलता है। दशहरा के दिन लोग नए काम शुरू करते हैं। बड़े सफर पर कहीं जाना हो तो रवाना होते हैं। मेले लगते हैं, रामलीला का इनाकाद होता है, रावण का बड़ा पुतला बनाकर जलाया जाता है। उर्दू के बहुत अहम तरीन शायर नौबत राय नजर की नज्म का दो बंद देखिए कि है दशहरा यादगारे अजमत हिंदोस्तां, हिंदुओं की कदीमी फतह नुसरत का निशान। ये दशहरा अशरे इशरत है अपने वास्ते, खालिके कौनैन की रहमत है अपने वास्ते। आइए फिर खुशियाँ बांटें, आइए फिर इस दौर को जिंदा करें जब होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस किसी एक कौम के त्यौहार नहीं होते थे बल्कि सब के होते थे और सब इसमें शामिल होकर खुशियाँ मनाते थे। मगर मिल के होती थी कभी ईद भी दिवाली भी। अब ये हालत है कि डर डर के गले मिलते हैं। इस हालत से हमें बाहर निकलना है। और एक मेरा शेर है इस जिम्न में कि विजयदशमी अगर ऐसी मना लेते तो अच्छा था, हम अपने दिल का रावण भी जला लेते तो अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया
1: दोस्तों। अभी आप डॉक्टर मोहम्मद आजम से हिंदुस्तान में त्योहारों की

0: दोस्तों, अभी आप गुलुकार हरिहरन की आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था अहमद फराज का। सामीन, शहर भोपाल शुरू से ही उर्दू इल्म अदब का गहवारा रहा है। यहाँ के हुक्मरानों ने इल्म अदब, शेर व सुखन और कुतुब खानों की दिल खोल कर सरपरस्ती की और साथ ही साथ उर्दू जबान से ताल्लुक रखने वाले उदबा और शौरा को भोपाल आने की दावत दी, जिनमें कई शौरा और उदबा भोपाल तशरीफ लाए और इस सरजमीन को उर्दू इल्म अदब का मरकज बनाने में एक अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में शहर भोपाल में आज भी शेर व शायरी की महफिलें आबाद होती हैं, जिनमें भोपाल और उसके कुर्बो जवार के शौरा अपने कलाम से इस गुलशन को सैराब करते हैं। दोस्तों, इसी शेर व शायरी के बाग से एक नई नस्ल की शायरा है अंबर आबिद। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उनका कलाम, समात फरमाइए।
1: मेरे सर पर रहे आंचल तेरी बिंदी सलामत हो, इधर उर्दू फले फूले उधर हिंदी सलामत हो, और हम पे जन्नत से निकलवाने का इल्ज़ाम सही, हम पे जन्नत से निकलवाने का इल्ज़ाम सही, घर को गहवारे जन्नत भी बनाया हमने। एक किताब पेश खिदमत है कि यहाँ उर्दू हवाओं में घुली हिंदी फिजाओं में अदब के चश्मे बहते हैं, इसे भोपाल कहते हैं। विरासत ये हमारी है हमें जांसे भी प्यारी है, विरासत ये हमारी है हमें जांसे भी प्यारी है, यहीं पर हम भी रहते हैं इसे भोपाल कहते हैं, यहीं पर हम भी रहते हैं इसे भोपाल कहते हैं। और एक किता ये भी कि हर घड़ी सुबह शाम रहते हो किससे महवे कलाम रहते हो, जब भी देखो हो ऑनलाइन तुम खास होकर भी आम रहते हो। और ये भी देखिए कि आशिकी को निसाब कर डाला सब बराबर हिसाब कर डाला, आशिकी को निसाब कर डाला सब बराबर हिसाब कर डाला, तुमको शौक़े मुताला था ना हमने चेहरा किताब कर डाला। जहाँ नदियों का संगम एक पैगाम मोहब्बत है, पहाड़ों की बुलंदी भी वक़ारो शानो शौकत है, मुझे है नाज मैं हूँ एक ऐसे शहर की बेटी जहाँ इंसानियत कायम है ज़िंदा है सलामत है। एक गज़ल पेश कर रही हूँ। वो भी पेश व पस में था और मैं भी घबराई हुई, बात से जब बात निकली तब शनासाई हुई, कैसा नगमा जब शकिस्ता हो नफस का तार तार, क्या तबस्सुम जब कली दिल की हो मुरझाई हुई, मुंतखब तो कर लिया हमने हजारों में तुम्हें, क्या खबर नादानी है ये या के दानाई हुई, क्या खबर नादानी

0: वो भी अब हमको हैं तहजीब सिखाने निकले, जिनका तहजीब की ते से भी नहीं है रिश्ता, वो भी अब हमको हैं तहजीब सिखाने निकले, वो भी अब हमको हैं तहजीब सिखाने निकले, और जिसकी हर शाख को बेदर्दी से काटा तुमने, जिसकी हर शाख को बेदर्दी से काटा तुमने, हम उसी उर्दू को हैं आज बचाने निकले, हम उसी उर्दू को हैं आज बचाने निकले, और वो भी रुसवाई के कांटों से भरी है अंबर, वो भी रुसवाई के कांटों से भरी है अंबर, हम थे जिस राह पे इज्जत को कमाने निकले, हम थे जिस राह पे इज्जत को कमाने निकले।
1: दोस्तों, अभी आप शायरा अंबर आबिद से उनका कलाम समाअत फरमा रहे थे। सामीन, प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी इत्तला। संकल्प से सेवा यात्रा या सेवा संकल्प मुहिम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चलाई जा रही एक मखसूस मुहिम है। इस स्कीम का बुनियादी मकसद गरीब और माशी तौर पर कमजोर खानदानों को बीमार पड़ने पर महंगे इलाज और अखराजात से बचाना और उन्हें सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना है। इस स्कीम के तहत अहले खानदानों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुल्क के तमाम सरकारी और पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में दस्तयाब है। इस स्कीम के तहत कैंसर, दिल के अमराज, गुर्दे का इलाज, ऑपरेशन और दीगर 1900 से ज्यादा तिब्बी तरीक़ाकार शामिल हैं। अब 70 साल या उससे भी ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को भी इस स्कीम में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इस स्कीम से जोड़ा गया है। इस स्कीम का फायदा हासिल करने के लिए आप करीबी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा करके या हुकूमत के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए अपनी अहलियत चेक करके अपना आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं। सामीन, इस इत्तला के साथ ही हमारा ये प्रोग्राम आईना यहीं खत्म होता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के जरिए हमें जरूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम आईना मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम आईना, ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की चौथी कड़ी।

0: कॉलेज में रिजल्ट आने पर छात्र शोरगुल कर रहे हैं।
1: अरे भाई वो आज रिजल्ट आने वाला है भाई। चलो यार चलिए देखते हैं यार क्या क्या होता है क्या नहीं होता।
2: अरे यार मेरा देखना मेरा रोल नंबर।
1: आपका रोल नंबर जो है ये ये ये रहा।
3: राजमोहन को तो टॉपिंग कर दो भाई। छोड़ो यार राजमोहन का देखो यार राजमोहन का देखो।
2: अरे राजमोहन का रोल नंबर
3: अरे ये रहा। हां हां फर्स्ट नंबर पे
4: क्या टॉप किया यार।
3: फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है राजमोहन अपना। चलो भाई इस साल तो जैसे तैसे अपनी नैया पार हो गई। नाम के पीछे एमए की डिग्री तो लग गई।
1: हाँ भले ही थर्ड डिवीजन हो पर क्या फर्क पड़ता है।
3: तो यहाँ किसे कलेक्टर बनने का शौक है। पास हुए और इज्जत बची काफी है।

0: क्या मतलब?
1: तुम्हें नहीं मालूम, इनकी शादी जिन देवी जी से तय हुई है वो बीए पास है।
2: अरे भाई जानते हो यूनिवर्सिटी में टॉप किसने किया है?
3: किसने?
2: अपने राजमोहन ने।
3: अरे राजमोहन,
2: राजमोहन फर्स्ट क्लास फर्स्ट।
3: तो पूरा विश्वास था भाई कि राजमोहन ही टॉप करेगा।
4: तो चलो यार उन्हें पकड़ते हैं, दावत लिए बिना नहीं छोड़ेंगे।
2: हाँ दावत लिए बिना नहीं चलेंगे। चलो आज की शाम राजमोहन के नाम।
5: सब मित्रों ने राजमोहन से दावत ली। रात के 12 बज गए। बिस्तर पर लेटे लेटे वो सोच रहा था।
6: मैंने सोचा भी न था यूं अचानक दोस्तों के बीच धर लिया जाऊंगा। यूं खुश तो मैं भी हूं, बेहद खुश। जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू की एमए हो जाऊं पूरी हो गई है, वो भी इस कदर शानदार ढंग से। सभी कुछ तो है मेरे पास, नौजवान हूं, रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं है, मगर अफसोस इस बात का है कि मेरी शादी एक ऊंचे घर में कर दी गई है, कुमोदिनी। हाँ यही नाम है उसका। हालांकि मैंने उसकी सूरत भी नहीं देखी है, मगर मुझे पूरा यकीन है उसकी संगत में मुझे वो आनंद नहीं मिल सकता जो मिस लीलावती की संगत में संभव है। मिस लीलावती जितनी सुंदर और जहीन है उतना ही सुंदर गला है उनका। मेरे साथ बीए किया है, पोएट्री से उसे खास लगाव है। कहां मिस लीला और कहां कुमुदिनी। शादी हुए 2 साल हो चुके हैं मगर उसने मुझे एक भी खत नहीं लिखा है। मैंने 2-3 बार खत लिखे भी मगर किसी का जवाब न मिला। इससे मुझे शक हो गया है कि उसकी तालीम भी बस यूं ही सी है। क्या मैं इस लड़की के साथ जिंदगी बसर करने पर मजबूर होऊंगा? नामुमकिन। मैं उसे छोड़ दूंगा, मिस लीला को अपनाऊंगा, चाहे जो भी हो। मिस लीला वेल बिहेव्ड हैं, ग्रेजुएट हैं, कितने तपाक से पेश आती हैं।
5: बीते रोज की घटना आज भी राजमोहन के जहन में ताजा है।

0: वाह वाह,
1: कितना सुंदर गाती हैं आप। जी चाहता है सुनते रहें, सुनते रहें। ओह कैसा दर्द, कैसी तड़प।
0: हाँ शायद इसीलिए मुझे भी बहुत पसंद है ये गीत। विरह की वेदना, अजीब सी छटपटाहट।
1: दर्दीले गीतों में कुछ अजीब कशिश होती है ना, जाने क्यों। शैली ने कहा है ना,
0: क्या
1: अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट।
0: हिंदी में भी एक कविता है।
1: अच्छा
0: सुनिए।
1: हाँ।
0: विरही होगा पहला कवि, विरही होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।
1: वाह, विरही होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है।
0: पोएम नहीं राजमोहन जी, कविता, कविता। आप तो पूरे अंग्रेज है।
1: लीला जी ऐसी बात नहीं, मैं अंग्रेज नहीं हूँ, मैं पूरा भारतीय हूँ, लेकिन अंग्रेजी मेरा प्रिय विषय है लीला जी।
0: तो अंग्रेजी में तो आप टॉप करेंगे।
1: क्या कुमुदनी की वजह से ही मैं मिस लीला से हाथ धोलूंगा, नामुमकिन। मैं इन्हें जरूर अपनाऊंगा, जरूर अपनाऊंगा।
2: इन्हीं ख्यालों के असर में राजमोहन ने अपनी डायरी लिखी और उसे मेज पर खुली छोड़कर बिस्तर पर लेट गया। सोचते सोचते जाने कब आंख लग गई। सपने में भी मिस लीला के स्वर गूंज रहे थे।
0: विरही होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पिया मिलने कठिन बावरी।
2: इन्हीं हसीन लम्हों की याद में खोया हुआ राजमोहन बेखबर सोता रहा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो देखा सामने कुर्सी पर बैठे हुए बाबू निरंजन दास उसकी डायरी पढ़ रहे थे। वे राजमोहन की पत्नी कुमुदिनी के सगे भाई हैं, बड़े हसमुख और सुंदर स्वभाव के नौजवान। कुछ ही दिनों पहले यहाँ तबादला होकर आए थे। राजमोहन की उनसे गाढ़ी दोस्ती हो गई। राजमोहन ने उनसे पूछा,
1: अरे निरंजन बाबू तुम, अरे क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ ली?
3: हाँ पढ़ तो ली,
1: मगर कुमुदनी से कुछ मत कहिएगा प्लीज।
3: बहुत अच्छा, नहीं कहूँगा।
1: इस वक्त किसी सोच में हो?
3: हाँ घर से खत आया है, पिताजी बीमार हैं।
1: ओह,
3: दो तीन दिन में जाने वाला हूँ।
2: बाबू निरंजन दास ये कहकर चले गए।
4: कौन है?
5: मैं हूँ राजमोहन।
2: नौकर राजमोहन की आवाज पहचान कर दरवाजा खोल देता है।
4: राम राम बाबू साहब।
1: राम राम। घर में कोई है?
4: कोई नहीं है घर में।
1: प्रोफेसर साहब?
4: वो तो कॉलेज गए हैं।
1: अच्छा, और लीलावती जी?
4: बीबी जी?
1: हाँ?
4: बीबी जी उनकी तो तबीयत दो तीन दिन से खराब थी।
1: अरे
4: सो वो हवा पानी बदलने नैनीताल गई हैं।
1: नैनीताल? अच्छा अच्छा, चलता हूँ।
4: अच्छा अच्छा, राम राम बाबू साहेब।
5: राम राम भाई।
1: लीला नैनीताल चली गई, खबर भी नहीं की मुझे। क्या नाराज थी मुझसे? आखिर इस तरह अचानक?
2: इसी तरह का विचार करता हुआ राजमोहन घर पहुंचता है।
6: बाबूजी, बाबूजी।
1: हाँ हाँ बोलो भाई।
6: प्रोफेसर साहिब के घर से एक चिट्ठी दे गया था कोई।
1: अच्छा, कब दे गया था वो?
6: इधर आप घर से निकले उधर से वो आया, आकर हमसे पूछा कि आप हैं घर में, मना करने पर ये चिट्ठी दे गया।
1: ठीक है ठीक है, लाओ मुझे दो ये चिट्ठी।
6: दीजिए।
1: ओह, ये तो लीला का खत है।
0: मैं बीमार हूँ, जीने की कोई उम्मीद नहीं, डॉक्टर कहते हैं प्लेग है, मगर जब तक तुम आओगे शायद मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा। आखिर वक्त तुमसे न मिलने का सख्त सदमा है, मेरी याद दिल में कायम रखना। मुझे सख्त अफसोस है कि तुमसे मिलकर नहीं आई, मेरा कसूर माफ करना और अपनी इस अभागिन लीला को भुला मत देना।

0: खत राजमोहन के हाथ से छूटकर गिर पड़ता है। वो फौरन नैनीताल चलने के लिए तैयार हो जाता है। घर से निकला ही था कि प्रोफेसर बोस से मुलाकात हो गई।
1: कहाँ जा रहे हो राजमोहन?
2: जी नैनीताल।
1: ये तार पढ़ो, वहीं से आया है।
2: तार? तार कहाँ से आया है? क्या खबर है?
1: लो, तुम खुद ही देख लो।
0: प्रोफेसर साहब ने वो तार राजमोहन को दे दिया। उसका कलेजा धक से हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तार कैसे पढ़ता, फिर हिम्मत जुटाकर पढ़ता है। लीला की मृत्यु हो गई थी।
2: हाय लीला, तू इतनी जल्दी मुझसे जुदा हो गई। मुझे रोता तड़पता इस काम में छोड़कर लीला लीला

आखिर एक दिन दोस्तों की सलाह पर शहर छोड़कर चल पड़ा। 2 महीने तक विंध्याचल, पारसनाथ और कई पहाड़ियों में आवारा फिरता रहा। अब वो आबू में था। उस वक्त उसके नाम प्रिंसिपल का तार पहुंचा। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर उसे चुना गया था। दोबारा उस शहर में जाने का दिल नहीं था, मगर प्रिंसिपल के खत ने उसे मजबूर कर दिया था। लाचार लौटा और अपने काम में लग गया। तन्हा, उदास, रंजोगम से भरी जिंदगी जीता हुआ। एक रोज शाम के वक्त जब वो अपने कमरे में लेटा हुआ था, अचानक सामने वाले मकान से गाने की आवाज आई।

0: राजमोहन से जब्त न हो सका। एक उन्माद की सी हालत में उठा और उसने सामने वाले मकान का दरवाजा खटखटाया। भीतर पहुंचने पर देखा कमरे में एक सफेद फर्श बिछा हुआ था। गांव तक ये भी रखे हुए थे। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें लटक रही थीं। एक 16-17 साल का सुंदर सा नौजवान जिसकी मसें अभी भीग रही थी, मसनत पर बैठा हारमोनियम के सुर छेड़ रहा है। उसने ऐसा सुंदर नौजवान पहले कभी नहीं देखा था। चाल ढाल से सिख मालूम होता था। मुझे देखते ही चौंक पड़ा और हारमोनियम छोड़कर खड़ा हो गया। शर्मा रहा था, कुछ घबराया हुआ भी लग रहा था।
1: माफ कीजिएगा, आपको बड़ी तकलीफ दी। आप इस फन के उस्ताद मालूम होते हैं, खासकर जो अभी आप गा रहे थे, मुझे पसंद है। आप यहाँ कब से हैं?
2: जी, करीब 3 महीने से।
1: अच्छा, आपका शुभ नाम?
2: मुझे महर, महर सिंह कहते हैं जी मुझे।
1: महर सिंह?
2: हाँ, पंजाब का हूँ जी, यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ।
1: अच्छा भैया, आप गाते वाकई खूब हैं। छेड़िए, फिर वही गीत छेड़िए।
2: जी, वैसे तो मैं अभी अनाड़ी हूँ जी।
1: नहीं, कैसी बात कर रहे हैं।
2: फिर भी आप कहते हैं तो गाता हूँ।
1: ठीक है,

0: वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। कैसी सुरीली तान, कैसी मीठी आवाज, कैसा बेचैन कर देने वाला भाव। ये गीत मुझ पर सपने जैसा असर करता है। गाते गाते इसकी आंखों में भी आंसू भर आए। एक बहुत मीठा, नाजुक, दर्दनाक असर मेरे दिल पर हो रहा है। लीला, प्यारी लीला जैसे दूर बैठी हुई हसद भरी आंखों से ताक रही है। अच्छा मैसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ।
1: जी कभी कभी तशरीफ लाया कीजिएगा।
0: जरूर, क्यों नहीं।
1: जी
2: राजमोहन को बातचीत से मालूम हुआ कि मेहर सिंह पंजाब का रहने वाला है और यहाँ पढ़ने आया है। शायद उसे डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि पंजाब की आबो हवा उसके लिए ठीक नहीं है। धीरे धीरे उसकी हालत ये हो गई कि जब तक मेहर सिंह के यहाँ जाकर दो चार गाने ना सुन लेता, उसके जी को चैन नहीं आता था। शाम होते ही वो उसके घर पहुँच जाता था, कुछ देर मंत्रमुग्ध हो गाने सुनता, फिर उसे पढ़ाता था। ऐसे जहीन और समझदार लड़के को पढ़ाने में उसे खास मजा आता था। राजमोहन को मालूम होता था कि उसकी एक एक बात मेहर सिंह के दिल पर नक्श हो रही है। जब तक वो पढ़ाता, मेहर सिंह जी जान से कान लगाए बैठा रहता। जब उसे देखता, पढ़ने लिखने में ही डूबा हुआ पाता। साल भर में ही उसने अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली, मामूली चिट्ठियां लिखने लगा और दूसरा साल गुजरते गुजरते वो अपने स्कूल के दूसरे छात्रों से बाजी मार ले गया। सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वो जितना पढ़ने में तेज था, उतना ही व्यवहार में नेक और सीधा था। लेकिन सिख होने के बावजूद उसकी खेलकूद में रुचि नहीं थी। राजमोहन उससे इतना हिल मिल गया था कि बजाय शिष्य के उसको अपना दोस्त समझने लगा था। उम्र के लिहाज से उसकी समझ आश्चर्यजनक थी। देखने में 16-17 साल से ज्यादा मालूम नहीं होता था, मगर जब कभी रवानी में राजमोहन दुर्बोध कवि कल्पनाओं और कोमल भावों की उसके सामने व्याख्या करता, तो उसकी भंगिमा से राजमोहन को लगता वो एक एक बारीकी को समझ रहा है। एक दिन राजमोहन ने उससे पूछा,
0: अच्छा दोस्त एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई?
1: जी जी अभी नहीं।
0: वैसे तुम्हें कैसी औरत पसंद है?
1: मैं शादी नहीं करूंगा जी।
0: अरे क्यों?
1: मुझ सरीके जाहिल गुआर के साथ भला कोई औरत शादी करना पसंद करेगी क्या?
0: नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जो तुमसे ज्यादा लायक हों या तुमसे ज्यादा समझ रखते हों।
1: जी आप तो दिल लगी करते हैं।
0: दिल लगी नहीं भाई, सच कहता हूँ। मुझे खुद ताज्जुब होता है कि इतने दिनों में तुमने इतनी काबिलियत कैसे हासिल कर ली। अभी तुम्हें अंग्रेजी शुरू किए 3 बरस से ज्यादा नहीं हुए हैं।
1: क्या मैं किसी पढ़ी लिखी लेडी को खुश कर सकूंगा?
0: बेशक।
2: गर्मी का मौसम था। राजमोहन हवा खाने शिमला गया हुआ था। मेहर सिंह भी उसके साथ था। तभी अचानक,
1: अरे उफ, आपको तो बहुत तेज बुखार है जी, जिसमें तप रहा है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ।
0: डॉक्टर कहाँ ढूंढोगे मेयर? छोड़ो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो?
1: परेशानी की क्या बात है जी, मैं किसी से पूछ लूंगा, होगा आसपास में कोई डॉक्टर होगा। आप फिक्र ना करें जी, मैं अभी आया। आइए डॉक्टर साहब, इन्हें देखिए प्लीज।
3: इन्हें तो चेचक निकल आई है।
1: हे भगवान, डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएंगे?
3: ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन बहुत देखभाल की जरूरत है
1: जी। मैं हूँ ना, करूँगा इनकी देखभाल।
3: आप इनके साथ नहीं रह सकते इस कमरे में, ये छूत की बीमारी है, ये आपको भी हो सकती है।
1: जो भी हो डॉक्टर साहब, लेकिन मैं इन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता।
3: देखिए, इन्हें दवाएं वक्त पर देनी होंगी।
1: जी आप फिक्र ना कीजिए डॉक्टर साहब, बस आप दवाएं लिख दीजिए।
0: हाँ।
1: हाँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? कुछ चाहिए?
0: चाहिए? टाइम क्या हो रहा है?
1: सुबह के 4 बजे हैं।
0: ओह, अरे तुम सोए नहीं? इस तरह रात रात जाग कर मेरी सेवा कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, वो भी एक चेचक के मरीज की, जान जोखिम में डालकर।
1: जी कुछ नहीं, ये तो मेरा फर्ज है।
0: नहीं भाई, इतना तो कोई सगा भी नहीं कर सकता।
1: जी, ये आप कैसे कह सकते हैं?
0: आखिर तुम मेरे कौन हो? इस तरह
1: आराम कीजिए, आपको डॉक्टर ने आराम बताया है। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं इनसे मेरा क्या नाता है? डॉक्टर साहब आ रहे हैं।
3: अब कैसा लग रहा है आपको?
0: जी।
3: आप मेरे साथ आइए।
1: जी जी डॉक्टर साहब,
3: देखिए हमसे जो पन पड़ रहा है कर रहे हैं, आप हिम्मत रखिए।

0: वैसे भी दिन रात एक कर दिया है आपने इनकी सेवा में। मैंने चेचक के मरीज की इतनी सेवा करते कभी किसी को नहीं देखा। आपका इनसे
1: रिश्ता है डॉक्टर साहब, रिश्ता है।
0: ठीक है ठीक है, देखिए आप ये दवाएं फौरन मंगवा लें।
1: जी बहुत अच्छा।
2: मेहर सिंह
1: जी,
2: एक बात मानोगे
1: क्या?
2: मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कहीं चेचक ने तुम्हें भी जकड़ लिया तो?
1: कैसी बातें करते हैं आप?
2: वैसे भी अब मैं बचूंगा नहीं।
1: भगवान के लिए ऐसा ना कहिए।
2: मैंने एक डॉक्टर की बात सुन ली है।
1: जाने क्या सुन लिया है आपने? डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे।
2: मेहर
1: जी,
2: तुम रोते हो?
1: मैं नहीं जी, मैं क्यों रोऊं?
2: नहीं, तुम्हारे सिसकने की आवाज आई।
1: वो तो कोई दूसरी बात थी जी, बस यूं ही जरा घर की याद आ गई थी।
2: सच बोलो प्लीज।
1: तो आप खुद देख लीजिएगा, आप इस आईने में खुद देख लीजिएगा।
2: मैं ये मेरा चेहरा, हाय, इतना स्याह मधुमा दागों से भरा। मेहर
1: संभालिए,
2: ये क्या हुआ? मेहर
1: संभालिए आप अपने आप को,
2: ये क्या हो गया?

0: बहरहाल मेहर सिंह अपनी सेवा के बल पर राजमोहन को मौत के मुंह से वापस खींच लाया। ठीक हो जाने के बाद उसने शिमले से वापस आने का इरादा किया।
1: आप कब तक वापस जाएंगे?
2: यही 4-5 दिनों में। क्यों?
1: सोचता हूँ मैं भी कुछ दिन के लिए घर आऊँ।
2: अरे जरूर।
1: अपना ख्याल रखिएगा आप। वैसे मैं बहुत जल्द ही लौट आऊंगा।
2: भाई मेहर सिंह, तुमने जो कुछ किया उसका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं।
1: ऐसी कोई बात नहीं है जी।
2: नहीं नहीं,
1: आपकी जगह अगर मैं बीमार हो जाता तो क्या आप मेरी सेवा नहीं करते? आप तो शायद इससे भी ज्यादा ख्याल रखते।
2: मेहर, मेरे प्यारे दोस्त।
1: अच्छा जी, अब इजाजत दीजिए, मैं चलूं।
2: ठीक है मेहर, अपना ध्यान रखना। हाँ
1: जी जी, बहुत
2: अपना ध्यान रखना।
3: इटांगे वाले, रुको रुको, राज बाबू।
2: हरी, आप
3: ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे पहचाना नहीं? मैं लीलावती।
2: हाँ, लेकिन आप तो
3: परलोक से धार गई थी। हो, यही हो। ना हाजी, मैं तो अपने मामा के घर नैनीताल चली गई थी।
2: माय गॉड, तो वो चिट्ठी मुझे किसने लिखी थी?
3: मैंने।
2: और वो तार?
3: वो भी मैंने ही भेजा था।
2: मगर क्यों क्यों भाई? तुम अंदाजा नहीं कर सकती लीला, अंदाजा नहीं कर सकती तुम्हारे दुख में, तुम्हारे शोक में मैंने कितनी पीड़ा सही है।
3: उसमें एक गुर था।
2: गुर? कैसा गुर?
3: कम ऑन, अब ये सारी बातें तो होती रहेगी।
2: नहीं मगर
3: नहीं, इस वक्त मैं तुम्हें अपनी एक फ्रेंड से मिलवाऊं।
2: अच्छा,
3: ये भी तुमसे मिलने की बहुत इच्छुक है।
2: मुझसे मिलने की? तो तांगे में क्यों बैठा रखा है? चलो
3: आओ भाई, लीजिए, ये है मिस्टर राजमोहन। हाय, हाउ डू यू डू सर?
2: आई एम फाइन। लीला, मुझे अफसोस है, पहले इन्हें कभी देखा नहीं।
3: अच्छा?
2: और अगर देखा भी हो तो पहचानूंगा कैसे? ये तो घूंघट किए हुए हैं ना।
3: अरे हाँ। तो ये प्रॉब्लम भी मैं दूर कर देती हूँ। ये होता है घूंघट। अब तो पहचाना इन्हें, मिस्टर राजमोहन, ये आपकी धर्म पत्नी है मिसेस कुमुदिनी।
2: अरे लगता है ये चेहरा कहीं देखा है मैंने। उसके नाक पर भी तो ऐसा ही तिल था और उंगली में भी वही अंगूठी। मिस लीला, मेरी अकल कुछ काम नहीं कर रही है।
3: नहीं।
2: यही हूबहू यही हुलिया तो मेरे दोस्त मेहर सिंह का है।
3: वाह वाह, तुम तो हमेशा निगाह के तेज बनते थे, इतना भी नहीं पहचान सके। अरे ये मेहर सिंह ही कुमुदिनी थी।
2: ओहो, तो तुम ही थी कुमुदिनी?
3: जी,
2: मेरी कुमुदिनी।
3: हाँ।
2: सच्ची प्यारी लीला, तुम सच्ची देवी हो।
3: हटो।
2: जब तक जिएंगे तुम्हारे एहसान मंद रहेंगे।
3: अब तो शायद तुम्हें शोक का पुरस्कार मिल गया है। इतना प्यारा पुरस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का चौथा भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि अगली पीढ़ी का GST कराधान प्रक्रिया को सरल और अधिक पूर्वानुमित बना रहा है तथा व्यवसायों और परिवारों को भी सहयोग प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरसूद जिला खंडवा में आयोजित तेंदुपत्ता बोनस एवं काष्ठ लाभांश राशि वितरण कार्यक्रम में जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत 100

42.96 करोड़ लागत के 18 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐप आधारित और डिजिटल परिवहन सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं रोजाना ऐप आधारित कैब और अन्य परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता KJP-21 ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जिसमें 41 भारतीय धरती पर जन्मे चीते शामिल हैं। और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी है। अभी तक 3,05,082 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:02 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

खुद को उम्मीदों से सजाना ज़रूरी है, ज़िंदगी खुशनुमा बनाना ज़रूरी है, हालात चाहे कुछ भी हो लेकिन हमेशा हंसना मुस्कुराना ज़रूरी है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो साथी पूजा पांडे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, विश्व शिक्षक दिवस और विश्व पर्यावास दिवस पर। साथ ही चर्चा करेंगे शिक्षा के महत्व जैसे इम्पोर्टेंट विषय पर और साथ ही सुनेंगे हम सबके पसंदीदा फिल्मी गीत। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस मज़ेदार से गीत के साथ।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म केसरी से, जिसमें स्वर थे अरिजीत सिंह और असीज कौर के, जिसमें गीत और संगीत दोनों ही है तनिष्क बागची का। दोस्तों, हर साल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने के लिए 4 से 10 अक्टूबर की तारीख इसीलिए चुनी गई क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को रशिया ने ह्यूमन मेड सैटेलाइट स्पूतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा था और 10 अक्टूबर 1967 को आउटर स्पेस ट्रीटी लागू हुई थी। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो कहता है कि अंतरिक्ष में की गई रिसर्च और उसका इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए होगा। आइए अब जानते हैं कि इस दिन को मनाया कैसे जाता है। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों में ये दिन मनाया जाता है। इस हफ्ते के दौरान स्कूल, कॉलेज और स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करती है। बच्चों और आम लोगों के लिए साइंस एग्जीबिशंस, स्पेस साइंस पर लेक्चर्स और वर्कशॉप्स रखी जाती हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट अंतरिक्ष से जुड़े कार्यों में बढ़े। आइए बात करते हैं इस दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में। दोस्तों, इसमें सबसे पहला है बच्चों की पढ़ाई में मदद। ये बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने के लिए बढ़ावा देता है ताकि फ्यूचर में नए वैज्ञानिक और इंजीनियर्स बन सकें। इसमें अगला है इनोवेशन। अंतरिक्ष में रिसर्च करने से नई तकनीकें जन्म लेती हैं जिससे दुनिया की कई मुश्किल समस्याओं के लिए नए समाधान मिलते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दुनिया में भाईचारा बढ़ाना। ये अलग अलग देशों को एक साथ लाता है ताकि सब मिलकर अंतरिक्ष की बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकें और एक दूसरे की रिसर्च में मदद कर सकें। साथियों, हम बात कर रहे थे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला प्यारा गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म कबीर सिंह से, जिसमें स्वर, गीत और संगीत तीनों ही है विशाल मिश्रा का। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज है विश्व शिक्षक दिवस, जो कि हर साल 5 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मेन मोटिव दुनिया भर के टीचर्स के कामों को सराहना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत ईयर 1994 में यूनेस्को ने की थी। उनका मानना था कि टीचर्स हमारे समाज को सुधारने और बच्चों का भविष्य बनाने में सबसे बड़ा काम करते हैं, इसलिए दुनिया भर के शिक्षकों को सम्मानित करने और उनकी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए इस खास दिन की शुरुआत की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 अक्टूबर ही क्यों। बता दें, इतिहास में 5 अक्टूबर 1966 का दिन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा दिन था। इस दिन पेरिस में एक विशेष बैठक हुई थी, जिसमें यूनेस्को और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर शिक्षकों के अधिकारों, उनके वर्किंग सिस्टम और उनकी भलाई के लिए ज़रूरी नियम और नीतियाँ तय की थी। बात करें इस दिन को मनाने की, तो इस दिन स्कूलों और कॉलेज में स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को थैंक यू कार्ड्स, फूल और प्यारे गिफ्ट देते हैं, और शिक्षकों के मनोरंजन के लिए कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे डांस, एक्टिंग और गाने भी गाए जाते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर यूनेस्को और कई देशों की सरकारें इस दिन को बड़े प्रोग्राम और सेमिनार कंडक्ट करती है, और साथ ही कई मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें शिक्षकों की समस्याओं, उनके अधिकार और बेहतर ट्रेनिंग पर चर्चा की जाती है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले शिक्षकों को बड़े बड़े मंचों पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं अगला गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म भूत पार्ट वन द हॉन्टिंग शिप से, जिसमें स्वर हैं अखिलेश अखिल सचदेवा के और मानशील गुजराल के। गीतकार और संगीतकार दोनों ही हैं अखिल सचदेवा। आइए अब जानते हैं विश्व पर्यावास दिवस के बारे में। दोस्तों, विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे हर साल अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है। इस दिन का मेन मोटिव दुनिया को ये याद दिलाना है कि हर इंसान के पास रहने के लिए एक सुरक्षित और अच्छा घर होना उसकी बुनियादी अधिकार है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की नींव ईयर 1985 में रखी गई थी, जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इंसानों के रहने की स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रस्ताव पास किया था, जिसके तहत ये तय किया गया कि हर साल अक्टूबर महीने की पहले मंडे को पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जाएगा। इसके ठीक एक साल बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर ये दिन केन्या की राजधानी नायबोरी में मनाया गया। तब से लेकर आज तक ये दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया के हर नागरिक के पास एक सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक घर होना उसका बुनियादी हक है, और इस हक को पूरा करना दुनिया की तमाम सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस दिन को मनाने के लिए यूएन हर साल दुनिया का कोई एक शहर चुनती है जहां इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, जिसे इस साल ये मीटिंग ओमान के मस्कट शहर में हो रही है। इस मीटिंग में दुनिया भर के बड़े बड़े नेता और अधिकारी बैठते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं कि स्लम्स में रहने वाले लोगों को पक्के और सस्ते घर कैसे दिए जा सकते हैं और शहरों में प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। इस दिन उन लोग और संस्थाओं को हैबिटेट स्क्रोल ऑफ ऑनर अवार्ड नाम का एक बड़ा अवार्ड भी दिया जाता है, जिन्होंने बेघरों को छत दिलाने के लिए बहुत अच्छा काम किया हो। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं ताकि वो भी पर्यावरण और साफ सफाई के महत्व को समझ सकें। इस दिन से पूरे अक्टूबर महीने के लिए खास अभियान शुरू होता है, इसे अर्बन अक्टूबर कहते हैं, और इस पूरे महीने लोग पेड़ लगाते हैं, अपने आसपास साफ सफाई करते हैं और सोशल मीडिया पर दूसरों को भी जागरूक करते हैं। इस तरह हमने जाना वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म जिद से, जिसमें स्वर थे सुनिधि चौहान और शारिब सबरी के। गीतकार हैं शकील आजमी और संगीत है शारिब पंतोशी का। श्रोताओं, एजुकेशन हमारे लाइफ का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ये सिर्फ स्कूल कॉलेज जाकर डिग्री लेने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की समझ है। एजुकेशन क्यों हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ये हम कुछ पॉइंट से समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है पर्सनल ग्रोथ। शिक्षा इंसान को सही और गलत के बीच में अंतर समझाती है। एक शिक्षित इंसान समाज में अंधविश्वासों और पुरानी गलत रूढ़ियों से दूर रहता है। शिक्षा हमें हमारे सोचने का तरीका बदलती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाती है और हमें अपनी बात को सही ढंग से दूसरों के सामने रखना सिखाती है। बिना शिक्षा के इंसान का दिमाग बंद कमरे की तरह होता है, जबकि शिक्षा उसी इंसान को पूरी दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया देती है। दोस्तों, दूसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए शिक्षा सबसे बड़ी चाबी है। अच्छी शिक्षा और स्किल्स होने से जॉब्स और बिजनेस में बेहतर मौके मिलते हैं। ये इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, ताकि वो अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रख सके। शिक्षा समाज से गरीबी को मिटाने का सबसे दमदार हथियार है, क्योंकि यह हर इंसान को आगे बढ़ने का बराबर मौका देती है। दोस्तों, इसमें अगला है सोशल डेवलपमेंट। जिस देश के लोग जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे, वो देश उतना ही तेज़ी से तरक्की करेगा। शिक्षा लोगों को कानून का पालन करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना सिखाती है। जब समाज में शिक्षा फैलती है तो क्राइम्स भी कम होते हैं और लोग मिलकर शांति से रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश का भविष्य

वहाँ के एजुकेशन सिस्टम और स्कूल कॉलेज में मिल रही शिक्षा पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसमें अगला और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो है बेटर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। शिक्षा सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती, बल्कि हमें एक स्वस्थ और बेहतर जीवन जीना भी सिखाती है। एक एजुकेटेड इंसान सेहत, साफ सफाई और न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह समझता है। दोस्तों, उम्मीद है ये पॉइंट्स काफ़ी होंगे ये समझाने के लिए कि एजुकेशन हम सब की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हम खुद भी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को भी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करना चाहिए। वक्त हो गया है रोजगार समाचार का। कैनरा बैंक द्वारा अपरेंटिस के 3,500 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026 है और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म बैड न्यूज से, जिसमें स्वर, गीत और संगीत तीनों ही है विशाल मिश्रा का। साथियों, वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा पांडे मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी भोपाल के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: वो भी ऐप से। वाह, फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का ये गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने, बोल लिखे जयदीप सहानी ने और संगीत है सलीम सुलेमान का।
1: पापा

0: श्रोताओं, फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम, जिसका विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस विषय के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर मनोज कुमार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनसे बातचीत की है अभिषेक कटियार ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, किसी भी परिवार के लिए सिर पर पक्की छत का होना केवल एक घर की बात नहीं, बल्कि उसकी सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की बुनियाद होती है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला आज विकास और जन कल्याण की इसी सुखद तस्वीर का साक्षी बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने बालाघाट जिले में हजारों बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के जीवन को बदल दिया है। वर्ष 2016-17 से लेकर अब तक जिले में 1,90,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,74,000 से ज्यादा घर बनकर तैयार भी हो चुके हैं। यही नहीं, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री जनमन अभियान के तहत भी 3,400 से अधिक बैगा और जनजातीय परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। इसके साथ ही आवास प्लस सर्वे 2.0 के जरिए नए जरूरतमंद परिवारों की पहचान भी पूरी कर ली गई है। ग्रामीण विकास की इस ऐतिहासिक उपलब्धि और बालाघाट पक्के मकान, पीएम जनमन अभियान और ग्रामीण सशक्तिकरण के विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज

0: हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर मनोज कुमार जी। मनोज जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर,
1: धन्यवाद अभिषेक।
0: मनोज जी, सबसे पहला सवाल मेरा इस बिंदु को लेकर है कि बालाघाट जिला, जो कभी एक नक्सल प्रभावित जिले के रूप में बहुत चर्चा में रहता था, अभी हाल ही में यह नक्सल मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। प्रशासन और बालाघाट पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के प्रयासों के चलते यहाँ के जो नक्सली थे आत्मसमर्पण करके अब मुख्य धारा से सरकार की पुनर्वास नीति से जुड़ रहे हैं। तो आज के दौर में जिले में जो 1,74,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्के घर का सपना पूरा होता दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उनके ग्रामीण जीवन स्तर में आए इस व्यापक बदलाव को, परिवर्तन को आप किस रूप में देखते हैं?
1: निश्चित रूप से एक आम आदमी का सपना होता है कि घर हो मेरा अपना
0: जी।
1: घर के बिना उसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, और ऐसे में जो आंकड़े आप बता रहे हैं 1,74,000 मकान
0: जी,
1: ये अपने आप में अकल्पनीय है।
0: इसके
1: पहले हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कुछ होगा
0: जी।
1: इसकी दो वजह हैं, एक तो उस तरह की सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उनका मन नहीं था, उनके पास ऐसी योजनाएं नहीं थी। दूसरा, इस रास्ते में ये जो नक्सली हैं ये आड़े आते थे
0: जी,
1: कि जहां काम होना है वहां काम नहीं होने दे रहे हैं, और वो बेचारे ग्रामीण वही टूटी फूटी छतें, पानी टपक रहा है, बीमारियां हो रही वगैरह वगैरह अलग अलग चीजों से जूझते थे। लेकिन अब दृश्य बदल रहा है और 2.25 लाख लोग करीब को उनको छत मिल चुकी है, और आप जैसे बता रहे कि 2 लाख के आसपास का फिगर पहुंच रहा है जो स्वीकृत हो चुके हैं
0: जी।
1: तो आने वाले दिनों में इतनी बड़ी संख्या में अपना मकान अपने छत के नीचे रहना एक मतलब सपनों का सच होने जैसा है
0: जी। बिल्कुल ठीक आपने, और इस जिले में विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए पीएम जनमन अभियान के तहत ही 3400 से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं, जो कि एक जनजाति समाज दर्शकों से बुनियादी सुविधाओं से दूर था, उनके जीवन में ये जो पीएम जनमन योजना है इसने कितनी बड़ी क्रांति लाई है, इसको किस प्रकार से देखते हैं?
1: निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं जिसमें आप पीएम जनमन अभियान का उल्लेख अपन कर रहे हैं, ये इसने पूरे जो ट्राइबल्स हैं और पिछड़ी जनजातियां हैं सबके जीवन को बदल दिया है। अब आप जैसे बता रहे हैं कि बैगा समुदाय में 3400 लोगों को मकान मिला है
0: जी।
1: जब हम बैगा समुदाय की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर खींची गई है कि वो भूखे गरीब से कहीं भी पड़े हुए कुछ भी नहीं है, और जब हम 3400 मकान की बात करते हैं तो सहसा यकीन नहीं होता है
0: जी
1: ऐसा हुआ है। लेकिन सच यही है कि धीरे धीरे करके जीवन में बदलाव आ रहा है, और उनका अपना मकान होना कितना सुखद है, और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कर मिलकर जो सुखद परिणाम दे रहे हैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ
0: जी। बिल्कुल ठीक आपने, जब हम बैगा समुदाय की, जब हम समाज के इस वर्ग की प्रगति होते देखते हैं तो ये अपने आप में एक उदाहरण बनता है कि हाँ वास्तव में प्रगति हो रही है। कच्चे मकान से पक्के मकान में जाना, अभी आपने चर्चा भी की थी, ये केवल एक भौतिक बदलाव नहीं होता बल्कि इससे परिवार के स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक प्रतिष्ठा भी जुड़ती है। इस सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को आप इन आदिवासी क्षेत्रों के लिए किस रूप में विश्लेषित करेंगे?
1: एक बड़ा बदलाव आया है कि अभी तक हमने जो देखा है वो चाहे जनपदी समाज हो या ग्रामीण समाज
0: जी,
1: वहाँ अगर मकान बनेगा या मकान की रजिस्ट्री होगी तो वो पति या पिता या भाई के नाम पर होगी। लेकिन पहली बार बदलाव हो रहा है जहाँ घर पर महिला का नाम है
0: जी।
1: ये कितना बड़ा सुखद बदलाव है कि महिला अब मकान की मालकिन है
0: जी,
1: और ये मालकिन शब्द अपने आप में इतना सुखद होता है, और इससे केवल ये सुखद नहीं होता है, एक सपना सच नहीं होता है
0: जी,
1: बल्कि उनके भीतर सुरक्षा और स्थायित्व का भाव पैदा होता है
0: जी।
1: निर्णय में उनको एक आत्मविश्वास पैदा होता है
0: जी,
1: और फिर ये जो वित्तीय समावेशन है, जो उनके आर्थिक रिसोर्सेज हैं उसको डेवलप करने में उनको लगता है कि अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ
0: जी,
1: और वो कर रही हैं। और इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की सपोर्ट है, ये सारा कुछ मिला के एक सपने का बहुत बेहतर ढंग से जमीन पर उतरना है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मेरा अगला सवाल इसी मुद्दे पर ही था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अधिकतर मकानों की रजिस्ट्री या स्वामित्व है घर की महिलाओं के नाम या संयुक्त रूप से किया जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के आत्मविश्वास और उनके निर्णय लेने की क्षमता पर इसका क्या कुछ असर आप देखते हैं आने वाले समय में?
1: अब अभी तक हम बात करते थे कि शहरी महिलाएं जो हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो दफ्तरों में नौकरी करती हैं, वो सशक्त हैं। लेकिन अगर असल सशक्तिकरण देखना है, जैसा कि हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ देवी अहिल्या का सशक्तिकरण है
0: जी,
1: लोक माता का जो सशक्तिकरण है वो गांव में जाके देखिए, गांव का बदलता हुआ चेहरा देखिए, वहां की महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास देखिए, तो आपको पता लगेगा कि पूरा भारत कैसे बदल रहा है, एक नया भारत कैसे गढ़ा जा रहा है। और ये महिलाओं में आत्मविश्वास के लिए आपको वहां तक चलकर जाना होगा
0: जी,
1: और आप जाके देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं वो शहरी महिलाओं से कहीं अधिक सशक्त और आत्मविश्वास से भरी ये हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें जो नए समाज की रचना कर रही हैं।
0: बिल्कुल ठीक, आपने कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वे पहले से ही काफी सशक्त हैं अगर हम शहरी इलाकों की तुलना करें और ग्रामीण इलाकों की तुलना करें। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अब चलिए सुनते हैं हमारे कुछ हितग्राहियों की बातें कि वे पीएम आवास योजना के तहत आवास पाकर अब क्या कुछ कहते हैं। सुधाकर कहते हैं कि पहले पीएम आवास मिलने के पूर्व जब हमारे पास झोपड़े थे तो बारिश में बहुत दिक्कत होती थी, घर के सामने कीचड़ भर जाता था, लेकिन अब जो पक्के आवास मिले हैं उससे अब और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
2: पुराने जो मकान थे झोपड़े, इन्हीं बारिश में क्या होता था, टपके, बंदर कूदने से, चूहों की वजह से भी कुछ ये होता था, यानी फिर आए दिन कहीं बल्ली टूट गई, सिवार ये हो गया, कुछ मनमानी ऐसी समस्याएं होती। मगर प्रधानमंत्री ये आवास योजना के अंतर्गत जो बिल्डिंग वाला दिया गया है, भवन वाला, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, आजू बाजू कीड़े मकोड़े भी घुस जाया करते थे, मगर ये बंदिश होने से कोई कीड़े मकोड़े या कैसे कोई जीव जंतु नहीं जो घर में नुकसान पहुंचाए। अब क्या उनके रहते में तो पहले पैर भरते थे घर के सामने से निकलो, आज तो सीमेंट गली है, हमें पहले टार्च का लेना पड़ता था, लाइट है, पानी के लिए हमारे घर के सामने स्वयं दूर हमारे घर के परिवार को कहीं जाना नहीं पड़ता, सारी सुविधाएं तो जो मूलभूत है हमें पूर्ण मिल रही है।
0: वहीं बालाघाट जिले की ग्रामीण महिला सिवनबाई कहती हैं कि पीएम आवास मिलने से हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है।
3: पहले मैं कच्चे मकान में रहती थी, मतलब पानी बरसात के दिनों में पानी बहुत टपकता था जिस वजह से हमें बहुत समस्या होती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना से जो हमें लाभ मिला है, पक्का मकान बन चुका है जिस वजह से हमारी छत टपकती नहीं और सभी मतलब अच्छे से रहते हैं।
0: वहीं बालाघाट जिले की प्रोजेक्ट अधिकारी नेत्रा उइके बताती हैं कि बालाघाट जिले में पीएम आवास योजना के तहत किस प्रकार से निर्माण कार्य हुए हैं।
4: जिला बालाघाट में योजना प्रारंभ से अब तक लगभग 190,733 आवास जिले से स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 170,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं, 16,000 आवास अभी प्रगतिरत है जिनमें प्लिंटल और छत स्तर का कार्य प्रगतिरत है। इसी प्रकार जिले में 4,187 पीएम जनमन आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 3,415 आवास कंप्लीट किए जा चुके हैं, बाकी आवास प्रगतिरत है। इसी प्रकार जो पुराने सर्वे में नाम छूट गए थे उनमें भी 1,63,000 नाम जिले में अभी जोड़े गए हैं, जिन पर शासन से कार्रवाई अभी प्रचलन में।
0: निश्चित रूप से बालाघाट जिले में पीएम आवास योजना के इन हितग्राहियों की जबानी ये खुद बताती है कि किस प्रकार से आज वहाँ के ग्रामीण और आदिवासी अंचल की तस्वीर बदल रही है। इसके साथ ही आंकड़े भी गवाह हैं कि विकास हो रहा है। 90% से अधिक स्वीकृत मकानों का सफलतापूर्वक निर्माण पूरा कर लेना ही इस योजना की दक्षता को दर्शाता है। बालाघाट जैसे वनांचल और दूरस्थ क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में समयबद्ध निर्माण को संभव बनाने में जिला प्रशासन की कार्यशैली को आप कैसे आंकते हैं, जबकि कभी यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा था।
1: इसे एक शब्द में कहा जाए तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच,
0: जी,
1: जिसमें समग्रता है,
0: जी,
1: वो क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है, डिजिटल ट्रैकिंग हो रही है,
0: जी,
1: और जो भी लोकल हेडल्स हैं उसको तत्काल दूर करके बनाया जा रहा है।
0: जो
1: प्रशासन ने चौतरफा जो एक रणनीति बनाई है, इसका रिजल्ट है कि हम बालाघाट जैसे घने जंगलों में बरसाती नालियां हैं और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, उसके बीच हम 90% से अधिक का लक्ष्य पूरा करने जा रहे हैं।
0: जी,
1: ये एक वो जो हमने कहा ना आपसे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच,
0: जी,
1: इसके चलते ये सब कुछ संभव हुआ है।
0: जी बिल्कुल ठीक, आपने जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें प्रशासन और सरकार और साथ ही साथ आम जनता, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उन सबकी सहभागिता से कहीं ना कहीं ये योजनाएं धरातल पर
1: निश्चित रूप से देखिए कि किसी भी चीज में वो हम सारी चीजें जो सरकार पे डालते हैं ना, ये इस मानसिकता को बदलना होगा। दरअसल सरकार कौन है, सरकार हम हैं और हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये चेहरा बदलेगा,
0: जी,
1: विकास दौड़ेगी और हमको एक नए भारत, एक नए समाज में जीने का अवसर मिलेगा।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बुनियादी सुविधाओं का कहीं ना कहीं एकीकरण होता जा रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: आज अगर हम यदि पीएम आवास की बात करें तो ये केवल चार दीवारें नहीं बल्कि इनके साथ नल से जल, उज्ज्वला की गैस कनेक्शन और शौचालय जैसी सुविधाएं भी डेवलप की जा रही हैं। इस समन्वित विकास, जिसको हम मल्टी फेज्ड डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खासतौर से जो ये हमारे आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं जहाँ पर कभी नक्सलियों का बाहुल्य था, अब वो खत्म हो चुका है, किस प्रकार से उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं, ये हमारा समन्वित विकास का मॉडल।
1: मुझे लगता है कि अब हम अपनी इस चर्चा में
0: जी
1: नक्सल मुक्त शब्द को छोड़ दें और हम कहें कि एक विकसित ग्रामीण भारत
0: जी
1: वो कैसा है
0: जी,
1: तो ये जो पीएम आवास योजना है
0: जी
1: इसने इतनी सारी चीजें बदली हैं, जैसे अब उनको नल जल स्कीम से जोड़ लिया गया है
0: जी,
1: उज्ज्वला से जोड़ लिया गया है
0: जी,
1: अब इसके चलते क्या हो रहा है, समय की बचत हो रही है
0: जी,
1: अब उन्हें पानी भरने के लिए दूर तक नहीं जाना हो रहा है
0: जी,
1: घर पे अपने आंगन में पानी मिल रहा है
0: जी,
1: अब जब पानी साफ मिलेगा, रहने के लिए जगह होगी, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में भी सुधार होगा
0: जी,
1: जो बीमारियों पे पैसे खर्च होते थे वो खत्म हो गए हैं
0: जी,
1: अब इन जब चीजें होती हैं तो वो रोजगार पे ध्यान लगाते हैं
0: जी,
1: तो कौशल विकास करते हैं, और इस सब करने से इसका पूरा का पूरा असर लोकल मार्केट पे पड़ता है
0: जी,
1: और मार्केट बूम करने लगता है, दिखने लगता है कि हाँ अब इसमें आवक जावक बढ़ गई है, खरीदारी देनदारी बढ़ गई है
0: जी,
1: तो इस तरफ पूरा एक नए ग्रामीण भारत का चेहरा हमारे सामने उभर कर आता है,
0: एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित होती दिखाई पड़ती
1: है निश्चित रूप से।
0: और जैसा कि अभी आपने रोजगार के क्षेत्र की बात करी, तो ये जो सबसे अच्छी बात इस योजना की यही है कि जितने भी लाखों मकान यहाँ पर निर्मित किए जा रहे हैं उनके निर्माण में भी स्थानीय स्तर पर ही जो कारीगर लग रहे हैं, राजमिस्त्री हो, मजदूर हो, और निर्माण सामग्री से जुड़े जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं समृद्धि मिली है, रोजगार और आर्थिक समृद्धि का साधन मिला है। तो क्या आपको लगता है कि पीएम आवास योजना को ग्रामीण रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा इंजन भी माना जा सकता है?
1: निश्चित रूप से अभिषेक, हमको इसको थोड़ा सा पलट के देखना पड़ेगा
0: जी,
1: हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा है
0: जी,
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में ये सारे जो लोकल कौशल हैं, हमारे स्थानीय लोग हैं, वो कोई बिल्डिंग बनाने वाला है, कोई
0: पढ़ाई
1: वाला है, कोई और कुछ काम करने वाला है, ये सब मिलकर काम करते थे, हमें बाहर से कोई चीज आयात नहीं करनी पड़ती थी। पीएम आवास योजना और उनके पीएम साहब के निर्देश में ये सारी चीजें, वो जो भारतीय ज्ञान परंपरा है ना, वो लौटकर इन गांवों तक, इन आंगन तक आ गई है, तो अब सारी चीजें बहुत आसान हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है इसकी लागत कम
0: होगी,
1: क्योंकि अगर मजदूर बाहर से आता है तो उसके पैसे दुगुने होंगे, वो वही गांव में रहकर काम करता है तो अधिक समय काम करेगा, कम कीमत में काम करेगा
0: जी,
1: तो लागत भी कम हो रही है
0: जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहीं ना कहीं जो दूरस्थ और पहाड़ी इलाकों में सामग्री पहुंचाने और तमाम चीजों की व्यवस्था करने में एक्स्ट्रा लागत लग सकती थी, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, स्थानीय स्तर पर ही रोजगार भी सृजित होता है। मनोज जी, मध्य प्रदेश के अन्य आदिवासी बाहुल्य जिलों के लिए बालाघाट का ये जो सफलता का मॉडल है किस प्रकार से एक नजीर बन सकता है, और इस गति को बनाए रखने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: ये जो तस्वीर बदल रही है
0: जी,
1: फौरी तौर पे तो हमें बेहतर लग रहा है
0: जी,
1: लेकिन इसको स्थायी बनाने के लिए हमको सतर्क और सजग रहना होगा
0: जी,
1: कठोर सुरक्षा नीति बनेगी, अगर कोई गड़बड़ करते दिखता है तो उसके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए
0: जी,
1: और इसके साथ ही भरोसा पैदा करने के लिए सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और शिक्षा पे ज्यादा जोर देना होगा
0: जी,
1: जब शिक्षित होगा समाज तो मन बदलेगा, और खासतौर पे महिला और बच्चियों की शिक्षा के लिए बेहतर काम करने होंगे, कि वही हमारी जननी है, वही हमारी धुरी है, अगर वो शिक्षित होंगी तो महिलाएं इस पूरे भाव को बदलने की ताकत रखती हैं, महिलाओं पे फोकस सरकार को करना होगा
0: जी। बिल्कुल ठीक आपने, कहीं ना कहीं जब एक महिला शिक्षित होती है तो कहा भी जाता है कि पूरा समाज शिक्षित होता है, तो महिला सशक्तिकरण को जो प्राथमिकता दी गई है इन सरकारी योजनाओं में, चाहे हम पीएम आवास की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, वो कहीं ना कहीं सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसको दिखाता है कि महिलाओं को सशक्त करके ही हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे।
1: अभी हमने बात की ना कि घर पे महिलाओं के नाम पर टीका लग रही है
0: जी,
1: वो अपने आप में इतना सुकून का है, उनके भीतर कितना आत्मविश्वास भरता है
0: जी,
1: कितना और कुछ करने की ताकत रखती है वो दिखाता है इसपे
0: जी। बिल्कुल ठीक है आपने, एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपने बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन अभियान के सफल क्रियान्वयन, इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों और ग्रामीण बदलाव से जुड़े तमाम पहलुओं पर अत्यंत व्यावहारिक और विचारणीय विश्लेषण हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। श्रोताओं, बालाघाट की ये विकास गाथा ये साबित करती है कि जब सरकारी नीतियां संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतरती हैं तो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का जीवन भी सम्मान और सुरक्षा से भर जाता है। पक्की छत मिलना केवल एक सपने का पूरा होना नहीं, बल्कि यह एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की दिशा में बढ़ता हुआ मजबूत कदम है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
8: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
9: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
10: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
8: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
9: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
9: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
8: शाम सुहानी हो,
9: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
8: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
9: सफर में
8: आपके साथ
9: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरसूद जिला खंडवा में आयोजित तेंदुपत्ता बोनस एवं काष्ठ लाभांश राशि वितरण कार्यक्रम में जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत 142.96 करोड़ लागत के 18 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को मंजूरी दी है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि कल है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐप आधारित और डिजिटल परिवहन सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं रोजाना ऐप आधारित कैब और अन्य परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता KJP-21 ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जिसमें 41 भारतीय धरती पर जन्मे चीते शामिल हैं। और प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद मौसम ने करवट ली है। रात के तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ने लगी है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण गर्मी और उमस बनी हुई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी। वो लिखते हैं,
3: जो निश्चल प्रेम में रहते हैं वो छल समझ नहीं पाते और जो छल में रहते हैं वो निश्चल प्रेम नहीं समझ पाते।
2: जी आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश

0: भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो हमें पहला संदेश मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
0: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा।
1: और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और ख्याति सारवा।
0: छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
1: और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू।
0: राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
0: हम उमंग कार्यक्रम में मासिक संस्करण श्रोता संवाद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को प्राप्त होती है। सच मानिए, ये कार्यक्रम जानकारी का महत्वपूर्ण खजाना है। 7 सितंबर के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़ से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सती बाई साहू जी का।
0: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका उडुपी जिला कर्नाटक से एच सिद्धार्थ जी लिखते हैं।
1: आप लिखते हैं, आदरणीय कार्यक्रम के बारे में हमारी प्रतिक्रिया
0: जी।
1: स्त्री शिक्षण को आपने प्रोत्साहन देकर महिलाओं में हिम्मत बढ़ाई है। पुराने जमाने में पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक कार्यकलाप ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लोग खारिज करते थे
0: जी।
1: जेंडर डिस्पैरिटी पर आपका श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब सुनिए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है और ये कहाँ स्थित है।
0: इसका उत्तर है साथियों, दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव पर स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है।
1: और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया।
0: इसका उत्तर है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा उसकी माता को दिया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न था, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के भीतर भूकंप, भूगर्भीय, ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण सुनामी आती है। समुद्र के भीतर भूस्खलन भी इसका मुख्य कारण है।
1: और हमारा अगला सवाल था कि मेघालय शब्द का क्या अर्थ है।
0: मेघालय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ और आलय
1: जी।
0: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो अर्थ बना मेघालय यानी मेघों या बादलों का घर।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
0: गांधी जी द्वारा रचित संभवतः सबसे अधिक चर्चित किताब का नाम है, मेरे सत्य के प्रयोग
1: जी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, तो हो जाइए तैयार। हमारा आज का प्रश्न है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं।
1: श्रोताओ, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
0: जी।
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम। तो आज के पहले कार्यक्रम के क्रम में हम सुनेंगे हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
0: आइए सुनते हैं श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, प्रस्तुत है उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर। तो आज इस क्रम में हम बात करेंगे NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों की। तो श्रोताओं, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव। आप एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, आज के उमंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूँ और आपने समय दिया मुझको सुनने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे

0: जी, और बताइए कि यह सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा है।
1: हाँ अजीत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है, जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो विषय तो समाज से जुड़ा ही होता है।
0: जी
1: दूसरा, समाज और प्रकृति में क्या समन्वय है, उसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से।
0: जी
1: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बल दिया है कि जब भी हम बच्चों को समाज के बारे में बताने का प्रयास करें तो हमें समाज के जो विषय हैं, जैसे आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये इसका समावेश है। और हम इसको सोशल साइंस कहते हैं, यानी समाज शास्त्र। आप हमारी पाठ्यपुस्तक मिडिल स्टेज की ले लीजिए और आप देखिए कि जितनी भी पाठ्य सामग्री है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अतीत के चित्रपट, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या जुड़ाव है,
0: जी
1: इन विषयों को हम अपनी 6वीं, 7वीं, 8वीं में दिए हैं। और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से, आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है। यानी कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास ले लीजिए, कि समय सारणी से जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमारा विषय वस्तु आपको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ घटनाओं का विवरण हम जब करते हैं तो हमारा विषय वस्तु आपको जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि आपके मन में जिज्ञासा, आपके मन में उस विषय के बारे में और गहन ढंग से कहाँ से लें उसके बारे में। और तीसरा, आप किन गतिविधियों के माध्यम से ये विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रकृति आपदा के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई, तो प्रकृति आपदा के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि क्यों ये घटती है और हमें क्या करना चाहिए।
0: जी
1: इसी तरह हमारे पाठ्य पुस्तक में आप देखिए, जो विषय हमारे भूगोल से जुड़ा है, हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो
0: प्राकृतिक संसाधन कह ले,
1: हमारी प्रकृति संसाधन है, वो क्या है, और साथ साथ हम बताने की कोशिश करते हैं उसकी संरक्षण हम कैसे करें। ताकि आज आपने सुना होगा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्य पुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, तो एक गौरव जैसी भावना आती है कि हमारे भारत वर्ष में ये विषय कितना अहम था। हमारे जितने भी पर्सनालिटीज थे, आप कोई भी विषय ले लीजिए, उन्होंने गहन ढंग से अध्ययन करके, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में ले लीजिए, कितनी अच्छी बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आगे ले जाता है। साथ साथ प्रकृति के बारे में भी बताने का प्रयास किया जाता है, क्यों और क्या, ऐसे सवालों का जवाब भी हमारी ज्ञान परंपरा में आपको मिलेगा जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे।
0: जी,
1: अनेकता में एकता एक ऐसा पाठ है हमारी सभ्यता संस्कृति में जुड़ा है हमारे पाठ्य पुस्तक में, जहां मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हमारे जो रीति रिवाज हैं या हमारी जो फेस्टिवल्स हैं, वो विभिन्न तो होते ही हैं, लेकिन हर विभिन्नता में एक एकता की भी
0: भावना
1: आती है। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको एक सूत्र में जोड़ करके हमारी विकसित यात्रा, सभ्यता और संस्कृति का भी एक बहुत अहम स्थान है, और हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसको अच्छी तरह से 6वीं, 7वीं, 8वीं में दर्शाया है। इसको कृपा करके पढ़िए और अपने प्रांत में भी देखने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं और किस तरह से हम उससे जुड़े रखते हैं। कितने समय से ये शुरू हुआ, लेकिन आज भी हम उसको बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, गाना गाते हैं। और आप देखिए, आज हम लोग की जो हेरिटेज है, आर्ट है, कितना लोग इसको लोकप्रिय ढंग से अपने जीवन में इसको उतारते हैं। और बच्चे, आप लोग तो अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी इसका समावेश करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलेगी।

0: ही साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी चर्चा किया गया। कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं हमारे भारतवर्ष में, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। और साथ साथ ये भी बताया गया है
1: जी,
0: कि बार्टर से आज मॉनेटाइजेशन में हम
1: वस्तु
0: वो
1: विनिमय
0: यात्रा,
1: प्रणाली से जी
0: हाँ, हमारी यात्रा कैसे रही, साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भी
1: जी
0: विभिन्न ढंग से बताया गया है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये भी आप पाएंगे, और लोकतंत्र के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये एक जुड़ाव जो हमारी सामाजिक विज्ञान को बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम इसको पढ़ें, एग्जाम्पल्स कैसे हम दे सकें, और साथ ही साथ जब हम विश्लेषण करें तो तथ्यों के आधार पे हमें निष्कर्ष पे आना चाहिए, ना कि केवल पढ़ करके। क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे NEP 2020 में दिया गया है, वो भी आप तथ्यों का पहले एकत्रित करिए, उनका विश्लेषण करिए, तब आप नतीजे पे आ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, गतिविधि कई दी हैं जो आप कर सकते हैं और खुद जुड़ सकते हैं इस विषय से। क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ा है। कुछ ऐसे हमारे पाठ हैं जो अतीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अतीत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक हमारा ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान का, कंटिन्यूटी एंड चेंज, किस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति किए, और क्या बात है कि कुछ चीज आज भी प्रासंगिक है, उसको हम लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमारी आर्ट है, संगीत है, हमारी सभ्यता संस्कृति है,
1: अलग अलग कलाएं हैं हमारी,
0: अलग अलग कलाएं हैं, इन सबको हम आज भी जोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें खुद को गौरव महसूस कराते हैं और हमारी आइडेंटिटी को, इंडियननेस को स्ट्रेंथन करने का कोशिश करते हैं।
1: जी। तो प्रोफेसर गौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से इस पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी दी। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इस पुस्तक को पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों को किस प्रकार का निर्देश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं भी शिक्षक रह चुकी हूँ और मेरा अपना मानना है कि हम विधि को बहुत ही सरल ढंग से और बाल केंद्रीय अगर हम बनाते हैं तो बच्चे का जुड़ाव होना चाहिए। कक्षा में हमारा औरों को भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक किरण बच्चों के अंदर लाते हैं कि ये विषय केवल पढ़ने का ही नहीं है, समझने का भी है, और आप खुद उसके साथ संवाद करें। क्योंकि बुक तो आपके सामने है, लेकिन जब आप उसको आंखों से भी पढ़ेंगे, उसका अध्ययन भी करेंगे और उसको चर्चा करेंगे, इसका मौका आपको बच्चों को देना होगा। हम सब मानते हैं कि क्लास का समय जो है निर्धारित होता है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाने के लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, यानी जो भी विधि पाठ में दी गई है उसको हम एक टीचिंग एड के माध्यम से बता सकते हैं, बच्चों का समावेश कर सकते हैं क्लास में, बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात बताएं, एक चर्चा करने का मौका मिले उनको, साथ ही साथ उनको हम डिबेट करने का मौका दें। और अगर हमने कोई पाठ के बारे में बताया, सभ्यता और संस्कृति मान लीजिए हमारे पाठ है, तो हम बच्चों को आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हो या हम बच्चों को भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, यानी उनको विजिट कराने की बहुत जरूरी
1: उनको
0: जरूरत
1: लेके जाएं,
0: है,
1: उनको
0: बताएं। लेके जाएं। और हमारा प्रयास ही होता है कि मान लीजिए गांव में कोई अच्छा आर्टिजन है या कुम्हार है, लोहार है, इनसे बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये जो कार्य हैं, ये कार्य कितने मुश्किल हैं और इनकी जो उन्होंने चीजें बनाई हैं वो आम जीवन से कैसे जुड़ा हो। और इससे बच्चों का जुड़ाव संस्कृति से भी होगा, कार्य से भी होगा, अर्थव्यवस्था से भी होगा। तो आप देखिए, आपने एक लिंकेज बताया, इंटरडिसिप्लिनरी भी बताया, बच्चों को अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य जोड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ पाठ को रुचिकर बनाया। बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, सपना होता है उनके मन में, और ये आप ही कर सकते हैं। विषय को इतना रुचिकारक बनाइए कि बच्चों को लगे हाँ, समाज शास्त्र में है जिससे हम अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रोजेक्ट बनाने की बहुत जिज्ञासा होती है, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और जब भी मेरे क्लास में कोई

0: विषय मुझे अच्छा लगता था तो मैं सोचती थी कैसा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्या पेंटिंग करूं, क्या एक प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाऊं या ऑडियो वीडियो बनाऊं। तो ये सारी चीज़ें अगर उनके मन में आ जाती है तो इसका मतलब वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और जब ऐसा होता है तो समाज का जो अन्य विषय है उससे भी जुड़ाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे 6ठी से 8वीं की विशेषता ये है कि वो जितने भी विषय हैं उसको पिरो करके एक पाठ बुक में बनाया गया है। और इसको आगे करते हुए, क्योंकि आप पे बहुत दायित्व है कि आप इसको कैसे बच्चों तक पहुंचाएं, जब उनको इन सारे विषयों से जोड़िए, पिरोइए और उनके जीवन से जोड़िए और ये बताने की कोशिश करिए कहाँ थे और हम कहाँ आ गए।
1: जी
0: ये बहुत जरूरी है,
1: जी
0: कंटिन्यूटी एंड चेंज।
1: जी अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि इस पुस्तक में, यानी समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इसी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, हम ये जानना चाहेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजीत जी।
1: जी
0: मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी पाठ्यपुस्तक में महिलाओं को जहां जहां उन्होंने योगदान दिया है उसको समावेश किया है। और उन्होंने बॉक्स आइटम में भी दिया है, लेख में भी उनका विवरण किया है और जहां जहां समाज में अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी दिया है। जैसे आप ले लीजिए हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 6, कक्षा 6 में जो महिलाओं के बारे में दिया गया है, जैसे कि गार्गी जी के बारे में बताया है, वंदना बहादुर मैदा के बारे में दिया गया है जो एक सरपंच थी अपने गांव की और उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। इसी तरह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में कनगी महारानी के बारे में बताया गया है और प्रभावती गुप्ता जी के बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में मुतम्मा के बारे में बताया गया है और हमारी कक्षा 8 की पुस्तक में रानी दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी अक्कबा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन महिलाओं का योगदान जिस जिस क्षेत्र में किया है उसके बारे में दिया गया है। और अगर आप हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक देखें तो आप देखिएगा कि कक्षावार जहाँ जहाँ महिलाओं ने योगदान दिया उनके बारे में चर्चा किया गया है और ये क्यों किया गया है, ताकि आपको भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आप एक खोज करिए कि ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में गहन योगदान दिया है पर कुछ कारणवश, जिनको हम कहते हैं लेसर नोन, उनके बारे में भी आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि आपको
1: जी
0: खुद एहसास होगा कि जब भी समाज विकास के रास्ते पे चला महिलाओं का योगदान हमेशा ही रहा। और आज भी आधुनिक भारत में भी आप देखिए कि हमारी महिलाएं किन किन क्षेत्र में कामयाबी के ढंग से अपना योगदान दे रही हैं। आर्मी में भी देख लीजिए, नेवी में देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, जिनको पहले हम कहते थे अनकन्वेंशनल रोल,
1: हाँ, कार्य के किसी भी क्षेत्र में आजकल
0: सब
1: महिलाएं देखी जा
0: सभी
1: सकती हैं।
0: क्षेत्र में
1: जी
0: उनका योगदान है। और हम बहुत गर्व के साथ भी कहना चाहते हैं कि हमारी एक पाठ्य पुस्तक फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के में जब भी पुस्तक आप उठाइए तो खेल के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है वो बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप देखिए कि पाठ्य पुस्तक में विजुअल कंटेंट में महिलाओं का समावेश है, जिसको हम कहते हैं जेंडर इंक्लूसिवनेस।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर गौरी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और एनसीईआरटी की इस विशेष पाठ्य पुस्तक के बारे में आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी। तो श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी आशा है कि इसके द्वारा हमारे श्रोता बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे मौका दिया। हम अपने सारे श्रोताओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना, पर मैं और धन्यवाद आपको दूंगी जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़िए और एक यात्रा में जाइए कि हम और इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ें। तथ्यों को एकत्रित करिए और कोशिश करिए कि पाठ में आप और क्या जोड़ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद सभी को, आपको
1: जी
0: अजीत जी।
1: धन्यवाद। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता संवाद। तो अब सुनते हैं आज का अगला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है आम का पेड़।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चों को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा बताया गया है कि मात्र पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी लगातार देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है।
0: आम का पेड़।
2: गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा,
3: ऐसे ही मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा।
2: उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा।
4: अरे वाह, पौधा निकल आया।
2: कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी।

0: सौरभ बोला,
1: ये पौधा मैंने लगाया है, ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे।
0: दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले,
2: क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो।
0: प्रिया बोली,
3: पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे का आम खाएंगे।
0: उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे, फिर प्यार से बोले,
2: अरे बच्चों, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे।
0: ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला,
1: कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे।

0: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आम का पेड़।
1: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
2: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
0: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
0: मुकुल सिंह,
3: वीरेंद्र
0: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म राउडी राठौर का ये गीत। आवाजें हैं मीका सिंह और वाजिद की। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने।

0: श्रोताओं, फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला से आप ये गीत सुन रहे थे, जिसे गाया था रेखा भारद्वाज, शंकर महादेवन और मोहित चौहान ने। विशाल भारद्वाज का संगीत और शब्द रचना थी गुलजार की। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की प्रस्तुति आजकल, जिसका विषय है बदलता बालाघाट, बढ़ती खुशहाली। आलेख प्राध्यापक एवं लेखक डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने का है, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का है।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है बदलता बालाघाट, बढ़ती खुशहाली। आलेख है वरिष्ठ प्राध्यापक एवं लेखक डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

जिस बालाघाट की पहचान कभी नक्सलवाद और पिछड़ेपन से की जाती थी, आज वही जिला विकास और खुशहाली की नई कहानी लिख रहा है। जल, जंगल और जमीन से समृद्ध यह क्षेत्र आदिवासी संस्कृति और जीवन परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लंबे समय तक नक्सली हिंसा और असुरक्षा के कारण यहाँ की अपार संभावनाएं पूरी तरह सामने नहीं आ सकी थीं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास की पहुंच गांव-गांव तक दिखाई देने लगी है। आज बालाघाट में भय की जगह विश्वास और बदहाली की जगह खुशहाली का वातावरण नजर आता है। बालाघाट के सघन जंगल यहाँ के आदिवासी समाज के जीवन और आजीविका का आधार हैं। बदलते हालात में अब स्थानीय लोगों को अपने संसाधनों का बेहतर लाभ मिल रहा है। वन अधिकार, वनोपज, कृषि और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है। इस परिवर्तन की सबसे स्पष्ट तस्वीर बुनियादी ढांचे के विकास में दिखाई देती है। जिन क्षेत्रों तक कभी पहुंचना भी कठिन था, अब वहां पर सड़क और संपर्क सुविधाओं का विस्तार हुआ है। गांव बाजारों से जुड़ रहे हैं और आवागमन आसान बना है। किसानों तथा वनोपज संग्रह करने वाले परिवारों के लिए अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाना सरल हुआ है। वहीं बच्चों की शिक्षा और मरीजों के उपचार के लिए भी सुविधाएं पहले की तुलना में अधिक सुलभ हुई।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बालाघाट नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच बढ़ने से ग्रामीण और आदिवासी परिवारों के बच्चों के सामने नए अवसर खुले हैं। आज का युवा केवल पारंपरिक रोजगार तक सीमित नहीं रहना चाहता, वह उच्च शिक्षा, कौशल विकास, सरकारी सेवाओं, निजी क्षेत्र और उद्यमिता जैसी नई सोच बदलते बालाघाट की पहचान बन रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इससे लोगों को उपचार के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम हुई है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और प्राथमिक उपचार जैसी सेवाएं ग्रामीण जीवन को बेहतर बना रही हैं और यही किसी भी विकास की वास्तविक पहचान होती है। बालाघाट की प्राकृतिक संपदा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे रही है। वनोपज से जुड़े परिवारों को बाजार और सरकारी सहायता का लाभ मिल रहा है। कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग और कौशल आधारित रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि हो रही है और आदिवासी समाज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पर्यटन भी जिले के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। प्राकृतिक सौंदर्य, वन्यजीव और सांस्कृतिक विविधता पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसका लाभ स्थानीय परिवहन, हस्तशिल्प, भोजन और आवास से जुड़े व्यवसायों को मिल रहा है। पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इस पूरे बदलाव में सुरक्षा व्यवस्था की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण से सामान्य जनजीवन मजबूत हुआ है। जिन क्षेत्रों में कभी भय का माहौल था, अब वहां पर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की पहुंच दिखाई देती है। सुरक्षा और विकास दोनों ने मिलकर बालाघाट जिले को नई दिशा दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास को समान प्राथमिकता दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं का विस्तार इस परिवर्तन को मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। विशेष रूप से आदिवासी समाज को उसके अधिकारों के साथ विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। वास्तविक बदलाव लोगों के जीवन में भी दिखाई देता है। जब गांव तक सड़क पहुंचती है, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होती हैं और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं, तब विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, वो लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाता है। आज का बालाघाट इसी बदलाव का प्रतीक है। यहाँ विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। गांव जुड़ रहे हैं, युवा आगे बढ़ रहे हैं, आदिवासी समाज सशक्त हो रहा है और प्राकृतिक संसाधन समृद्धि का आधार बन रहे हैं। बालाघाट की ये कहानी बदहाली से खुशहाली तक की यात्रा की कहानी है। ये उस परिवर्तन की कहानी है जिसमें भय की जगह विश्वास ने ली है, असुरक्षा की जगह विकास ने स्थान पाया है और पिछड़ेपन की जगह एक आत्मविश्वासी, सुरक्षित और प्रगतिशील बालाघाट की नई पहचान उभर कर सामने आई है। आजकल में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम आजकल, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबी अलमाज। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट मंदसौर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले में विभिन्न सेवा एवं जनभागीदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है मंदसौर से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मंदसौर जिले में विभिन्न सेवा एवं जन भागीदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत मेरे सपनों का भारत विषय पर जिला स्तरीय चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने विकसित भारत की कल्पना प्रस्तुत की। वहीं वडनगर वाराणसी जल जन सेवा संकल्प यात्राओं का जिले भर में भव्य स्वागत किया गया। यात्राओं के दौरान पौधारोपण, श्रमदान, युवा संवाद और पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन सहित अन्य गतिविधियां संपन्न हुई। सीतामऊ में रक्त सेवा पोर्टल का शुभारंभ सहित जिले की आंगनवाड़ियों में आंगन मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सेवा सेतु अभियान के तहत जिले के 5 स्थानों पर जन विश्वास शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 8,440 आवेदन प्राप्त हुए और 7,000 से अधिक लोगों को मौके पर ही लाभ दिया गया। वहीं 4 अक्टूबर को जिले के 11 नगरीय निकायों में मेगा सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।
0: हमारी दूसरी खबर खरगोन से है, जहां 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जिले की 589 ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया गया। अधिक जानकारी दे रहे खरगोन से हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
2: खरगोन जिले में जिला प्रशासन ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में गांधी जयंती पर नशे के दुष्प्रभाव के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से नशा मुक्ति रथ और नुक्कड़ नाटक के दल के माध्यम से गांव-गांव सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को स्वयं नशे से दूर रहने और परिवार तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। नशा मुक्ति अभियान को लेकर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिलिंद कुमार नागदेव।
3: गांधी जयंती के अवसर पे खरगोन जिले के 9 जनपद में ग्राम सभा के माध्यम से नशा मुक्ति के उत्तीसिका को प्रस्ताव के रूप में भी सम्मिलित किया गया था, जिसमें सभी को शपथ दिलाकर यह संदेश प्रसारित किया गया कि नशा मनुष्य के जीवन के लिए कितनी भयावह बुराई है और इस बुराई से कैसे निपट सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से नाटक नुक्कड़ का मंचन किया गया।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
0: हमारी अगली खबर ग्वालियर से है, जहां सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता नवीन श्रीवास्तव।
4: सेवा संकल्प अभियान के तहत ग्वालियर जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा, वृक्षारोपण अभियान, योग एवं ध्यान सत्र, साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा जागरूकता, नशा मुक्ति अभियान, वोकल फॉर लोकल, वीर गाथा एवं सैनिक सम्मान, शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान तथा अनाथालय एवं वृद्धाश्रमों के भ्रमण जैसे कार्यक्रम शामिल है। इसी कड़ी में गांधी जयंती के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान एवं मुख्यमंत्री जन विश्वास सेवा संकल्प के अंतर्गत रतन शिक्षा समिति एवं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मद्य निषेध सप्ताह के तहत ग्वालियर में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने सहभागिता करते हुए रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत गांधी जयंती के अवसर पर ही कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी एवं जन प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों और नागरिकों ने विशेष स्वच्छता अभियान के तहत वार्ड 3 विनयनगर में गौरी शंकर स्कूल के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया,
5: सेवा ही संकल्प मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये आयोजन रखा गया है और स्वच्छता को लेकर के मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार बृहद एक्टिविटीज करता है, उसमें से ही एक एक्टिविटी आज नगर निगम की टीम के साथ यहाँ वार्ड 5 की एक रोड पर की गई है। स्कूल के पास का एरिया है और जो हमारा साइड का लेन था उस पे काफी सारा प्लास्टिक वेस्ट इत्यादि था, तो आज पूरी टीम की मदद से इसको क्लीन किया गया है। प्रयास ये रहेगा कि ये अब कंटिन्यूअसली स्वच्छ रहे।
4: उधर सेवा संकल्प अभियान के तहत उड़ीसा से आए 28 सदस्यीय सोशल मीडिया प्रभावक दल ने ग्वालियर के विभिन्न विकास परियोजनाओं का अवलोकन किया। 10 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत जहां सोमवार को पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं कल 6 अक्टूबर को पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और शिक्षा विभाग के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
0: हमारी अगली खबर खंडवा से है। जिले में सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसेवा और जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
6: खंडवा जिले में सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसेवा और जागरूकता गतिविधियां जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में देश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा जिले में अभियान के अंतर्गत स्वच्छता एवं श्रमदान, नशा मुक्ति जागरूकता, रंगोली, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर तथा पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों और युवाओं को सामाजिक सेवा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सहित विभिन्न संस्थाओं में भी सेवा और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के संकल्प में जन भागीदारी बढ़ाना, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा समाज में सेवा, सुशासन और सामाजिक सहभागिता की भावना को मजबूत करना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरा लाल लोंगरे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं इंदौर जिले की तरफ, जहां सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता मनिंद्र कुमार दुबे।
7: जिले में सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान इंदौर नगर निगम ने 22 सफाई मित्रों और 22 ड्रेनेज कर्मचारियों को एक समारोह में सम्मानित किया। वहीं सेवा संकल्प अभियान में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों का सम्मान किया जा रहा है। इस दौरान लाभार्थी बहनें शासकीय योजनाओं से जुड़े अपने अनुभव साझा कर रही हैं। अभियान के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों की चर्चा करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु प्रजापति ने आकाशवाणी को बताया।
8: सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत इंदौर जिले में सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक आशीर्वाद का दिया, नमो सेवा गाथा, आंगन का मिलन कार्यक्रम एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इन्फ्लुएंसर एक्सचेंज प्रोग्राम आदि कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। वर्तमान में सेवा सेतु शिविर एवं सेवा मेरा योगदान अंतर्गत विभिन्न विकास खंडों एवं नगरीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
7: सेवा संकल्प अभियान 2026 में शिक्षा विभाग ने मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे।
0: हमारी अगली खबर है नर्मदापुरम जिले से, जहां विश्व प्रसिद्ध सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के द्वार 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। नए पर्यटन सत्र की शुरुआत होते ही देश विदेश से पहुंचे सैलानियों को मड़ई और चूरना गेट पर स्वागत किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता तनुज तिवारी।
9: मानसून सीजन के चलते पिछली 1 जुलाई से 90 से अधिक दिनों तक बंद रहे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में अब रौनक लौट आई है। 1 अक्टूबर को रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए फिर खोल दिए गए हैं। पहले ही दिन मड़ई और चूरना क्षेत्र में सफारी के लिए पहुंची सभी 20 जिप्सियां बुक रही। मड़ई और चूरना क्षेत्र में पहले दिन 154 पर्यटकों ने ऑनलाइन बुकिंग के जरिए जंगल के रोमांच का लुत्फ उठाया। पर्यटकों ने कोर और बफर जोन में बाघ, तेंदुआ, भालू और दुर्लभ पक्षियों का दीदार किया। जाहिर है फिर इस सीजन में पर्यटक अब न सिर्फ कोर एरिया में बाघ, भालू और तेंदुए जैसे वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे, बल्कि रिजर्व के प्रसिद्ध बागड़ा बफर जोन में भी सफारी और रोमांच का मजा साल भर ले सकेंगे। वहीं वन विभाग ने भी सुबह और शाम दोनों पारियों की सफारी के समय तय कर दिए हैं और ऑनलाइन परमिट की बुकिंग भी तेजी से शुरू हो चुकी है। बागड़ा बफर जोन में नाइट सफारी और बोट सफारी की सुविधा भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध करा दी गई है। नर्मदापुरम से तनुज तिवारी।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम चलते हैं झाबुआ जिले की तरफ, जहां महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन तथा खतरनाक वाहन चालक पर प्रभावी अंकुश के लिए झाबुआ पुलिस का जिला स्तरीय ऑपरेशन मर्यादा अभियान शुरू किया है। पेश है झाबुआ से हमारे संवाददाता हरीश यादव की ये रिपोर्ट।
10: महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन तथा खतरनाक वाहन चालकों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए झाबुआ पुलिस ने जिला स्तरीय ऑपरेशन मर्यादा अभियान शुरू किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने आकाशवाणी को बताया कि
11: ऑपरेशन मर्यादा जो जिला झाबुआ में इसका चलाने का उद्देश्य यह है कि इस एरिया में जो अपेक्षित जानकारियां अभी तक विगत मेरे द्वारा 5-6 महीने में पदस्थापना के बाद में देखी थी, उसमें आम जनता से चर्चाओं में, बैठकों में ये बात निकल के आई थी कि यहाँ पर फास्ट मूविंग बाइक्स, जो कि बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, रेसर गाड़ियाँ हैं, उनकी संख्या बड़ी तादाद में, और उन गाड़ियों के ऊपर रेसिंग के लिए कई खाली जगहों पर, मुख्य मार्गों के ऊपर, देहात क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में निकली जाती। किसी भी 3 सवारी बैठ करके उसको साइलेंसर निकाल दिया, उसको स्पीड से रेस दे रहे हैं, चिंगाड़ते हुए गाड़ियाँ जा रही हैं। उन सब परिस्थितियों के कारण जो आसपास गुजरने वाले लोग हैं, रहवासी हैं, निवासी हैं,

0: धनी बस्तियों में सामान्य जनजीवन जो चल रहा है उसमें एक असहजता आ जाती है। इसी तरह की रील्स को, इन घटनाओं को रील्स के माध्यम से इंस्टाग्राम फेसबुक पे इन रील्स को बनाकर डालते हैं और एक ऐसा माहौल सोशल मीडिया पे आम जनता में पैदा किया जाता है जिससे एक असुरक्षा का भाव आम जनमानस में आता है।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश यादव।
2: हमारी अगली खबर है जबलपुर से, जहां विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट लम्हेटा घाट में 87 करोड़ रुपए की लागत से जियो पार्क और जियोलॉजिकल म्यूजियम विकसित किया जाएगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी।
3: विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट लम्हेटा घाट में 87 करोड़ रुपए की लागत से जियो पार्क और जियोलॉजिकल म्यूजियम विकसित करने की परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड करीब 12 हेक्टेयर क्षेत्र में यह परियोजना विकसित करेगा। इसे सितम्बर 2026 से फरवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य भेड़ा घाट की प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक विरासत को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़ना है। परियोजना में जियोलॉजिकल म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के साथ 6 विषयगत गैलरियां, 130 से अधिक 3D मॉडल, डिजिटल पैनल और इमर्सिव थिएटर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा डायनासोर पार्क, फॉसिल गार्डन, रॉक गार्डन, ट्री टॉप वॉकवे, ग्लास फ्लोर नेचर वॉक और व्यूइंग डेक जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। पर्यटकों के लिए रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, स्थानीय उत्पादों के लिए रिटेल क्षेत्र और इको रिसोर्ट की सुविधा भी प्रस्तावित है। परियोजना में लम्हेटा फॉर्मेशन की भूवैज्ञानिक विरासत और टाइटेनोसॉरस इंडिकस के जीवाश्म से जुड़े इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही भेड़ा घाट लम्हेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल कराने और भविष्य में यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क की दिशा में आगे बढ़ने का प्रस्ताव है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गे पामला के बीच आज नई दिल्ली में बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति पामला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगी। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास करती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला

0: सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नई दिल्ली में आज म्यूनिक सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स के जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। इस तकनीक से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या बंद किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। स्टॉकहोम में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया गेम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में कल तक बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। रात्रि 8 आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:35 पर। कार्यक्रम पब्लिक स्पीक आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा रात्रि 10:00। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज आप सुनेंगे राग देश, मिश्र पीलू और मिश्र पहाड़ी पर नीना श्रीवास्तव का उपशास्त्रीय गायन। तबले पर होंगे अशेष उपाध्याय और हारमोनियम पर संगत देंगे रुपेश कुमार लाल। इसका प्रसारण 10:30 पर होगा। श्रोताओं ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा आप सुनेंगे 8:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 9:05 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे वाणी पुरोहित

0: 10:30 पर होगा। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे सुबह 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12 बजे और दोपहर 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 5वां भाग आप सुनेंगे 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के योगदान से प्रसारित होंगे। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे, शाम 5:33, 8:35 और रात्रि 10 बजे। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6 बजे और चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए 6:30 पर। किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण शाम 7:30 पर होगा। विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। उर्दू कार्यक्रम कहकशां सुनिए रात्रि 9:30 पर। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप कल सुनेंगे अभय पगरे का राग मारू बेहाग पर बांसुरी वादन, इसका प्रसारण रात्रि 10:30 पर होगा। श्रोताओं, ये थे कल यानी 6 अक्टूबर 2026 मंगलवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और PPE किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले, आ गया ना किड बैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लोकभवन में वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा में रानी दुर्गावती जन्मोत्सव के अवसर पर तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि वितरित की। मैहर के गौरव दिवस पर विद्यार्थियों ने सामूहिक कथक प्रस्तुति देकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 32 माह की मादा चीता ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। चीतों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है।

0: समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज लोकभवन में वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी सहित लोकभवन के अधिकारी कर्मचारियों ने भी वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा जिले के हरसूद में वीरांगना रानी दुर्गावती जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस एवं काष्ठ लाभांश राशि का अंतरण किया। श्री यादव ने अपने संबोधन में वीरांगना रानी दुर्गावती के संदेशों को याद किया।
1: दुर्गावती का शासन काल हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके जीवन के माध्यम से पांच बड़े संदेश मिलते हैं। रानी दुर्गावती जिनके लिए देश प्रथम था, स्वाभिमान दूसरा, और कठिन परिस्थितियों में भी महारानी का नेतृत्व जगदम्बा की तरह दिखाई देता है। नारी शक्ति का सम्मान, समाज, संस्कृति, मातृभूमि, जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, सभी प्रकार के जीवन के लिए जो जो जरूरी है अपने साम्राज्य के लिए वो सब देने को तैयार।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने 142 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 18 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने 52 गढ़ों के वंशजों का सम्मान किया तथा रानी दुर्गावती को समर्पित घड़ी और कैलेंडर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के कार्यों की श्रृंखला में एक वर्ष में प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण से मध्य प्रदेश देश की फूड बास्केट बन चुका है। भोपाल में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के पदोन्नत अधिकारियों कर्मचारियों के अभिनंदन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विभाग सरकार की कृषि योजनाओं को फाइलों से निकालकर खेत की मेड़ तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 3,357 शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ दिया है। साथ ही कृषि विभाग के 44 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि कैसे जीएसटी ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाया।
2: भारत में वस्तुओं एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए कई वर्ष हो चुके हैं। जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को वन नेशन वन टैक्स के उद्देश्य से की गई थी। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक व्यवस्था के तहत लाना था। इसे लागू होने के बाद वैट, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी व्यवस्था में शामिल किया गया। जीएसटी के प्रमुख उद्देश्यों में करों का एकीकरण, साझा बाजार का निर्माण और व्यापार को सरल बनाना शामिल है। इसके साथ ही कर यानी कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करना और कारोबारियों के लिए रिटर्न प्रक्रिया को डिजिटल एवं अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अलग अलग टैक्स स्लैब में रखा गया है, जिनमें प्रमुख रूप से 0, 5, 12, 18 और 28% की दरें शामिल हैं। कुल मिलाकर जीएसटी का उद्देश्य देश के एकीकृत कर व्यवस्था के साथ व्यापार और कर अनुपालन को सरल बनाना है। प्रादेशिक समाचार एकांश के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैहर के गौरव दिवस पर 3,430 छात्र छात्राओं ने सामूहिक कथक प्रस्तुति देकर इतिहास रचा। फुटबॉल मैदान में विद्यार्थियों ने 9 मिनट 24 सेकंड तक एक साथ कथक प्रस्तुत किया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने निर्धारित मानकों के अनुसार प्रस्तुति का अवलोकन किया और इसे रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करने की घोषणा की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री राधा सिंह और विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस उपलब्धि को मैहर की सांस्कृतिक विरासत और विद्यार्थियों की प्रतिभा का गौरवपूर्ण प्रदर्शन बताया गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता संरक्षण को बड़ी सफलता मिली है। भारतीय धरती पर जन्मी 32 माह की मादा चीता केजेपी 21 ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही देश में चीतों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें 41 भारतीय धरती पर जन्मे हैं। केजेपी 21 भारतीय धरती पर शावकों को जन्म देने वाली तीसरी मादा चीता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रोजेक्ट चीता से जुड़ी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि चीता संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों की सफलता का प्रतीक है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज भोपाल के अमरावत खुर्द में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूली बैग वितरित किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही जीवन में सर्वांगीण विकास और प्रगति का आधार है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने और विद्यार्थियों से लगन एवं अनुशासन के साथ पढ़ाई करने का आग्रह किया। राज्य मंत्री ने विद्यालय में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से पठन पाठन और भोजन की गुणवत्ता की जानकारी भी ली। रीवा में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में नेत्र परीक्षण एवं निशुल्क चश्मा वितरण शिविर में सहभागिता की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच जिले में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से सीधा संवाद किया। शाजापुर में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विशेष यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आगरमालवा जिले में सेवा ज्योति कलश यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अपर कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मंदसौर जिले में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत बलराम कृषि महोत्सव 6 अक्टूबर को कृषि उपज मंडी परिसर में दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर राजगढ़ ने जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत 100% बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ये आकाश
7: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान कार्यक्रम सुनने वाले अपने सभी भैया बहनों को स्वाति बहन की राम राम। देखो भैया लोग कहते हैं ना कि जहाँ हरे भरे पेड़ पौधा होते हैं उतने अपन को सभी को मन कर रहा था कि अपन जाएं उठें बैठें और तना समय बिताएं। लेकिन बाई के विपरीत अगर देखें चारों तरफ अगर गंदगी फैली है कूड़ा को ढेर लगो है और सूखे साखे पेड़ हैं तो अपन को लगा था कि भई इतने से अपन कब निकल के बाहर जाएं। लेकिन भैया देखो ये जो गंदगी है ना तो कई बार क्या होता है कि जो गंदगी है वह कोनो दूसरे के द्वारा फैलाई भाई नहीं होता है, अपन सभी के द्वारा जो है कई बार देखते हैं कूड़ा कट कर जो है अपन के घरन से निकलत है वो बाहर चलो गो या फिर कोई और तरीक़ों से भी जो गंदगी आसपास से इकट्ठी हो रही है वो जब एक जगह इकट्ठी हो जाते हैं तो एक कूड़ा को ढेर सौ लग जाता है। तो भैया देखो अपन को यही प्रयास करने हैं कि जहाँ तक हो सके

अपन इस स्थिति से बचें और जो भी अपने घरों से कचरा निकलत है बाय को सही तरीके से निपटारा करें। यानी कि जो जैविक कचरा है तो अपन गांव देहातन में भी अपन देखते हैं कि बहुत सी ऐसी जगह भी होते हैं जहां पे अपन जो है जैविक कचरा को अच्छी खाद के रूप में तैयार करने में उपयोग कर सकते हैं। अब जैविक कचरा से मतलब अपनों वही है कि जो घर में अपने जो जैविक पदार्थ निकल रहे हैं जैसे सब्जी के छिक्कल हैं, अपने ढोर बछेरू के जो गोबर है, या फिर पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, या फिर कोनो भी प्रकार की खत पदार्थ है जो कि अपने आसपास इकट्ठी हो जाते हैं, इन सब से जो है अपन अच्छी खाद बना सकते हैं। लेकिन भैया कहते ना कि अगर कछु भी करवो चाहें तो बाय के लाने पहलो प्रयास अपन को खुद ही करने आउत है, एक कदम अपन खुद ही बढ़ाएं तो कछु और लोग भी इस प्रयास में आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर अपन सभी लोग मान लो एक जगह इकट्ठे होएं, इन चीज़ों पर विचार करें और सभी मिलके काम करें तो कहाँ लगते हैं भैया कूड़ा के ढेर, धीरे धीरे बेबी समाप्त हो जाते हैं। और भैया कहते हैं ना कि जो अपन पर्यावरण है इको सुंदर बनाने के साथ साथ स्वच्छ भी बनाने हैं, और स्वच्छ तभी रहे कि अपन जो है प्लास्टिक भई, पॉलीथीन भई, या इस प्रकार के कचरा जो कि मिट्टी में गलत नहीं है उनके उपयोग को कम करें। आपने भी देखो ये कि जो गंदे पानी की निकासी की जगह होते हैं उनमें भी कई बार पन्नियाँ फंस जाती हैं जिसके कारण जो है निकासी अच्छे से नहीं हो पाती है और पानी ऊपर से बाहर तक फैलने लगता है, और अक्सर देखो जाते बारिश के समय में ऐसी स्थिति बन जाती है। वहीं जो अपने पशु हैं उनके मुंह में भी अगर पॉलीथीन के अंदर कोनो खावे की चीज़ रखी है तो उनके संगे संगे वे पॉलीथीन भी खा लेते हैं जो कि उनके लाने बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो भैया अपन यही प्रयास करें कि जहाँ तक हो सके प्लास्टिक पॉलीथीन को उपयोग कम से कम करें, या हो सके तो बिल्कुल भी ना करें। अब अपन इके लाने का कर सकते हैं, जैसे अपन अपने घर से कहूँ हाट बाज़ार के लाने जा रहे हैं तो अपन घर से ही एक थैला लेके जाएं और जितनी कम से कम पन्नी को उपयोग होए उतनी अपनी व्यवस्था करके चलें। तो भैया ये छोटी छोटी बातन को ध्यान रखकर ही अपन अपने पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बना सकते हैं। और हाँ भैया, सुंदर सुंदर पौधे लगावो ना भूलें, क्योंकि जब सफाई के साथ हरियाभरा वातावरण तैयार हो जाते हैं तो बातें ही अलग होते। भैया आज है देखो लोक मादरी को देना, और आप सभी को इंतजार हुई है कि दीदी कब अपनी जो है फरमाइश पढ़ें और हमें बताएं कि कौन कौन से लोकगीतन की फरमाइश आई है। तो पहली फरमाइश आई है दमोह से, लिखवे वाले भैया बहन हैं विन्नी, कोयल, शिशु और नागरी देवी। इनने फरमाइश करी है कि हमें फूल चंद अहिरवार के स्वर में लोकगीत सुनवाएं। तो आओ सुनते हैं।

भैया ना देखो, क्या होता है कि जब अपने खेत खलियान हरे भरे होते हैं तो अपन को लगता है कि अपने जो कीट पतंगा है उनसे अपन फसल को बचा के चले। लेकिन भैया कई ऐसे तरीके हैं जिनको अपना के अपन जो है प्राकृतिक तरीके से भी इनसे मुक्ति पा सकते हैं और अपन को रासायनिक को छिड़काव भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि प्रकाश प्रपंच विधि है, या फिर अपन अपने खेत में टी आकार की गुट्टी लगा दें। और इस समय देखो अपन दिखाते हैं कि जैसे अक्टूबर माह में दलहनी तिलहनी कई प्रकार की जो है फसलें जो अपन लगाते हैं तो उनमें मधुमक्खी भी होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे ही अपन कोनो भी कीटनाशक को उपयोग करते हैं तो जो अपने मित्र कीट हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और तो और जो मिट्टी है वाई की गुणवत्ता भी प्रभावित होते हैं। कई बार तो लगा था कि जैसे अपनी फसल अब और अच्छी हो रही है, लेकिन अगर अपन कछु समय बाद देखें तो अपन को देखने में आउत है कि जो फसल अपन को पहले ज़्यादा मात्रा में मिलती थी वह धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो भैया ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी अपन रसायन को उपयोग कर रहे हैं बाई की जाँच करके ही उपयोग में करें। और हाँ भैया, जहाँ तक हो सके फसल चक्र को जरूर अपनाएं। अब देखो फसल चक्र जो है एक ऐसी विधि है जिससे अपन प्राकृतिक रूप से जो है मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं ना कि कई प्रकार के अपन के जो किसान भैया रहे हैं फसलें लगा होते हैं, दलहनी होती हैं, तिलहनी होती हैं, मटर है, सोयाबीन है, मूंगफली है, भिंडी है, कद्दू वर्गीय है। तो अपन जैसे अपन को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है तो अपन एक काम जरूर कर सकते हैं कि अपन जैसे कोनो फसल लगा रहे हैं तो अपन पहले नंबर तो वैसी फसल लें जो कि जमीन के ऊपर होती हैं। अब जैसे मटर के पौधा हैं, भिंडी है, वो तो तना से लग के शुरू होती हैं, तो कई ऐसे तत्व हैं जो कि उसमें भरपूर मात्रा में अपने उपयोग हो जाते हैं। लेकिन जो जमीन के नीचे के तत्व हैं वे बचे रहते हैं, और इसके बाद अगर अपन को दूसरी फसल लगानी है उस स्थिति में अपन मूंगफली की फसल लगा सकते हैं, शलजम की फसल लगा सकते हैं। इनके उपयोग से क्या होता है कि एक मात्रा की जो कमी होती है जब दूसरी फसल अपन लगाते हैं और उसकी कटाई तक उसकी पूर्ति हो जाती है। साथ ही साथ दलहनी तिलहनी को भी मिला के अपन लगा सकते हैं, जैसे मूंग के साथ सरसों लगा सकते हैं। इसके साथ ही जैसे अपन ने चना लगाए रखे हैं तो अपन कुछ फूल के पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे कि उससे फूल की जो फसलें हैं आज के समय में एक अच्छे व्यापार के रूप में उभर रही हैं। इसके साथ ही जो जायदी फसलें हैं, गन्ना है, गन्ना तो अपन देखते ही हैं कि एक वर्षीय, दो वर्षीय, कई जगह तो ऐसे भी होती है कि मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ है तो त्रिवर्षीय भी होती है। अब जब गन्ना अपन लगा लेते हैं तो मिट्टी के अंदर के अधिकतम पोषक तत्व तो जो हैं निकल जाते हैं। तो ऐसे में अपन को कौन सी फसल लगानी होती जिनकी जड़ें कम गहरी होती हैं? तो अगर अपन एक साल ऐसी फसल लगाएं जिनकी जड़ें कम गहरी होती हैं तो जो मिट्टी है उसकी उपजाऊपन धीरे धीरे करके बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद अपन फिर से भी गन्ना की फसल लगा सकते हैं। तो भैया ऐसे ही तरीकों से जो है अपन अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल चक्र तैयार करें और इससे अपनी मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ाएं, वहीं जो है रासायनिक की जो अपन खर्च करते हैं वैसे अपन बचें, और जहाँ तक हो सके जैविक खादों का उपयोग करें। अब सुनते हैं अगला लोकगीत, स्वर है राजीव रिछारिया का।

भैया देखो, जब अपनो मन शांत होता है तभी अपन को लगाता है कि अपन भजन गाएं, आगे बढ़ें, या फिर कोनो भी जो अपन को रुचिकर काम लगाते हैं वही काम में अपन लग जाते हैं। लेकिन भैया, कोनो भी काम काज करवे के लाने सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एकाग्रता के साथ आगे बढ़ें, धैर्य को ना खोएं और धीरे धीरे बढ़ते रहें। और ऐसी ही सीख जो है अपने जो है शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, भी अपन को हमेशा देते हैं और भी समझाते हैं कि अपन को अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना धीरे से ही करना होता है, समझदारी से करना होता है, ताकि हम जीवन में सफल हों। अब देखो, खेती किसानी की अगर अपन बात करें तो धीरे धीरे पहले अपन ने देखे कि कई प्रकार के जो है किसान भैया ने गेहूँ, चना, सरसों ही करते थे। लेकिन आज अपन ने तकनीकी ज्ञान और सोच समझ से आगे बढ़ के कई ऐसी फसलें भी हैं जिनके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते थे और वे अपने क्षेत्रों में हो रही हैं, और उनका लाभ भी अपन को पहले से बेहतर भी मिल रहा है। और इससे अपनी जो खेतों की मिट्टी है उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। कई ऐसी भूमि हैं जैसे कि बिल्कुल ऊसर हो गई हैं, उनमें भी अपन बोलते हैं ना कि जैसे कि कहते कि ऐसी कोनो भी चीज़ नहीं है जो कि पूरी तरीके से बेकार हो। उनमें भी अपन सुधार करके ऐसी फसलों की बोनी कर सकते हैं जो कि कम पानी और रेतीली जगह पर आसानी से हो जा सकती हैं। ऐसी ही एक खेती है ग्वार पाटा की, जिसको अपन जो है एलोवेरा भी कहते हैं। उसको ना तो ज़्यादा अपन को पानी की देने की ज़रूरत पड़ती है, कम जगह में भी ये आसानी से हो जाती है। और बहुत से किसान भाइयों ने अगर देखी जाए ग्वालियर चंबल संभाग में भी जो खेत के किनारे जो है इनको एक एक क्रम से लगा के इनको बढ़ावा दे रहे हैं। और आज अपन देख ही रहे हैं, चाहे औषधि गुणों के रूप में देखें या फिर त्वचा के निखार के लिए बोलें, तो कई तरीके से इनका उपयोग भी हो रहा है। तो हम इस प्रकार की जो फसलें हैं उनको भी अपने खेत के आसपास या जो अपनी ऐसी ज़मीन है जो कि धीरे धीरे ऊसर हो रही है वहाँ पे इनको लगा सकते हैं। और अब सुनते हैं अगला लोकगीत, स्वर है राधे चरण शर्मा व साथी का।

अपने वही लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगे थे। अब बहुत से भैया बहन को देखो सपना होता है कि हमारो अपनों अच्छे से घर होए, बाइक हम सवार हैं, अच्छी तरीके से बेहतर जीवन लें, लेकिन कई बार हम कई परिस्थितियों के चलते ये सपने अपन पूरे नहीं कर पाते हैं। लेकिन भैया निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आज की आस आगे चल के अपने काम ही आते। और कहते हैं ना कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरत है, तो अपनी छोटी छोटी कोशिश से ही अपन एक अच्छी पूंजी इकट्ठी कर सकते हैं और अपने आने वाले कल को बेहतर भी बना सकते हैं। और जब हमारी एक छोटी सी कोशिश शुरू होती है तो पता ही नहीं चलता है कि कब वह एक नया रूप ले लेती है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अब सुनते हैं अगली फरमाइश। यह फरमाइश भेजी है गोरे गांव डबरा से। लिखने वाले भैया बहन हैं बालकृष्ण यादव, कौशल यादव, भगत यादव, शीला यादव। और इन्होंने फरमाइश करी है कि हमें राधा परिहार के स्वर में लोकगीत सुनवाएं। तो आओ सुनते हैं।

भैया देखो, मैया को जब दरबार सज जाते तो अपन देखो भोग प्रसाद सोई लगा उठे हैं। और अपने अगर बुंदेली भोजन की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो हैं स्वाद इसमें बसे हुए हैं। तो कायना अब सुनते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश भेजी है मुन्ना राजा रोहित सिंह, नीरज सिंह और रवि सिंह ने गढ़ीरा से। लिखिए कि हमें प्रमोद कुमार जोशी के स्वर में लोकगीत सुनवाएं। तो आओ सुनते हैं।

भैरों अब लेते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश आई है अशोक नगर से। लिखने वाले भैया बहन हैं मोहित, सुशील और नेहा। इनने फरमाइश करी है कि हमें राधे श्याम तिवारी के स्वर में लोकगीत सुनवाएं। तो आओ सुनते हैं।

0: भैयरों, अब हो रही है चलबे की बेरा। सभी किसान भैयरों को स्वाति बहन की राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।

0: ग्रामीण श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। आज का विषय है डिजिटल भारत, तकनीक से परिवर्तन तक।
1: सेवा के 19वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा डिजिटल भारत, तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का जन सेवा का नेतृत्व 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान कार्यकाल तक प्रशासनिक दक्षता, जन केंद्रित सोच और तकनीकी नवाचार का एक अनूठा संगम रहा है। जब 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान की नींव रखी गई थी तो ये केवल एक सरकारी योजना भर नहीं थी, ये भारत की शासन व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने वाला एक दूरदर्शी विजन था। और प्रधानमंत्री की ये स्पष्ट सोच रही है कि तकनीकी केवल अमीर या साधन संपन्न वर्गों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने और प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के मकसद से भी होना चाहिए। इसी सोच ने भारत में डिजिटल क्रांति का जो एक नया दौर देखा है और जो डिजिटल डिवाइड की हम पहले बात किया करते थे, उस डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम किया है। तो जहां एक तरफ पहले भारत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है रहा था, तो अब डिजिटल तौर पर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है, जिसमें हर गरीब तक अर्थव्यवस्था डिजिटल माध्यमों से पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे समाधान, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान जटिल था, वो डिजिटल तरीकों से मिल रहा है। तो आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि डिजिटल भारत में तकनीकी से जो एक परिवर्तन यात्रा रही है वो कैसे एक सफल यात्रा रही है और कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने भारत को एक डिजिटल भारत का नया विजन दिया है और आने वाले समय में कैसे विकसित भारत बनाने में भारत का ये डिजिटल सफर बहुत महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण अंग साबित होने वाला है। तो इस विषय पर विस्तार से आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो विशेषज्ञ शामिल हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा तकनीकी और आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद, नमस्कार।
2: और हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ शंकर अय्यर जी भी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार।
2: तो प्रसून जी, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमने बात की कि हर व्यक्ति तक डिजिटल माध्यम से सुविधाओं के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो एक डिजिटलीकरण है वो किसी में कोई

0: भेदभाव नहीं करता है और इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत की नींव रखी थी। आप कैसे देखते हैं वर्तमान समय में गवर्नेंस में जिस तरह से डिजिटल दौर ने एक नई भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है भारत में हर कोने कोने तक डिजिटलाइजेशन को पहुंचाना, उससे किस हद तक हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं?
1: जी, प्रधानमंत्री जी ने जो 25 साल में किया, जैसे फाइलों से फोन तक, कतारों से क्लिक तक, तो ये जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चेंज भारतीय सरकार और गवर्नेंस में हुआ, ये जब प्रधानमंत्री जी पहली एक स्वागत करके ऐप उन्होंने गुजरात में चलाई थी जिससे वो पब्लिक ग्रेवांसेस को डिजिटली एक्सेप्ट करते थे, वहां से स्वागत से लेके अब जैम तक जो प्रधानमंत्री जी ने तकनीक को जो टूल बनाया है कॉमन सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, चाहे अगर आप देख लीजिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तकरीबन 3 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचता है, अब वो सीधा हमारे किसानों पे, हमारे जो गांव के हथकरघा में काम कर रहे हैं वो, या मनरेगा में काम कर रहे हैं उनके खाते में जा रहा है। तो ये तकनीक को एक सुशासन का टूल बना के और अंतिम पंक्ति पे जो जरूरतमंद सिटीजन खड़ा है उनको एम्पावर किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने इन 25 सालों में।
0: बिल्कुल शंकर अय्यर जी, जैसा कि प्रसून जी ने बताया कि किस तरह से चाहे वो स्वागत पहल हो या जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने जो जैम ट्रिनिटी का एक नया इकोसिस्टम बनाया, तो जिस तरह से ये परिवर्तन रहे हैं उन्होंने कैसे भारत में जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है उसको पूरी तरह से बदला है और आज हम देश में देखते हैं कि करोड़ों अब डिजिटल पहचान है लोगों के पास, उनके खाते हैं, बैंक में खुले हैं, एक मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से लोग जुड़े हैं, खातों में लगातार योजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंच रहा है, तो एक पूरा जो तंत्र बना है वो कैसे डिजिटल दौर से संभव हो पाया है?
2: देखिए, एक नेता की जो अपनी एक पहचान होती है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। वो मुख्यमंत्री होने से पहले भुज में जब भूकंप हुआ था तो एक प्रॉब्लम था तब कि कैसे जो जेसीबी है वो कैसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि रोड सारे बिगड़ गए थे
0: जी।
2: तो जब ये सोचा जा रहा था तब नरेंद्र मोदी ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना जेसीबी को ट्रेन पर ले जाया जाए। तो इट वॉज उनको कितने सारे जेसीबी को अहमदाबाद और उनके डिस्ट्रिक्ट्स में बाय ट्रेन, बाय रोड के बजाय बाय ट्रेन ले जाके पहुंचा के रिलीफ पहुंचाया गया। तो एक सोच है उनकी कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, वो सैटेलाइट सेंटर जो है अहमदाबाद में, वहां से उन्होंने एक SMS की सुविधा स्टार्ट की थी
0: जी।
2: जो मछुआरे हैं उनको सैटेलाइट इमेज देखने के बाद, मतलब मछुआरों को सिर्फ SMS आता था कि आप तट से इतनी दूर जाएंगे तो मच्छी की स्कूल, जो स्कूल ऑफ फिशेस बोलते हैं ना, मच्छी अपने साथ में एक एक झुंड में जाते हैं, तो उनको लोकेशन दिया जाता था ताकि वो ज्यादा डीजल खर्च ना हो, ज्यादा घर से ज्यादा देर दूर ना रहे और हर दिन एक अच्छा कैच उनको मिले। ये एक सुविधा थी। अभी हम लोग सब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उन दिनों में वो मतलब दो प्रॉब्लम थे कि गुजरात में पानी का अभाव, जो पावर का अभाव, तो उन्होंने कनाल के ऊपर सोलार लगवाया, तो सोलार टॉप कनाल, ऐसे ये जो सुविधाएं थी। और जब अब हम लोग जब डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है आधार। और जब आधार इम्प्लीमेंट हो रहा था, भले ही उनकी पार्टी की जो भी भूमिका रही होगी उस वक्त, लेकिन गुजरात में 100% इम्प्लीमेंट हुआ था जब वो मुख्यमंत्री, और जैसे वो सेंटर में आए तब तेल का भाव $120 था कच्चे तेल का, तो इन्होंने उसको एक्सपैंड किया। तो ये जो हम लोग आज जो डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें दो बातें हैं, एक है आपके पास एक नॉलेज है, एक सुविधा है तकनीकी, लेकिन उसको सोशलाइज कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी
0: जी।
2: अगर आपने वो जो अकाउंट्स खोलने की जो बात हुई थी, जो हर नागरिक के पास अकाउंट होना चाहिए, तो उन्होंने देश भर में जितने मैनेजर्स हैं बैंक्स के उनको सबको चिट्ठी लिखी है। मतलब ये आधार की जो जर्नी है इसको मैंने अपने किताब में लिखा है, और मैंने इसको उस वक्त जब मैंने कहा था कि ये 12-digit रेवोल्यूशन है,
0: बिल्कुल,
2: तब लोग कह रहे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, लेकिन आज आप देखें डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ये सचमुच में 12-digit रेवोल्यूशन है।
0: बिल्कुल। और प्रसून जी, अभी जिस बात की हम

जिस विषय पर हम अभी चर्चा कर रहे थे कि जैसे तकनीक ने एक पूरे तंत्र को बदल दिया है, पहले जब ये बात कही जाती थी कि केंद्र से भेजा जाने वाला एक रुपया जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के विजन को अगर हम देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस

0: भारत के नागरिक और सरकार के बीच एक विश्वास का नया संबंध स्थापित किया और कैसे तकनीक ने इसमें खास तौर पर बड़ा रोल निभाया है?
1: जी बिल्कुल, अगर आप उसके तथ्य देखिए, तकरीबन DBT के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई है लाभार्थियों में, और जो अनुमानित बचत है जो पहले बिचौलियों के पास जाता था वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास एक अनुमानित आंकड़ा है। तो इतनी बड़ी बचत और सीधा लाभार्थियों तक इसका पहुंचना, ये बहुत बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। दूसरा, इससे जो हमारे आधार से जो प्रमाणीकरण या KYC होता है उससे जो राशन कार्ड या खाद सब्सिडी है वो तकरीबन 1.8 लाख करोड़ की बचत हुई है। मनरेगा में 98% जो मजदूरी समय पर पहुंची है। पहले ये भी होता था कि वो कई महीनों वेट करना पड़ता था उनको अपना जो भी मजदूरी लेने के लिए, अब तकरीबन मतलब उनको टाइम पे पैसा भी मिल रहा है, सही पैसा मिल रहा है, और जितना उनका भुगतान होना है वो सीधा उनके पास आ रहा है, तो वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक विश्वास की नई नींव रखी है जो कि टेक्नोलॉजी आधारित है, और वो टेक्नोलॉजी आधारित नींव ना सिर्फ भारत में, अब जो इंडिया स्टैक करके जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 24 देशों ने अडेप्ट करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है।
0: भारत के विश्व भर को मिल रहे सहयोग की आपने बात की, तो एक और भारत बड़ा योगदान पूरी दुनिया में दे रहा है, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का योगदान। तो विश्व बैंक का ही अगर हम एक ताज़ा आंकड़ा अपने श्रोताओं को बताएं तो दुनिया भर में होने वाले कुल जो डिजिटल तरीके से लेन देन है उसका लगभग 46% से ज़्यादा अकेले भारत में ही होता है। तो UPI ने एक बड़ी क्रांति पैदा की है शंकर जी, और हम देखें तो अब इस बात को तो खैर हम सभी मानते हैं, हमारे लिए तो एक सामान्य सी बात हो गई है कि हम कहीं भी पहुंचे, गांव में, रेहड़ी पर, चाय की दुकानों में, तो हर जगह UPI के जरिए अब लेन देन होता है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था का ये नया दौर है भारत का जिसमें कि जमीनी स्तर पर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की एक अभूतपूर्व क्रांति को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस विजन को रखा पूरे देश के सामने कि भारत में एक पारदर्शिता के साथ डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शंस हो सकें, तो कैसे ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए?
2: ये जो नींव रखी गई थी आधार की, उसके ऊपर कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे हर कुछ महीनों में, सालों में हम लोग ने एक मंजिल और तैयार की। जैसे पहले था आधार, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो जनधन योजना की है जिसमें 50 करोड़ के लोगों के अपने अपने खाते खुलवाएंगे, उसमें मैक्सिमम जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। फिर उसके बाद में जब NPCI ने UPI स्टार्ट किया और जब नोटबंदी हुई उसके बाद में कैसे इसको प्रोत्साहन मिला, लेकिन सबसे ज्यादा तो जो एवोल्यूशन हुआ, जो हमने इनोवेशन किया है वो कोविड के वक्त में। आप देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप क्या वैक्सीनेशन दे पाते विदाउट कोविड के ये? और कम से कम 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी तरह हम लोग, जो हमको भी अंदाज नहीं होता है कि कुछ सालों पहले हम लोग जब हाईवे से जाते थे तो टोल के लिए कितनी बड़ी क्यू लगती थी, लेकिन अभी फास्टैग है और गाड़ियां ऐसे एकदम स्मूथली निकलती है। इसी तरह आप देखिए कि जो UPI की ट्रांजैक्शन की बात आप कर रहे थे, जो एकदम करोड़ों में हो रहा है दिन में, एक दिन में करोड़ों में हो रहा है ट्रांजैक्शन, उसमें एक मैं हमेशा जो मैं MBA की बिटसॉम में MBA की क्लास को पढ़ाता हूँ और हर साल उस क्लास को या कहीं भी पर भी मैं जब बोलने जाता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप पिछली बार अपने बैंक कब गए थे, तो लोग कई महीने अपने बैंक के ब्रांच में गए नहीं है। मैंने मतलब पिछली बार आप कब चेक लिखा आपने, तो वो भी नहीं होता है। मैंने फिर मैं पूछता हूँ पिछली बार आप ATM कब गए थे, तो कुछ लोग गए होते हैं 1 महीने में या 15 दिन पहले। वैसे मैंने कहा पिछले 10 मिनट में या 1 घंटे में आपने कितने UPI ट्रांजैक्शन किए, तो सारे हाथ ऊपर होते हैं जितने क्लास में होते हैं या कहीं पर। तो हम लोग अभी मतलब इसको जैसे एकदम बहुत नेचुरल हो गया है कि हाँ भाई गए आप सब्जी लेने गए तो UPI कर दिया, ऑटो रिक्शा वाला आपको पूछता है आप पैसे देने निकले हैं उसके पास खुले नहीं होते तो वो बोलता है कि अरे जीपे कर दीजिए। तो इस तरह की जो सुविधा को हमने अपने लाइफ में ले लिया, और ये जो आमतौर पर कहा जाता है कि गरीब लोग तकनीकी एडॉप्शन में पीछे होते हैं, लेकिन इतना फास्ट एडॉप्शन जो हुआ है ये दर्शाता है कि हमने किस तरह से उसको सोशली और पॉलिटिकली इसको स्थापित किया है। और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं सराहना करूंगा,
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि उन्होंने उस

0: मैसेजिंग को कांस्टेंट रखा है कि हम ये करेंगे, ऐसे करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए टेलीमेडिसिन, जो मतलब डॉक्टर के पास आप ना पहुंच पाए, गांव में डॉक्टर ना हो, तो भी आप वीडियो के तौर पे मेडिकेशन या अपनी जांच करा सकते हैं वीडियो के कॉल के थ्रू। और जो एजुकेशन में हो रहा है, हम लोग इसको भांप नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना लोग YouTube वगैरह से कोर्स, ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे हैं, उतना शायद वो अपने स्कूल में या कॉलेज में ना सीख पा रहे हो।
1: बिल्कुल, यानी
0: तो एक बहुत बड़ी डिजिटल स्टैक।
1: अवसरों की अपार संभावनाओं को खोल दिया है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने। प्रसून जी का भी मैं इसमें विचार लेना चाहूँगा। जैसा कि अभी शंकर जी बता रहे थे कि इन बीते कुछ वर्षों में ऐसा डिजिटल परिवर्तन हमने देखा है। कोविड के दौर का उन्होंने जिक्र किया, उस वक्त आरोग्य सेतु, कोविन पोर्टल जैसे तुरंत समाधान हमारे पास आ जाते हैं। डिजिटल लेन देन की, हम UPI की तो बात कर ही रहे हैं। तो अब जो एक डिजिटल परिदृश्य हर इंसान में, भारत में हर नागरिक के जीवन में रच बस गया है, वो कितना बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि आमतौर पर हम जब एक किसी भी चीज़ को अपना लेते हैं तो हमारे लिए वो सामान्य सी बात लगती है, लेकिन दुनिया भर में देशों को दशकों लग गए इस तरह के परिवर्तन को पाने में, लेकिन भारत ने चंद वर्षों में इस चीज़ को हासिल कर लिया। कितना बड़ा ये एक परिवर्तन है।
2: जी, एक तरह से ये क्रांति है जिसको डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है। और हर क्षेत्र में अगर आप देखिए, एक और बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेम करके, जो जब स्टार्ट हुआ, जिसमें जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया और 400 करोड़ से शुरू हुआ और आज 5 लाख करोड़ का सालाना जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो जेम के थ्रू होता है। और उसमें से जो अपने छोटे MSMEs या उद्यमी, उनको 9 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। तो MSME भारत की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और उनको अगर ऐसे प्रोक्योरमेंट्स में जो बिचौलिए या जो पेमेंट में दिक्कत या डिले होता था, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जेम के माध्यम से बहुत ही सजग रूप से एड्रेस किया गया। ना सिर्फ एड्रेस किया गया, उसके रिजल्ट्स दिए गए और MSMEs को मजबूत किया गया। इस यही वजह है कि हमारे MSMEs अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के top 3 नेशंस में हैं, क्योंकि ये ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस हुआ है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ना सिर्फ भारत के लिए, सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए। क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी फॉर गुड, फॉर एम्पावरिंग कॉमन सिटीजन्स, इंक्लूडिंग MSMEs, हमारे फार्मर्स और स्टार्टअप्स, ये अद्भुत है। और इसका रोजमर्रा में भी काफी इफेक्ट है, चाहे आप मतलब कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, और जो बाकी इकोसिस्टम है जैसे मेड इन इंडिया या हमारे स्टार्टअप की इनोवेशंस हो रही है, उनको भी मौका मिल रहा है सरकारी प्रोक्योरमेंट्स में अपने सॉल्यूशंस लगाने के लिए। चाहे वो हमारे फार्म्स में स्मार्ट फार्म्स हो, सेंसर लग रहे हों, या चाहे हमारे स्टार्टअप अंतरिक्ष में अपना स्पेस शटल भेज रहे हों। तो ये एक उपलब्धि है और ये एक इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री जी के विजन का।
1: श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा, इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत से तकनीक से परिवर्तन की यात्रा। और इन दिनों इस विशेष श्रृंखला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों का जो एक परिवर्तनकारी नेतृत्व रहा है भारत को, जिसने नई दिशा दिखाई है, उस पर अलग अलग संस्करणों में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। एक और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा मैं प्रसून जी, वो है डिजी लॉकर। जो पेपरलेस गवर्नेंस है उसकी दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब करोड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं डिजी लॉकर पर। हम पहले दफ्तरों में, कार्यालयों में जो कई जटिलताएं थीं, अपने पेपर्स ले जाने पड़ते थे, तो एक पेपरलेस व्यवस्था इस समाधान ने दी। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो इससे कैसे, एक तो पारदर्शिता के तौर पर डिजिटल लॉकर ने काम किया है कि जो एक सत्यापित डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे डिजिटल लॉकर में रहते हैं, और साथ ही नागरिकों की सुविधा को इसने और कैसे बढ़ाया है।
2: जैसे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिजी लॉकर और आधार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तकरीबन 70 करोड़ के आसपास डिजी लॉकर है। चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है या एक मोबाइल का सिम लेना है, आप डिजिटली, पहले कई हफ्ते या महीने लगते थे, आप कुछ सेकेंड्स में आप ये कर सकते हो, और आपको कोई फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी ले जानी नहीं है। इवन अगर आप देखिए, जो हमारे एयरपोर्ट्स में जब हम ट्रांजेक्ट करते हैं तो वहाँ जहाँ पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन से आप पूरा जो भी सिक्योरिटी गेट्स है उसको पास कर सकते हैं कुछ मिनटों में, जो पहले घंटों में होता था वो मिनटों

0: हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री का विजन था भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक जीता जाता सक्सेसफुल उदाहरण है डिजी लॉकर, आधार और इससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं। ना सिर्फ भारत सरकार उस पर सेवाएं दे रही है, जो हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड हैं या इनोवेशन वर्ल्ड हैं वो भी इस पर अपने अपने सॉल्यूशंस बना के दे रहे हैं। चाहे वो मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सत्यापन करना हो, उनको अब बैंक नहीं जाना है तो उससे काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो विड्रॉल की हो, चाहे उनकी सब्सिडीज या उनको जो महीने का जो भी पैसा मिलता है वो मिलना हो। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने बनाया है जिसपे वो खुद भी सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉमन गुड जो भारतीय सरकार ने बनाया है वो एक सराहनीय कदम है। किसी एक कंपनी या किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों की प्रॉफिट के लिए ये नहीं बनाया गया है।
1: बिल्कुल। अभी शंकर जी, प्रसून जी बात कर रहे थे जेम पोर्टल की, सरकारी खरीद में जो दशकों से एक अधिकार एक चला आ रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी समस्या थी, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने जो जेम पोर्टल लॉन्च किया, अब उसमें हम देखते हैं कि न केवल छोटे उद्योगों को नया एक रास्ता मिल रहा है सरकारी खरीद में, अब उन उद्योगों के उत्पादों को खरीदा जा रहा है, बल्कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए हुए सामान भी अब सरकारी दफ्तरों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो व्यापार की जो सुगमता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे इस तरह के इनिशिएटिव्स ने बढ़ाया है, और क्योंकि ये एक डिजिटल पहल है इससे जो हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जो बात करते हैं उससे कैसे इससे मदद मिली है?
2: बहुत बड़ा चेंज जो हुआ, एक बदलाव जो हमारे सिस्टम में हुआ है, वो हमने भागीदारी स्थापित की। हम लोग जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं एमएसएमई के, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, तो उसमें क्या किया है हमने, हमने भागीदारी स्थापित की है। हमने जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पारदर्शिता के लिए डिजिटल लाया, लेकिन उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की जितनी जितने अफसर हैं वो सारे देश में है। अब कोई भी किसी भी दूर दराज एरिया से, इवन प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो थर्मस फ्लास्क है वो पॉन्डिचेरी से गया है, कोई महिला बनाती है और वो सप्लाई। तो जो सुविधाएं हैं वो एक बात है, लेकिन जिस तरह से भागीदारी हमने लाई है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम में, कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में, जैसे कोविड के टाइम पे हमने कोई प्रॉब्लम जो लॉकडाउन और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसको ओपन किया था। अब आप कोई भी बात हो आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। ये जो भागीदारी लाई है जो बिजनेस में, जैसे आपको किसी के साथ, आप घर पे नहीं है लेकिन आपके घर में कोई सामान खरीदने गया हो, तो आप व्हाट्सएप, जो टेलीकॉम की फैसिलिटी है, जो आधार की फैसिलिटी है, जो यूपीआई की फैसिलिटी है, उससे आप कंटिन्यूस। और जितने लोग आजकल डिजिटली अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं आमतौर पे हमारे जीवन में ऐसे वो शामिल हो गया है कि हम लोग इसको कोई ऐसा, हम लोग इससे अचरज नहीं होता हमको, लेकिन हम लोग कितनी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, कितनी चीजें, हमारा प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, ड्राइवर होता है, जो भी होता है उसके साथ हमारा जो संपर्क है, जो सामाजिक संपर्क एक तरफ है, लेकिन जो व्यवहारिक संपर्क, जो बिजनेस रिलेशन है, वो टेक्निकल, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर होता है। जिस तरह से एकदम लास्ट माइल जो, या गांधी जी कहते थे कि द लास्ट पर्सन इन द क्यू, जो एकदम छोटे से छोटा आदमी उतना ही सशक्त है जितना अमीर से अमीर है तकनीकी के कारण।
1: प्रसून जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही जिक्र किया था स्वागत पहल का। 2003 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की थी, जैसा कि आपने भी बताया संयुक्त राष्ट्र में बाद में उसे सम्मानित भी किया गया था उस पहल को। इसी मॉडल को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक इसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है सीपी ग्राम्स नाम से, इस तंत्र से जो तकनीकी के माध्यम से देखा जा रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसके त्वरित समाधान करने की एक सरकार की सोच है, और राज्यों के स्तर पर भी अपनी अपनी पहल की जा रही है। तो कैसे ये एक जो तंत्र बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा जनता से सीधे जुड़ने का, उनके ग्रीवांस को के समाधान का, कितना बड़ा ये एक डिजिटल माध्यम से सफल हो पाया है, कितना असरदार है ये?
0: बहुत ज़्यादा असरदार है, और इसका जो सामान्य हम माई गाँव के रूप में जानते हैं उसमें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास सुझाव आते हैं, और अब वो शिकायतों से सुझाव में परिवर्तित हो गए हैं, और तकरीबन 8 लाख शिकायतें और उनमें से 99

0: परसेंट का शिकायतों का समाधान हुआ। दूसरा, डिजिटल माध्यम अगर आप देखिए, आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मन की बात करके, जहां पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट देशवासियों से मिलते हैं, देश में विदेश में भारत ने क्या किया उसका लेखा जोखा, और इवन छोटी से छोटी बात कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, कुछ नई पहल उसके बारे में बातचीत करते हैं, और उसका फिर डिजिटल माध्यम से लोग उसमें सुझाव या अपना जो रिएक्शन है वो प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं। तो ये एक डायरेक्ट वार्तालाप का जो इकोसिस्टम तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है वो बहुत सराहनीय है। और इससे अगर आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा, आकाशवाणी की जो श्रोताएं हैं और या एंगेजमेंट है कितना ज़्यादा बढ़ा है, और इसको एक तरह से एम्पावरमेंट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसको इवॉल्व किया है सारे इकोसिस्टम को। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी पहल है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और अब एक ये मैच्योर गवर्निंग मॉडल्स में मतलब पार्टिसिपेट करने लायक हो गई है।
1: बिल्कुल, और क्योंकि एक सफल लोकतंत्र वही होता है जिसमें सहभागिता होती है, समावेशी वो लोकतंत्र होता है, और समावेशिता के लिए, सहभागिता के लिए जब डिजिटल तरीकों का उपयोग होता है तो वो एक समस्या का समाधान लेकर आता है। जैसा कि आपने माई गॉव का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि 2014 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म के बाद अब 3 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत नागरिकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जन भागीदारी का मंच बन चुका है। तो शंकर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जब एक समावेशी लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे प्रयास कैसे एक सफल लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि हम देखें चाहे बजट को लेकर सुझाव हो, जो शिक्षा नीति पर हमने देखा कि बहुत सारे परामर्श और सुझाव इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचे, और खासतौर पर आप क्योंकि आर्थिक विश्लेषक हैं तो जो आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें भी जब जनता की आवाज डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचती है तो कैसे एक समावेशी लोकतंत्र बनता है, और सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं?
2: बहुत सराहनीय है। जैसे बजट के पहले आप सबसे सुझाव मांगते हैं, पहले यह होता था कि सिर्फ इकोनॉमिस्ट से या जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनसे मांगा जाता था, लेकिन अब ये हुआ है कि आप डायरेक्टली अपने सुझाव एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जब सरकार मांगते हैं, इसको तो क्राउड सोर्सिंग की जो बेनिफिट्स है उसको मतलब पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया है और हम लोग उसको और आगे कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसको और प्रधानमंत्री की जो दिशा है उसको अगर बाकी सांसद और MLA लें तो अपने अपने क्षेत्र में इसको बहुत डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जो सुविधाएं, जो दिक्कतें हैं उसको आप एक्सेप्ट करें एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जिस लेवल पर इसकी हम लोग जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन की, हमको एक तो हम देश के नेतृत्व की सराहना करते हैं, लेकिन लोगों की क्षमता, लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों में जो एक्सेप्टेंस है उसकी भी सराहना करनी चाहिए कि भारत के 100 करोड़ से ऊपर की जनता में एक रेडीनेस है, एक कोई मतलब इससे कोई झिझक नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से सामाजिक तौर पे हो, लोकतांत्रिक तौर पे हो, व्यावहारिक तौर पे हो, हम कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ले जाते हैं आगे। ये अपने आप में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके लोग इस विचारधारा से जुड़ने में इतना उत्सुक है और इतनी उनकी पार्टिसिपेशन है।
1: एक और बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक पहल पर शंकर जी आपसे ही मैं विचार चाहूंगा। भारत के गांवों में सदियों से एक बड़ी समस्या थी कि जमीन के जो मालिकाना हक है उसको लेकर विवाद रहते थे। स्वामित्व योजना सरकार ने शुरू की, इस योजना के तहत जो ड्रोन की तकनीक है उसके जरिए मैपिंग के माध्यम से गाँव में जो संपत्तियां हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया, लोगों को डिजिटल कार्ड बांटे गए और करोड़ों संपत्तियों के अब कार्ड लोगों को बांटे भी जा चुके हैं। इस योजना ने हम देखें तो गांवों में जो अर्थव्यवस्था है उसका एक पूरा इकोसिस्टम ही बदल दिया है। जहां जहां ये योजना पहुंच चुकी है, संपत्तियों का वहां पर अब मोनेटाइजेशन हो चुका है, और इस वजह से जो बैंकों से लोन लेने में दिक्कत आती थी संपत्तियों के एवज में, वो भी अब उस समस्या को भी सॉल्व किया जा चुका है। तो स्वामित्व योजना पर आपके क्या विचार है? प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है कि डिजिटल तरीके से उसकी मैपिंग कर जो गांव के रिहायशी इलाके हैं उनके सही रिकॉर्ड को किया जाए और लोगों को उनका सही मैपिंग के जरिए कार्ड दिया जाए।
2: एक बहुत बढ़िया पहल है ये, और इससे जो समाज में पहले होता था कि लड़ाई झगड़े होते थे कि किसकी स्वामित्व है, किसकी जमीन कितनी है, वो सारे सॉल्व होते हैं। और इसको इस तरह से आप देखें, जैसे कि हम लोग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बिचौलियों को बाहर निकाला, उसी तरह से यहाँ पर जो फांदेबाजी होती थी जमीन को लेके उसको एकदम से कम किया है। इसमें एक और पहल जुड़ गया है जो सैटेलाइट प्रोग्राम्स है हमारे देश के, उस सैटेलाइट इमेजरी को इस

0: जियो लोकेशन से इससे जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अब मनरेगा की प्रोग्राम, तो मनरेगा में क्या काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें क्या काम हो रहा है, ये सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है, उसकी अपनी जमीन है, उसके पास एक डिजिटल मैप है, डिजिटल कार्ड है, उसमें कोऑर्डिनेट्स होगा, उस कोऑर्डिनेट्स को हम सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ेंगे, तो उसकी सॉइल की, उस वेदर की, उस कंडीशन उसको पता चलेगा, और उसने कब बोना है, किस फसल को बोना है, कब उसको काटना है, ये सारे सुविधाएं अभी इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो स्वामित्व योजना को हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पर ना देखें, इसके आगे उसका क्या होना है, वो बहुत देश के किसान के लिए है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी पहल।
1: बिल्कुल प्रसून जी, क्योंकि भारत अब उस राह पर चल पड़ा है जिसमें डिजिटल समाधान से भारत ने अपनी कई समस्याओं को सुलझाया है, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रधानमंत्री जिस विजन के साथ आगे चल रहे हैं, चाहे वो हार्डकोर जो डिजिटल तकनीक है सेमीकंडक्टर या चिप, उसके निर्माण से लेकर डेटा सेंटर्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, आगे आने वाले समय में जो जिस विजन के साथ भारत काम कर रहा है, वो कैसे आने वाले समय में, भविष्य में भारत को डिजिटल क्षेत्र में एक लीडरशिप की तरह खड़ा कर सकता है, जिस तरह से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: जी, भारत ऑलरेडी एक डिजिटल सुपर पावर है। अगर आप देखिए, पूरे विश्व में तीन ही तरह की डिजिटल इकोनॉमीज हैं। पहला, जिसको हम यूएस फोकस मानते हैं, जिस गूगल, एप्पल, फेसबुक, ऐसी कंपनियां यूएस बेस्ड चला रही है। दूसरा है चाइना बेस्ड बैटेक्स, जैसे बाइडू, अलीबाबा और ये कंपनी चला रही है। भारत ने एक तीसरा ऑप्शन दिया है पूरे विश्व को, जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है, एम्पावरमेंट के लिए बना है। तो ये भारत ने पूरे विश्व को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, उसकी अडेप्टेशन, अगर आप देखिए 150 करोड़ भारतीयों ने उसको जिस तरीके से अपनाया और बहुत छोटे समय में इतना ज़्यादा उसको यूसेज या प्रोत्साहन मिला है, वो अपने आप में एक सराहनीय इकोसिस्टम प्रधानमंत्री ने बनाया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार जो कर रही है, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें डेटा सेंटर से लेके, क्योंकि पूरे विश्व में दो ही कंट्रीज हैं जिसमें 1 अरब से ज़्यादा की आबादी, वो है भारत और चाइना। तो ये एक तरह से डेटा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं पूरे विश्व में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से ऑयल होता है। डेटा के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम यूजलेस हैं, जैसे कि हमारी कारें बिना पेट्रोल के या ईंधन के। तो उसका जो एक तरह से कैपेबिलिटीज हमारी सरकार जानती है, तो इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि हमारे डेटा सेंटर हो, हमारे खुद की चिप कैपेबिलिटी हो, जिसमें ना सिर्फ हम चिप डिज़ाइन करें, हम उसको फैब्रिकेट करके, मैन्युफैक्चर करके, उसको सॉल्यूशन में एम्बेड करके ग्लोबली सेल भी करें। चिप एक तरह से किसी भी मशीन का एक प्रोसेसिंग यूनिट या दिमाग होता है, चाहे वो हमारा मोबाइल कैमरा हो, या हमारी कार हो, या हमारी वॉशिंग मशीन हो, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें स्टोर होते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम भारतीय सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति के तहत टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी बनाने वालों को जॉइंट वेंचर्स में ला रही है, हमारे डोमेस्टिक इकोसिस्टम में मार्केट तैयार कर रही है, स्किल्ड लेबर्स तैयार कर रही है, और उसके रिलेटेड जो हमारे MSMEs या हमारे फार्मर्स हैं, उनको भी तैयार कर रही हैं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। जैसे हमारे फार्मर्स अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अब हमारी भारतीय सरकार ने बहुत सारे FTAs भी साइन किए हैं, जो कि एक ग्रोथ का इंजन बनेंगे टेक्नोलॉजी के साथ मिलके, पूरे भारतीय इकोसिस्टम के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए और नॉर्मल भारतीयों के लिए भी।
1: 25 सालों के प्रधानमंत्री के एक नए दृष्टिकोण और भारत को विकसित बनाने की सोच और इस अविरल सफर ने ये साबित किया है कि जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक अत्याधुनिक तकनीक आपस में मिलते हैं, तो न केवल प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर निर्णायक चोट होती है, प्रशासन में पारदर्शिता आती है, बल्कि एक समावेशी और सशक्त समाज तैयार होता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जोड़ा जाता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को विकसित बनाने में भारत की ये परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम के संस्करण को यहीं समाप्त करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रसून शर्मा जी और शंकर अय्यर जी, आप दोनों का, कि आप कार्यक्रम में जुड़े और जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आप शामिल हुए, अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार।
1: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
2: विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 8:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म दूल्हे राजा का ये गीत। सोनू निगम और विनोद राठौड़ की आवाज़ें हैं, समीर के लिखे बोल और आनंद मिलिंद का संगीत।

फिल्म दूल्हे राजा के इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आज़ादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पाहमला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
3: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
4: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
3: And Department of Science and Technology, our TST.
1: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

0: हमारे संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें क्वार्टाइल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में क्वार्टाइल आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
3: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
4: आज MOU में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से

0: जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
1: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
2: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
3: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
4: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
2: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
5: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस

0: नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइस रोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हेगेमन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमेरिका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Switzerland signed 5 pacts to strengthen cooperation in transport technology, infrastructure and mobility, identify new avenues for defense cooperation and deepen collaboration in nuclear energy. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar says, India's multi-alignment approach enables engagement with major global powers including US, Russia and China. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as the centre and state sign MOU. And German and US scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. And now the news in detail. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said, during their talks, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
3: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
2: सेक्रेटरी वेस्ट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सीबी जॉर्ज एड्रेस्ड मीडिया इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग ऑन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज।
4: Both sides exchanged the following memorandum of understanding, agreements and letters of intent signed during the visit. One, the MOU on migration and mobility partnership. Second, agreement on exchange of young professionals. Third, MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. Fourth, letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science Foundation. And fifth, implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science and Technology, our DST.
2: Our correspondent has the details.
5: The discussions between Prime Minister Modi and the Swiss President were very wide-ranging. They reviewed the entire spectrum of India-Switzerland relations and discussed ways to further deepen bilateral cooperation in several areas, including trade and investment, innovation and AI, military exchange and defense production, and nuclear energy. Both sides also reaffirmed their commitment to peace, diplomacy, and reform of global institutions. The two leaders discussed the ongoing conflict situation.

0: India's multi-alignment approach enables engagement with major global powers, including US, Russia, and China. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as center and state sign MOU. And German and US scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तावुन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तावुन को वसत देने से मुतालिक 5 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नज़र उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैनुल अक्वामी तिजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरी बंगाल हुकूमत ने एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरबी बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। और जर्मनी और अमरीकी साइंसदानों ने दिमाग की पुरअसरार पेचीदगियों का इंकशाफ करने वाली तकनीक तैयार करने पर अद्वियात के मैदान का नोबेल इनाम जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान आज नई दिल्ली में 5 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। ये मुआहिदे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गी पहमला के दरमियान 2 तरफा मुज़ाकरात के बाद तय पाए। इन मुआहिदों में माइग्रेशन और मोबिलिटी, शराकतदारी, नौजवान पेशावर अफराद का बाहमी तबादला, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी निज़ाम और मखसूस शोबों में बुनियादी ढांचे के फरोग और तआवुन जैसे उमूर शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड ने स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए मार्केट तक बेहतर रसाई का अमल कायम करने और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को मजीद आसान बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं।
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण हैं। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: वजारत खारजा के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सी बी जॉर्ज ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा मीटिंग के बारे में आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में मफाहमतनामे, समझौते और बाहमी तआवुन से मुतालिक इकरारनामों का भी तबादला किया।
3: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during the visit. 1. The MOU on migration and mobility partnership. 2. Agreement on exchange of young professionals. 3. MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. 4. Letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science Foundation. And 5. Implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science and Technology, our DST.
1: पेश है सिलसिले में एक रिपोर्ट।
4: वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर के दरमियान वसी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत स्विट्जरलैंड ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लिया और तजारत और सरमायाकारी, इख्तिरा और AI, फौजी तबादले और दिफाई साजो सामान, न्यूक्लियाई तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन में मजीद गहराई पैदा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। स्विट्जरलैंड के सदर ने वजीर आजम के मौकफ, खुसूसन इस पैगाम को बहुत सराहा कि यह जंग का नहीं बल्कि अमन का दौर है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: सदर पामेला भारत के 3 रोजा दौरे पर

0: आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर तकर्रुर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कानून इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मुत्तला किया कि सदर जमहूरिया ने गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर मुकर्रर किया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम ममालिक से जोड़ने के काबिल बनाता है। डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में भारत और दुनिया मुताबिकत पजीरी के मौजू पर 5वें कौटल्या इक्तसादी कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अमरीका को भारत का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक साझेदार, सबसे बड़ा इक्तसादी और तजारती साथी और बड़ा दिफाई शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि उथल पुथल भरे इस दौर में भारत को हर महाज पर एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जनाब जयशंकर ने वाजे किया कि दुनिया कसीर कुतबियत की जानिब गामजन है, जिसका ढांचा और ज्योमेट्री माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के आने वाले राज्यसभा पोलिंग के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी के मरकजी इंतखाबी कमेटी के जरिए इन नामों की मंजूरी दी गई है। हर 2 साल में एक बार होने वाले चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। पूरे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए उत्तराखंड में 1 सीट के लिए और मगरीब बंगाल से 1 सीट के जिम्नी इंतखाब के लिए पोलिंग इस माह की 16 तारीख को होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरीब बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा सीट के जिम्नी चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। तमाम 6 सीटों के लिए पोलिंग कल होगी, जबकि वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। आसाम के लिए एक तारीखी संग मील के तौर पर बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले बैन अल-अक़वामी कार्गो बहरी जहाज को रवाना किया। इस पेशरफ्त के साथ ही तकरीबन 80 साल बाद दरियाए ब्रह्मपुत्र की आलमी तजारती रास्ते के तौर पर बाजियाबी हुई है। इस इकदाम से शुमाल मशरकी खित्ते के लिए एक बराह रास्त, माहौल के लिए साजगार और कम लागत वाली तिजारती राहदारी फराहम होती है। पेश एक रिपोर्ट।
1: भारत के अंदरूनी मुल्क आबी गुजरगाहों के शोबे में आज एक नए बाब का आगाज हुआ, जब मेथनॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ के बोगीबील टर्मिनल से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पानगांव बंदरगाह के लिए रवाना की गई। इससे पहले बैन अल-अक़वामी कार्गो बहरी जहाज को रवाना करते हुए बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने एतमाद जाहिर किया कि यह टर्मिनल खित्ते की माशी तरक्की में नुमाया रोल अदा करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत बोगीबील टर्मिनल में जहाजरानी के शोबे के लिए हुनरमंदी की तरक्की का मरकज कायम करेगी, जिस पर 200 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की जाएगी। तवक्को है कि मरकज आइंदा 10 वर्षों में आसाम और शुमाल मशरक के 50,000 नौजवानों को बहरी और जहाजरानी की सनात में रोजगार के मौके के लिए तरबियत दी जाएगी। आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा वर्चुअल वसीले से जहाज को रवाना करने की तकरीब में शामिल हुए। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अंथक काम कर रही है। खुसूसी सीरीज के तहत आज इस बात पर रोशनी डाली जा रही है कि किस तरह वंदे भारत ट्रेनों की आमद ने इस विजन को हकीकी शक्ल दी है। पेश एक रिपोर्ट।
2: ऐसे में जब भारत साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब गामजन है, मोबिलिटी कौमी तरक्की के मरकजी सुतून की हैसियत से उभरी है। वंदे भारत ट्रेनें मुल्क भर में भारतीय रेलवेज की तेज, महफूज, ज्यादा काबिल एतबार और मुसाफिर मरकूज रेल खिदमात पहल के तौर पर नुमाया हुई हैं। फरवरी 2019 में शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ने नई दिल्ली वाराणसी रूट से अपने सफर की शुरुआत की। गुज़िश्ता साल नवंबर में वाराणसी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई 4 नई वंदे भारत ट्रेनों के इफ्तिताह के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवेज की अगली नस्ल की बुनियाद रख रही हैं।

0: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
1: नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरी बंगाल में फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के खातिर अगले दो साल के दौरान 4 नए हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। इस बारे में मरकज और मगरी बंगाल हुकूमत के दरमियान आज नाबन्ना में मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस दौरान शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और मगरी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस मंसूबे में हासीमरा और कलाईकुंडा में शहरी इनक्लेव, बालोरघाट हवाई अड्डे की तौसी और पुरोलिया में नए हवाई अड्डे की तामीर शामिल है। जनाब नायडू ने कहा कि कलाईकुंडा में वाक़ 2700 मीटर का रनवे बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे तैयारों की परवाज़ के काबिल होगा। इस दौरान वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता और यूरोपीय शहरों के दरमियान सीधी परवाजों और अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर जैसे मकामात के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का मुतालबा किया। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका फौजी मश्क माउंटेन गार्डियन 2026 आज उत्तराखंड में शुरू हुई। ये फौजी मश्क पहाड़ी इलाकों में जंगी सलाहियत पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी मफाहमत और तालमेल में इजाफा करने के मकसद से की जा रही है। वजारत दिफा के मुताबिक दोनों मुल्कों की अफवाज की यकसां तादाद में नुमाइंदगी है और इस मश्क में कुल 92 फौजी अहलकार शिरकत कर रहे हैं। वजारत ने मजीद कहा कि मश्क के दौरान फौजी मुश्तरका मनसूबा साजी, फायरिंग प्रैक्टिस, निगरानी के ग्रिड्स कायम करने, ड्रोन कार्रवाइयों, जंगी हिकमत अमली की तरबियती मश्क, जिस्मानी कुव्वत बर्दाश्त की तरबियत, चट्टानों पर चढ़ना, रुकावटों को पार करना और मरबूत फील्ड मश्कें अंजाम दी जाएंगी। ये मश्क 5 से 18 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत ने 4G के मामले में दुनिया की पैरवी की, 5G में शाना बजाना चला और अब 6G के मामले में वो दुनिया की क्यादत करेगा। आज नई दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिंपोजियम 2026 से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि भारत टेली मवासलात के आला दरामद करने वाले मुल्क से निकलकर अब बरामदकार बन गया है। भारतीय इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर जनाब राहुल गांधी के इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटर फहरिस्तों के खसूसी नजरसानी SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर तब्दीली की है। कमीशन ने वजाहत की कि SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ मुंसलिक डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कमीशन ने यह भी कहा कि बिहार में SIR से मुतालिक हुक्म पिछले साल 24 जून को कमीशन के जरिए इत्तेफाक राय से मंजूरी के बाद जारी किया गया था। कमीशन ने इस बात को भी उजागर किया कि इस साल 27 मई के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म को बरकरार रखा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के अमल के दौरान इंतखाबी कमीशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 में कमीशन की जानिब से किसी तब्दीली की मंजूरी नहीं दी गई है। साल 2026 का फिजियोलॉजी या अद्वियात के शोबे के नोबेल इनाम अमरीकी शहरी कार्ल डाइसरोथ और जर्मन शहरियों पीटर हैगमैन और गेओर्ग नागेल को दिया गया। इन अफराद को दिमाग के अंदरूनी कामकाज के तरीक़ेकार का पता लगाने की तकनीक तैयार करने में काबिल जिक्र हुसूलियाबियों की बिना पर दिया गया है। ये तरीक़ेकार, जिसे ऑप्टोजेनेटिक्स कहा जाता है, रोशनी पर मबनी स्विच की तरह काम करता है, जिससे साइंसदान ये पता लगा सकते हैं कि दिमाग के कौन से खलियात कौन सा काम करते हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली में आज इस बावकार इनाम का ऐलान किया गया। अपने बयान में कमेटी ने कहा कि हैगमैन और नागेल की जर्मन जोड़ी ने चैनल रोडोस्पिन नामी प्रोटीन का पता लगाया, जबकि अमरीकी साइंसदान डाइसरोथ ने प्रोटीन को आसावी खलियात के लिए रोशनी से चलने वाले स्विच में तब्दील किया। और अब खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तआवुन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तआवुन को वसूल देने से मुतालिक 5 माहदों पर दस्तखत किए हैं। وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت کا کثیر جہتی وابستگی کا نقطہ نظر اسے امریکہ، روس اور چین سمیت سبھی اہم عالمی طاقتوں سے مصروف عمل رہنے کے قابل بناتا ہے۔ بین الاقوامی تجارتی راستے کی بازیابی کے تحت 80 سال کے وقفے کے بعد آسام سے پہلا کارگو بحری جہاز برہمپتر ندی کے ذریعے بنگلہ دیش پہنچا۔ مرکز اور مغرب بنگال حکومت نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت اگلے 2 سال کے دوران علاقائی فضائی کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنے کے مقصد سے مغرب بنگال کو 4 نئے ہوائی اڈے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या है वो एक चीज जो हमारे सबसे करीब रहती है? जाहिर है आप कहेंगे हमारा स्मार्टफोन, लेकिन इसके अलावा लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, हमारी जिंदगी इन गैजेट्स के बिना जैसे अधूरी सी हो गई है। साथ ही एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन वगैरह ने हमारी जिंदगी को आसान तो कर दिया है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि जब ये गैजेट्स पुराने हो जाते होंगे, खराब हो जाते हैं, तो आखिर कहाँ जाते हैं? हर साल दुनिया भर में करोड़ों टन ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा हो रहा है। आज हमारा देश और पूरी दुनिया इस डिजिटल कचरे के पहाड़ के नीचे जैसे दबती सी जा रही है, और रिसाइकलिंग की सही व्यवस्था न होना, जागरूकता की कमी और गैजेट्स को कचरे में फेंक देने की हमारी आदत, इसने एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके लिए खड़ी कर दी है। इस कचरे में मौजूद लेड, मर्करी और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं हमारी हवा, हमारी मिट्टी और पानी को जहरीला बना रही हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। अगर हम जागरूक हो जाएं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के मंत्र को अपनाएं और अपने ई कचरे को सिर्फ अधिकृत रिसाइकलर्स को ही सौंपें, तो शायद हम इस बड़े संकट को बहुत हद तक टाल सकते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से समझेंगे कि ई कचरे की ये चुनौती आखिर कितनी गंभीर है और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारे पास इसके क्या समाधान है। और आज ऐसी ही बातों की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ई वेस्ट रिसाइकलिंग विशेषज्ञ मयंक सिन्हा जी को। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मयंक जी।
1: धन्यवाद।
0: और दोस्तों, हमारा आज का विषय जो हमने पहले ही आपको बताया भी है, वो है डिजिटल युग में ई वेस्ट चुनौतियां, समाधान और आगे की राह। और हम आपको बता दें, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे नंबर हैं 2301-481-2371-7117 और 2371-7106, और इसके अलावा 2331-44-44। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें, यदि आप लैंडलाइन से हम पर संपर्क कर रहे हैं तो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289-094-044। तो इस पर आप लिख करके हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा का सिलसिला। और मैं देख रहा हूं कि अभी हमने आपसे बात शुरू ही की कि हमसे जुड़ गए एक श्रोता रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। जी वाजपेयी जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कचरा जो है रिसाइकलिंग कैसे किया जाएगा।
0: जी आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे?
2: मैं ये कहना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कचरा जो है, वेस्टेज जो है, उसको रिसाइकलिंग कैसे करेंगे?
0: इलेक्ट्रिक कचरा जो है इसको रिसाइकल कैसे करेंगे, ये इनका प्रश्न है। जी
2: जी, जी।
1: देखिए, आप अगर अपना

0: एसी, फ्रिज, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे तो वो किससे बना है? वो मेटल से बना है, उसके अंदर चिप्स हैं। तो जैसे मैं अगर आपका फ्रिज देख लूँ तो फ्रिज में लोहा है, एल्युमिनियम है, कंप्रेसर है जिसमें कॉपर है, उसमें जो सर्किट है उसमें गोल्ड और सिल्वर भी है, तो ये सारे मेटल्स हैं। तो रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि क्या हम जो आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको साइंटिफिक तरीके से तोड़ें। उसके बाद अलग अलग किस्म के प्रोसेसेस हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग में करते हैं कि मेटल्स जो हैं कुछ मैग्नेटिक होते हैं तो उनको मैग्नेट से अलग करें, कुछ मेटल्स हैं जो कुछ कुछ अलग अलग केमिकल में डिसॉल्व होते हैं हम उससे अलग करें। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लांट, फॉर्मल रिसाइकलिंग जो प्लांट हैं उसमें ये मेटल्स, जिस जो आपके गैजेट जिस मेटल से बने हैं वही मेटल उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो मेटल्स वापस, वो लोहा, वो पदार्थ वापस जो मैन्युफैक्चरर हैं जो नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको दिए जाते हैं। तो आप समझिए, रिसाइकलिंग बहुत टेक्नोलॉजी के साथ है, बहुत बड़े स्केल पे होता है, और आपके सारे जो मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर नए प्रोडक्ट में डाले जाते हैं।
1: जी, दरभंगा बिहार से हमसे जुड़ चुके हैं हमारे श्रोता मोहन पासवान जी। पासवान जी, कहिए, क्या प्रश्न है आपका?
2: इकट्ठे प्रणाम सर।
1: जी,
2: हेलो, इकट्ठे प्रणाम सर।
1: जी नमस्कार, नमस्कार, कहिए।
2: सर, ई कचरा प्रबंधन में होने वाले कमी से किस प्रकार से लोग बच सकते हैं सर? सर, गांव में ई कचरा से होने वाले हानि से बचने के लिए गांव के लोग जैसे कि डिजिटल सामान और कुछ सुई इस प्रकार के जो दिए जाते हैं उसे बचने के लिए क्या करें सर?
1: जी, तो इनका प्रश्न सिन्हा जी गांव को लेकर है, खास तौर पर कि जो गांव में जो हमारी आबादी रहती है वो कैसे ई कचरे की इस समस्या से निजात पा सकती है।
0: देखिए, गांव में, छोटे शहरों में, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कलेक्ट कैसे किया जाए। अब हम सबको पता है कि जब कोई अपना कोई भी टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल, मोबाइल को छोड़िए, एसी हो, जब हम नया खरीदने जाते हैं तो हमें उसके लिए दुकानदार कोई वैल्यू देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसमें से, जैसे मैंने पिछले सवाल के बारे में बताया, उसमें से मेटल जो है लोहा कॉपर निकलता है और उसकी एक मूल्य है। अब दिक्कत ये है कि गांव में जो, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो ई वेस्ट हो, वो इकट्ठा कैसे किया जाए और वो इकट्ठा हो के रिसाइकल इंडस्ट्री से तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसमें मुझे लगता है हमें लोकल जो म्यूनिसिपल है या जो ब्लॉक में है या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मिलके, पंचायत है, मिलके एक हमें पूरा एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि ये सारा अच्छे से इकट्ठा भी हो और फिर ये रिसाइकलर के पास पहुँचे। जब ये पूरा सिस्टम आएगा तब मेरे ख्याल से ये होगा। तो ये जुड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये पूरा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा, और सरकार की बहुत पॉलिसीज़ हैं पर शायद वो आप तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो पक्का ये होगा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता सासाराम बिहार से हैं, अमित उपाध्याय जी। अमित जी, कहिए, क्या है प्रश्न आपका?
3: जी नमस्कार मेरे सारे, आपको अभी और आपके जितने भी विशेषज्ञ है, मेरा दो सवाल था। ये सवाल था कि जैसे कि जितना भी कचरा हम वो फैलता है तो इसको मतलब क्यों नहीं जैसे व्यापक तौर पर एक प्रचार प्रसार हो जाए ताकि जन जन तक लिए पहुंच जाए, पहुंच सके। जैसे कोई भी चुनाव होता है या कोई भी ऐसा कैंपेन होता है, सरकारी कैंपेन, तो इसको हम लोग ऐसे तक व्यापक तौर पर इसको प्रचार प्रसार करते ताकि गाँव गाँव तक पहुँच जाए। और दूसरा सवाल ये था कि जो हम लोग उपग्रह में जितना भी हम लोग छोड़ते हैं आकाश में, तो बहुत सारा

0: वो एक समय 4 साल या 5 साल के बाद वो ग्रह में हमेशा वो घूमते रहता है, तो वो भी कचरा है, तो बहुत सारा का तो कचरा आकाश में घूम रहा है, तो उसको निपटान के लिए कैसे क्या किया जाए कि ताकि वो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, वो भी एक कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के लिए खतरा है। जी
1: जी, तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल बहुत वाजिब है, और हम तो अभी घरेलू ई वेस्ट की ही बात कर रहे थे, आप तो अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं बिल्कुल, तो ये तो हमारे विशेषज्ञ ही इस विषय में बताएंगे। जी
2: देखिए, अंतरिक्ष का जो मामला है शायद ये मेरे भी नॉलेज से बाहर है, क्योंकि जो ये सैटेलाइट हैं, जो ये यंत्र आसमान में जा रहे हैं, स्पेस में हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, इस पे सब देश कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या किया जाए, पर ये बहुत सही सवाल है, इस पे थोड़ा हमें भी स्टडी करना पड़ेगा, तब हम आपको इसका जवाब दे पाएंगे।
1: जी, तो दरअसल एक ऐसा सवाल है, हालांकि हमारे एक और श्रोता, पहले इनका सवाल ही ले लिया जाए फिर मैं अपना प्रश्न आपके सामने रखूंगा सेना जी। ये हमारे श्रोता हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से, योगेश जी। तो योगेश जी कृपया कहिए क्या प्रश्न है आपका।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: नमस्ते।
3: मेरा प्रश्न रहेगा कि ई वेस्ट को लेकर, जैसे कि हमारे गांव में भी इसके बारे में जागरूकता का अभाव रहता है, तो सबसे पहले जरूरत तो ये रहेगी कि लोगों को ई वेस्ट के बारे में जागरूक किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि ई वेस्ट को रिसाइकिल करके भी हम ई वेस्ट के खतरे से बच सकते हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि ई वेस्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, और हमारे पास जो ई वेस्ट मतलब कि जनरल में वेस्ट को कलेक्ट करने आते हैं, वो इस तरह के वेस्ट को लेने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसे में ये ई वेस्ट एनवायरनमेंट में चला जाता है, पानी में चला जाता है, नदियों में जाता है, प्रदूषण फैलाता है, इसके भीतर की जो हानिकारक धातुएं हैं और केमिकल्स हैं वो हमारे वातावरण पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो ऐसे संबंध में इसके डिस्पोजल के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं, और दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग वेस्ट को अलग अलग नहीं करते, चाहे वो केमिकल हो या ई वेस्ट हो, उसको इकट्ठा ही कर देते हैं, सेग्रीगेशन की कोई उनकी समझ नहीं होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी के बारे में भी बताएं जो इस तरह की जागरूकता का संदेश देती हो, ताकि हम ई वेस्ट के खतरे से बच सके।
1: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, चूंकि नदियां हमारी तमाम जो हैं वो पर्वतों से आती हैं, और आप पर्वतीय प्रदेश से बोल रहे हैं, तो वहां से जब पानी आता है तो वो समझिए कि सारे में जो वो व्याप्त होता है, तो उसके साथ अगर उसमें कुछ विषैले तत्व होंगे तो वो सारे क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और सिन्हा जी, हाँ आपसे।
2: नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि जो ई वेस्ट है, इसके तीन रूप में दिखा सोचता हूँ। एक है कि जो हमने बात की एनवायरनमेंट की, प्रकृति की, ये सबको पता है कि ये अगर पानी में हमारे खेतों में हमारे ग्राउंड में जाएंगे, इससे पोल्यूशन होता है, इसीलिए इसकी रिसाइकलिंग एक फॉर्मल एक वैज्ञानिक प्लांट में होनी चाहिए ताकि ये ना हो। दूसरी चीज़ है कि जो इसकी रिसाइकलिंग करते हैं, क्योंकि ये हाथ से रिसाइकलिंग हो रही है, ये इनफॉर्मल सेक्टर में रिसाइकलिंग हो रही है, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, महिला भी इन्वॉल्व है, तो एक हेल्थ एस्पेक्ट भी है जो इसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो ना कि हमारी हेल्थ पर इनकी हेल्थ। तीसरी बात ये है कि जो ये मेटल्स निकल रहे हैं, जैसे मैंने बताया कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, स्टील है, बहुत सारी जो मेटल्स हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये हम इंपोर्ट करते हैं, ये हम बाहर से लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो फॉरेन करेंसी है जो इसमें जाती है, तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट नेशनल हित के लिए भी हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं। आपने पूछा कि सरकार की क्या पॉलिसी, मुझे खुशी है कि पिछले 4-5 साल में सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं, शायद हमारे बाकी श्रोताओं को भी इंटरेस्ट हो, बट सिंपल तरीके से जो एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने बहुत अच्छा एक

0: पोर्टल बनाया है जिसमें जितने रिसाइकलर हैं जो साइंटिफिक पूरी वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग कर रहे हैं, और जितने मैन्युफैक्चरर हैं जो हमारे ब्रांड हैं जो हमें मोबाइल बेचते हैं, एसी बेचते हैं, वॉशिंग मशीन बेचते हैं, उन सबको जोड़ा है। और बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है कि अगर किसी ने मान लो 1 लाख वॉशिंग मशीन बेचे तो उन्होंने बोला भाई 7 साल में ये वॉशिंग मशीन रिसाइकल होने चाहिए, और उसमें उन्होंने एक कोटा बनाया, एक टारगेट बनाया है जो सारा डेटा ड्रिवन है। और वो अगर वो मैन्युफैक्चरर वो ब्रांड अगर नहीं करेगा तो उस पर बहुत बड़ी पेनल्टी है, फाइनेंशियल पेनल्टी है, उस पर बहुत सारे और रिस्ट्रिक्शन हैं। इसीलिए अब जितने भी ब्रांड हैं वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि जो बेचें वो जब पुराना हो जाए, रिसाइकल हो जाए, कलेक्शन करें। और उन्होंने ये भी बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो चाहते हैं जो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है इसको बढ़ावा मिले। तो उन्होंने बोला अगर आपका कोटा है मान लीजिए 1 लाख टन, आप नहीं मीट कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई ज़रिया नहीं है वापस लाने का, आप बनाइए, तो वो कोटा आप रिसाइकलर से ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप जो रिसाइकलर हैं उनको भी आप इनकरेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सारा अच्छे तरीके से वापस रिसाइकल हो, और इससे ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। और लास्ट सवाल ये है कि कैसे आप तक पहुँचें, जैसे मैंने पिछले सवाल का भी जवाब दिया, हम सबको मिलके जुड़ना है, जो दूर दराज के इलाके हैं कैसे हम सरकार के साथ, लोकल एनजीओस के साथ मिलें, और ये रिसाइकल इंडस्ट्री जो शायद बड़े शहरों में है या इंडस्ट्रियल एरियाज में है वहाँ तक पहुँचें, और आप भी इनोवेशन करिए, आप भी रिसाइकलर बनिए, तो अपने एरिया के लिए आप भी बहुत ज़रूरी काम करेंगे।
1: बिल्कुल, आप भी अपने मित्रों में इस विषय में चर्चा कीजिए, और जहाँ तक कि हमारे एक पहले श्रोता ने भी कहा था कि क्या इसके बारे में कोई प्रचार अभियान है, तो हम आज जो ये चर्चा कर रहे हैं दोस्तों ये भी तो उसी प्रचार अभियान का एक हिस्सा है जिससे लोगों में जागृति आए, और निसंदेह आपके जो ये सवाल हैं महत्वपूर्ण वो भी जागृति लाने में सहायक हैं। और नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं जगदीश जोशी जी, कहिए जोशी जी क्या प्रश्न है।
2: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: नमस्ते एंकर साहब, आपको भी नमस्कार, जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनको भी नमस्कार
1: जी। प्रणाम, नमस्कार।
2: तो एक तो क्वेश्चन तो मैं 2-3 छोटे छोटे पूछूंगा। आपके मंच के, जो आपका बड़ा मंच के माध्यम से अपने युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, विशेषकर मैं मोबाइल के जो यूजर है, कि जब तक हम मोबाइल को चला रहे हैं वो तो खैर ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल हमें चलाने लगा है, तो ये एक मैसेज है। और दूसरी बात यह है कि जैसे गवर्नमेंट कई जगह कैंप लगाती है, चाहे वो अभी जीरो बैलेंस के खाते के लिए लगाए थे या मतदाता सूची के लिए लगा रखे हैं, तो आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट को ये ई कचरे के लोगों को अवेयर करने के लिए गांव-गांव में कैंप लगाना चाहिए, या गवर्नमेंट लगाती है आपकी जानकारी में पंचायत में?
1: आपका कहना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसी जागृति अभियान के तहत तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आपका जो प्रश्न है वो हम तक पहुंच गई है आपकी जिज्ञासा, और मैं समझता हूं कि उससे खास तौर पर जो सवाल हमें समझ में आता है वो ये है कि देखिए, जब हमारे सिन्हा जी जो आम नागरिक हैं शहरों के, गांवों के, वो चाहते हैं दिल से कि हम अपना ई कचरा जो है वो रिसाइकल के लिए दें, लेकिन क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐप मौजूद है जिस पर वो संपर्क करके ये कह सकें कि हमारे पास ये ई कचरा है और इसको आप ले जाइए, और क्या उन्हें उसके लिए कुछ भुगतान भी प्राप्त हो सकता है?
0: हाँ है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है और रिसाइकलर्स अब उन बढ़ रहे हैं जो फॉर्मल रिसाइकलर हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो सीधा कस्टमर से या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो आप हैं, उनसे डायरेक्टली उठाएं, और इसीलिए अब नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जिस तरीके से हम खाना अभी घर से कोई हमें डिलीवर कर देता है, हम कुछ ऑनलाइन ख़रीदते हैं हमारे घर तक आ जाता है, तो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। उनका नाम मैं अगर लूँगा तो शायद मैं किसी को फेवर करूँगा, पर जैसे आप अगर ऑनलाइन जाएंगे, आप सर्च करेंगे मुझे अपना पुराना एसी बेचना है, फ्रिज बेचना है, तो शायद आपके पास कोई प्लेटफॉर्म आए, जैसे सेल स्मार्ट एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म हैं, आप किसी बड़े रिटेलर के यहाँ

0: में जाएंगे तो उनके पास बॉक्स होता है। तो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उसको अभी आपको ऑनलाइन जाना है, आपको ढूंढना है और आपको मिलेंगे। और सरकार भी, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है अपने अलग अलग मिनिस्ट्री से, अपने डिपार्टमेंट से, कि इसका प्रचार करें, कैंप्स रन करें। बहुत छोटा है जो अभी हम कर रहे हैं, बट पूरा फोकस है तो ये पहुंचेगा आप तक।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमने गौर किया जब आपने कहा कि अक्सर जब हम मोबाइल फ़ोन के और ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनके स्टोर पर जाएं तो एक ऐसा कॉर्नर ज़रूर होता है जहां वो कहते हैं कि यहां आप अपना जो पुराना ई वेस्ट है वो छोड़ सकते हैं। लेकिन निसंदेह इसको और बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है, जैसा कि आपने बताया कि ऐसे ऐप्स मौजूद हैं और आप उन्हें सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। महाराष्ट्र, ठाणे महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं गुरुनाथ। गुरुनाथ जी कहिए, क्या प्रश्न है आपका?
2: जी सर नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा क्वेश्चन है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, ई कचरा समस्या तो है, लेकिन सर जैसे मतलब घर पे इसको डिस्पोज किया जाए, स्क्रैपिंग वाले तो बहुत मुश्किल से लेते हैं ये जो कुछ गैजेट होते हैं, तो क्या घर पे कुछ जो डिस्पोज कर सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल है, इसमें से जो जो खतरनाक किरणोत्सर्ग निकलते हैं, क्या आदमी के लिए मतलब कौन से डिजीज हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं ये भी सुना है कि कुछ डिजीज इसके वजह से आदमी को हो सकते हैं। थैंक यू
1: जी। आपके दो प्रश्न हैं, पहला तो आपने कहा कि घर से ही हम कैसे उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, तो वो जैसा कि बताया है अभी आपको कि इसके लिए ऐसे ऐप्स मौजूद हैं, आप उनको ऑनलाइन सर्च करें, उनसे संपर्क करें, या फिर जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ जब आप जाते हैं ख़रीदने के लिए तो वहाँ भी ऐसी सुविधा दी जाने लगी है जहाँ आप अपने ई वेस्ट से निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आपने जो पूछा कि नुकसान जो होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं और कौन से ऐसी धातुएं हैं, ख़ास तौर पर ऐसे विषैले तत्व हैं, उनके विषय में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको सटीक जानकारी देंगे।
0: देखिए, ये तो आपको पता है कि आप खाने में अगर पेस्टिसाइड डालेंगे, केमिकल डालेंगे, कोई भी केमिकल हो, वो हानिकारक तो होगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो हमारे मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में भी जो बैटरी हैं, जो उसमें कैडियम है, कैडमियम हो सकता है, लेड हो सकता है, कोई भी मेटल केमिकल हो सकता है, कुछ बहुत हानिकारक हैं, कुछ कम हैं। और ये हमको पता है कि जब ये पानी में जाता है, ये हमारे फूड में आता है, तो बीमारियां कैंसर तक की भी होती हैं। इसीलिए ये मतलब ये मामूली बात नहीं है, बहुत ही ज़रूरी बात है कि हमें इसको सॉल्व करना है। और बिल्कुल घर पे आप मत रिसाइकलिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और ये एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, ये रिसाइकलर के पास जाना चाहिए। बट यस, ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं अगर ये रिसाइकल नहीं होगा और हमारे अगर ये लैंड में, पानी में वापस जाएगा।
1: जी, तो अब ये जो अगला प्रश्न है हम ये ले रहे हैं, हमें मिला है व्हाट्सएप के ज़रिए, और मनोज पान से नागपुर महाराष्ट्र से पूछते हैं हमसे, कहते हैं कि ई वेस्ट में किस प्रकार की वस्तुएं आती हैं जो हम आपको बता ही चुके हैं, और ये कहते हैं कि इसे किस प्रकार से रिसाइकल किया जाए ये भी हमने आपको बताया। फिर इनका जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कहते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से अवेयर किया जाए, ई वेस्ट डीकम्पोज होता है क्या, और होता है तो कैसे? जी
0: नहीं, बच्चे तो आई थिंक आजकल बहुत जागरूक हैं, हमें पता है कि वो शायद माँ बाप से ज़्यादा जागरूक हैं, वो माँ बाप को बताते हैं और अगले 50-100-80 साल तो उनको जीना है।
1: जी, और ये बहुत अच्छी बात है कि अब ये पाठ्यक्रम का भी एक अंग हो गया है कि उनको जागरूक किया जा रहा है। जी,
0: और देखिए, जैसे मैंने कहा, ये है धातु जो आपके मोबाइल में है, लैपटॉप में है, ये है केमिकल, तो ये तो आपको भी पता है कि धातु तो ज़मीन से ही आए हैं, ये वापस जाके ये डिसॉल्व तो नहीं होंगे, ये केमिकल वापस डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर हम कोशिश करें कि 100% जो आया है वो रिसाइकल हो जाए, फिर वो नए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, तो ना तो हमें नए माइनिंग करनी पड़ेगी

0: ज़्यादा ना हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो एक गोला है ये बनेगा, तो ये धातु ये केमिकल्स तो आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए अगर ये हम कोशिश करें कि हम इसको उस तरीके से सोचें, प्लास्टिक का जैसे हमें पता है कि अगर हम इसको रिसाइकल करेंगे, कांच का पता है रिसाइकल करेंगे, मेटल की भी वैल्यू है, मेटल मेटल का भी एक मूल्य होता है, और ये अगर रिसाइकल होगा तो वापस जो जो नए प्रोडक्ट हैं उसमें यूज़ होगा।
1: जी, शिमला हिमाचल प्रदेश से राकेश हैं हमारे साथ। जी राकेश जी, कहिए आपका प्रश्न क्या है।
2: जी, नमस्कार। मैं
1: नमस्कार।
2: कोटा ही, शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: और मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम कोई भी चीजें रिसाइकल करते हैं तो किस तरह से हमें प्रावधान सावधानी रखती है। और दूसरी बात ये मेरा, जैसे कि प्लास्टिक की चीजें, जैसे जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हैं, जैसे टूटी हुई कुर्सियां हैं, तो इसको जो है हिमाचल में जैसे तापमान कम रहता है या क्या बोलते हैं, जैसे हमारे बाग बगीचे में फर्क ना पड़े, तो इस चीजों को जो है रिसाइकल जो है किस तरह से हमें करना चाहिए प्लास्टिक की चीजों को।
0: देखिए, जैसे मैंने बोला, आप खुद तो रिसाइकल नहीं कर सकते। उसके लिए मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये घर पे नहीं की जा सकती है, इसको आपको रिसाइकलर के पास भेजना है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे कांच हो, चाहे मेटल हो, चाहे आपका मोबाइल हो। तो आपको ढूंढना है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आपके लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, अगर उनके पास ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पे आप डालिए। अगर वो वैल्यू दे सकते हैं, मूल्य दे सकते हैं, दीजिए, नहीं तो नहीं दे सकते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि उनका भी एक खर्चा है उसको लेके किसी रिसाइकलर के यहाँ पहुँचाने का, और वही मेरे हिसाब से सही राह होगी। घर पे बिल्कुल कोशिश भी नहीं करें और आप कर भी नहीं पाएंगे।
1: जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की है, और आप भी इस बात को ख्याल रखिए कि खुद ई वेस्ट को रिसाइकल करने की कोशिश न करें, क्योंकि उसमें निसंदेह कई ऐसे पदार्थ होते हैं, कई ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, और इसके लिए विशेषज्ञता की ज़रूरत है। सिन्हा साहब, ये बताइए कि रिपेयरिंग जो है, यानी मरम्मत है, और दोबारा इस्तेमाल कर लेना चीज़ों को ठीक करके, जैसा कि विकसित देशों में ऐसा देखा जाता है कि रिसाइकलिंग शॉप्स हैं, तो ये यदि चलन में आए तो इससे कितनी मदद मिल सकती है इस ई वेस्ट पर काबू पाने में?
0: बिल्कुल, सरकार तो ये चाहती है, जैसे आपने बोला रिसाइकल, रीयूज, रिपेयर, तो ये तो सरकार चाहती है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये करें। पर इसमें इसमें सिर्फ एक तरह से नहीं सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, अब हमको पता है कि शहरों में गर्मी हो रही है, समर्स में ये एसी और गर्म करते हैं, हमको पता है कि पुराना एसी फट भी सकता है, हमको पता है कि उसमें जो गैस होती है वो बहुत पुरानी होती है, बिजली की खपत ज़्यादा होती है जो देश के लिए ठीक नहीं है। तो आपको रिपेयर करना है, रीयूज़ करना है, पर ये भी समझना है कि हर इलेक्ट्रॉनिक की एक लाइफ होती है, एक कार्य होती है, उसके बाद वो रिसाइकल होके नया बने तो शायद सबके लिए अच्छा है, बट बिल्कुल रिपेयर करिए। ये तो हमारे देश में, हमारे अंदर में प्रथा भी है कि हम फेंकते नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो रीयूज़ करते रहें। पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आपको अपने जजमेंट से, अपने राय से सोचना है कि आप इसका क्या करें।
1: जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ऐसे कौन से 3 कदम आप सुझाना चाहेंगे जिनको उठाते हुए, अपनाते हुए आम नागरिक जो है इस समस्या के समाधान में बहुत ही सहायक हो सकते हैं?
0: देखिए, पहले तो आपको इसको कचड़े में नहीं डालना है, क्योंकि जब आप कचड़े में डालते हैं तो जो बाकी कचरा है वो भी रिसाइकल नहीं हो पाता, किसी को उसको अलग करना पड़ेगा, जैसे प्लास्टिक को और खाने को अलग करना पड़ता है। दूसरी बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे किसको दें कि ये रिसाइकल हो पाए। तीसरी बात यह है कि आपको जागरूक करना है अपने आप को और अपने बच्चों को और सबको, ताकि वो समझे और वो इस पे आगे ठीक डिसीशन ले पाए।
1: जी, तो दोस्तों, समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल जरिए से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ई वेस्ट रिसाइकलिंग विशेषज्ञ

मयंक सिन्हा जी को स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हार्दिक धन्यवाद हमारी ओर से। और दोस्तों, इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक हो रहा है समाप्त। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर मिलेंगे आपसे। मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला खत हमें प्राप्त हुआ है। वार्ड नंबर 1 पोफाली, जिला यावतमाल से जयराम सिंगणकर, दशंत कुमार, क्षमा कीजिए, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता का। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें मिला है। ज्योतिर्लिंग रेडियो श्रोता संघ, नेहरू वार्ड, बस स्टैंड, यादव मोहल्ला, सनावद, मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और योगेश मालाकार का। श्रोताओं, आपकी पसंद पे आपको हम गीत सुनवा रहे हैं, फिल्म कामचोर से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, इंदिवर की शब्द रचना और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम शामिल करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सीआर कुलकर्णी की। साथ ही इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमें मिली है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी जी। सारिमपुर बक्सर से खत लिखते हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। साथ ही जेल रोड दिल्ली से ये फरमाइश है लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती की। श्रोताओं, आपकी पसंद का गीत आइए आपको सुनवाते हैं एस पी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

श्रोताओं, फिल्म साजन का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई थी धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे की। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें मिला था सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना, मुबारक, परवेज़, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़वी, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ, रोजूबाई तड़वी, सनी बाबू परू तड़वी और पूरे तड़वी परिवार का। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं, जिसमें आपके भेजे फरमाइशी गीत हम आपको सुनवाते हैं और साथ ही पढ़ते हैं आपके खत। श्रोताओं, अगला गीत हम कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश द्वारा। साथ ही अगला खत हमें मिला है थाना रोड बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष, सतीश, आयुष, आयुषी और सानवी का। तो आइए, आप सब श्रोताओं की फरमाइश पर हम सुनते हैं ये गीत फिल्म सफ़र से। इंदिवर के लिखे बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत और आवाज़ है किशोर कुमार की।

श्रोताओं, आपका फिर एक बार स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म अनपढ़ से। लता मंगेशकर की आवाज़, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन का संगीत है। इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है छबड़ा राजस्थान से, आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो की। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप ने। साथ ही इसी गीत की फरमाइश की है कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल, साथ ही बिट्टा बजाज ने। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी की। साथ ही इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमें भेजी है पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम, कविता, संजना और सानवी गुप्ता ने। आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म अर्थ का ये गीत, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने, कैफी आज़मी के बोल और संगीत है जगजीत सिंह का।

श्रोताओं, अगर आप चाहते हैं कि आपके ख़त भी हम इसी तरह कार्यक्रम में शामिल करें तो हमें ख़त लिखना ना भूलें अपनी फरमाइश के साथ। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल। भोपाल का एसटीडी कोड है, क्षमा करें, भोपाल का पिन कोड है 462002। श्रोताओं, आज्ञा दीजिए अब कार्यक्रम को समाप्त करने की। आपके रेडियो साथी ऋषभ आहूजा का नमस्कार स्वीकारिए। नमस्कार।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए राग देस, मिश्र पीलू और मिश्र पहाड़ी पर नीना श्रीवास्तव का उप शास्त्रीय गायन। हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं रूपेश कुमार लाल और तबले पर हैं अशेष उपाध्याय। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं नीना श्रीवास्तव का उप शास्त्रीय गायन। पहला राग है राग देस।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं नीना श्रीवास्तव का उप शास्त्रीय गायन। तो आइए सुनते हैं अगला राग, मिश्र पीलू।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आइए अब सुनते हैं राग मिश्र पहाड़ी। तबले पर संगत दे रहे हैं अशेष उपाध्याय और हारमोनियम पर हैं रूपेश कुमार लाल।

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी अभी आप सुन रहे थे। इसमें आज आपने सुना राग देस, मिश्र पीलू और मिश्र पहाड़ी पर नीना श्रीवास्तव का उपशास्त्रीय गायन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से भेंट की। डॉ. जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहमलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी